0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: और कार्यक्रम सबरंग में अब आप सुनेंगे कुमार सानू का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:15 हो चुके हैं। इसी के साथ समय होता है कार्यक्रम झुमका गिरारे का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम झुमका गिरारे। आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम झुमका गिरारे में मैं अमृता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का दिन खुशियों का दिन है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करते हैं हरेला पर्व। जी हाँ, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध और पावन पर्व। सबसे पहले आप सभी को हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम झुमका गिरारे में हर बार हम कुछ ना कुछ नया आपके सामने लेकर आते हैं। और जब बात भारत की हो, हमारी संस्कृति की हो, हमारे इतिहास की हो, तो यहाँ पर पर्वों को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। चाहे वो पर्व उत्तराखंड के हों या फिर देश के किसी भी कोने के हों, हम उसको उसी गर्मजोशी के साथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और हरेला पर्व की अगर बात की जाए तो ये पर्व तो अपने आप में बेहद खास है। ये खास केवल इसलिए नहीं है कि एक त्यौहार है, बल्कि जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि ये पर्व सीधा सीधा जुड़ा हुआ है हरियाली से। हरियाली जो हम सभी को बेहद पसंद है। ऐसा माना जाता है कि हरेला उत्तराखंड का एक प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक लोक पर्व है, जिसका मुख्य अर्थ, जैसा कि अभी बताया था, कि हरियाली है। इस प्राचीन पर्व का इतिहास अगर देखा जाए तो इसे हिंदू पौराणिक कथाओं से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरेला त्यौहार को मनाने से अच्छी फसल, मानसून के आगमन से पहले, यानी कि अगर बात की जाए श्रावण मास की, तो उसके शुरुआती दौर में हरेला

0: कपिला पर्व को मनाया जाता है तथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के भी रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। और आइए इसी विषय पर हमारे कुछ श्रोताओं के विचार जान लेते हैं जो पहाड़ी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इस खूबसूरत पर्व को मनाते भी हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम गुंजन रावत है। आज हरेला है तो हरेला उत्तराखंड का एक प्रमुख लोक पर्व है जिसे मुख्य रूप से कुमाऊं और कुछ गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व प्रकृति, हरियाली, अच्छी फसल और समृद्धि का प्रतीक है। इसे श्रवण मास कर्क संक्रांति के आरंभ में मनाया जाता है जब मानसून का आगमन होता है और खेती का नया मौसम शुरू होता है। हरेला मनाने के कुछ प्रमुख कारण हैं: भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा, अच्छी फसल की कामना, प्रकृति और हरियाली का सम्मान और नवजीवन का प्रतीक। हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं जिससे कि हमें सुख समृद्धि और मंगल के लिए कामनाएं जो हमारी होती हैं पूर्ण हों। अच्छी फसल की कामना, किसान भगवान से भरपूर वर्षा और समृद्धि खेती की प्रार्थना करते हैं। प्रकृति और हरियाली का सम्मान, इस दिन पौधे लगाए जाते हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। नव जीवन का प्रतीक, 9-10 दिन पहले जो भी हम 5-7 प्रकार के अनाज बोते हैं पर्व के दिन उनकी हरी अंकुरित बालियां, हरेला जिसे बोलते हैं, उसकी पूजा कर परिवार के सदस्यों के सिर पर और कान पे रखकर आशीर्वाद दिया जाता है। हरेला केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, कृषि, पर्यावरण और परिवार की खुशहाली का उत्सव है। यह हमें हरियाली बढ़ाने और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। पारंपरिक भोजन और मेल मिलाप भी इस दिन हरेला का एक विशेष महत्व रखता है। जैसे परिवार एक साथ भोजन करता है, रिश्तेदारों से मिलते हैं, लोग गीत गाए जाते हैं, कई स्थानों पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इस दिन आशीर्वाद जो है बड़े लोगों के द्वारा छोटे बच्चों को या अपने से छोटे लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे परिवार के बड़े सदस्य हरेला, हरी अंकुरित बालियां छोटे सदस्यों के सिर, कान और कंधों पर रखकर लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। यह पर्व हमें प्रकृति की रक्षा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने, खेती का सम्मान करने और परिवार व समाज में प्रेम और समृद्धि बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इसलिए आप सभी को हरेला की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
2: देवभूमि उत्तराखंड के पावन लोक पर हरेला की आप सभी को सपरिवार हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का जीवंत संकल्प है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब एक पौधा अवश्य लगाएं व जल और वन संपदा का संरक्षण करें तथा अपने व आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और स्वच्छ पर्यावरण का संकल्प लें, क्योंकि प्रकृति की रक्षा ही मानव जीवन की सच्ची सुरक्षा है। हरेला मनाएं, वृक्ष लगाएं, हर घर हर आंगन हरियाली लाएं। एक बार पुनः आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, हरेला पर्व देखने में जितना खूबसूरत लगता है, चारों तरफ हरियाली और फूल नजर आते हैं, उतनी ही इंटरेस्टिंग होती है इसकी तैयारी। जी हाँ, लगभग 9 से 10 दिन पहले ही हरेला पर्व मनाने की तैयारी होती है। एक छोटी सी डलिया या बास्केट में या फिर ज़मीन पे भी लोग लगभग 5 से 7 तरह के अनाजों को बोते हैं और इन अनाजों को ही काटा जाता है। जो इनमें से बीज अंकुरित होते हैं, जो फसल उगती है, उसको काट कर ही हरेला त्यौहार आशीर्वाद के रूप में मनाया जाता है।
1: जी रया जागी रया, जुग जुग बची रया, यो दिन यो मासा। सभी उत्तराखंड वासियों और देशवासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मुख्य रूप से हरियाली के संरक्षण, कृषि, पर्यावरण संरक्षण और नई ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व मानसून की शुरुआत, फसल की बुआई और भगवान शिव पार्वती की आराधना से भी जुड़ा है। हरेला का शाब्दिक अर्थ हरियाली का दिन, जो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ इस दिन वृक्षारोपण करने का भी महत्व रहा है। त्यौहार में 9 दिन पहले या 7 या 9 प्रकार के अनाजों जैसे जौ, गेहूं, मक्का, सरसों आदि के बीज टोकरी में बोए जाते हैं। 9 दिन में अंकुरित हो जाने के बाद इनको काटकर भगवान को अर्पित किया जाता है और घर के बड़े बुजुर्गों के सिर के ऊपर और कान के ऊपर रखकर उनके खुशहाल जीवन और दीर्घ जीवन की कामना की जाती है। धन्यवाद।
2: उत्तराखंड में हरेला पर्व स्वयं मास की शुरुआत करके संस्कृति पर मुख्य रूप से मानसून और हरियाली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण और अच्छी फसल की कामना की जाती है। त्यौहार के दिन खीर, पूड़ी, पुए, बड़े और छोले जैसे पारंपरिक व्यंजन मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। त्यौहार से 9 दिन पहले 5 या 7 प्रकार के अनाज जैसे जौ, गेहूं, मक्का, उड़द, धान आदि एक टोकरी या बर्तन में बोए जाते हैं। 10वें दिन इन पौधों को काट कर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। उत्तराखंड में हरेला को वृक्षारोहण के त्यौहार के रूप में भी

तो हरेला पर्व आप सबके जीवन में भी ढेर सारी हरियाली, खुशहाली और एक नई उमंग लेकर आए। इसी के साथ कार्यक्रम झुमका गिरारी से अमृता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
3: तो दोस्तों 11:31 का वक्त 100.7 FM रेनबो आप सुन रहे हैं। संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश हम तक हमारे लिसनर्स भेजते रहते हैं ईमेल के जरिए या फिर फोन कॉल के जरिए। और फोन कॉल पर इस वक्त भी हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है, ये जानते हैं कौन है वो। हेलो।
4: हेलो,
3: बहुत बहुत नमस्कार सर, है आपको रेनबो में आपका स्वागत है। कैसे हैं सर आप?
4: सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
4: आप कैसे हैं?
3: बढ़िया है सर। आपका गुड नेम?
4: नाम मेरा सलमान है। जी जिला हरदोई।
3: सलमान जी अभी शायद थोड़ी देर पहले आपका कॉल भी लगा था और किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से कट गया था। खैर कोई बात नहीं, क्या संदेश रहेगा सर आज आपका?

0: संदेश मेरा ये रहेगा आज के, ये इस वक्त बारिश का टाइम चल रहा है
1: जी,
0: सात किलो से मतलब मेरे पास कल ही परसों एक हादसा हो गया, एक भैंस खत्म हो गई, सांप ने काट लिया उसको।
1: अच्छा,
0: बेचारे अभी लाए थे, खत्ता हुआ था 1.5 लाख रुपए की। इस वजह से थोड़ा आंखों को बहुत तेज रखे अपनी नजरों को
1: जी,
0: और उल्टा सीधा खलियान जिसे पानी भरा हुआ है, जंगल झाड़ी है, उसके हिसाब से।
1: बिल्कुल सही है सर, आज देखिए वर्ल्ड स्नेक डे है, विश्व सर्प दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए लोगों को जागरूकता दी जाती है कि भाई जो भी कीड़े मकोड़े हैं या फिर जो सांप हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं और वो हमारे लिए खतरनाक है नहीं है, सावधान कैसे रह सकते हैं, तो इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी होती है
0: जी। जैसे किसान लोग हमारे जो है मतलब इस वक्त धान लगने का टाइम आ रहा है, मकाई भी बोई जा रही है
1: जी,
0: ये रात में जाते हैं खेत को बचाने के लिए, तो उनकी इन चीजों में थोड़ा टॉर्च वगैरह अच्छी रोशनी वाली और अपनी नजर को तेज रखे।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: ध्यान रखें। दूसरा मेरा संदेश, जैसे हम लोग केमिकल जो यूज कर रहे हैं
1: अच्छा
0: उसको ना कर, उससे खेत आपके कमजोर होते हैं।
1: हाँ,
0: जैसे एक इसमें कीड़ा होता है जिसका नाम होता है यहाँ पे गाँव में लोग बोलते हैं चिकवा, तो ये जब केमिकल हम लोग डालते हैं तो खत्म हो जाता है मिट्टी को, वो टाइट करते, वो मिट्टी को खोदा करते हैं, वो पेड़ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते और खेत की जो जमीन है मिट्टी वो जो मुलायम रहती है
1: जी,
0: तो आपका बीज भी खराब नहीं होगा और अच्छा फसल भी तैयार होगी।
1: चलिए आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, बहुत सारे किसानों को इससे फायदा होगा। और
0: किस नाम लेंगे
1: जी? जरूर, जिसका नाम लेना चाहे जरूर लीजिए।
0: गुलफा जी संदीदा थे
1: जी,
0: साहिबान तारी और विनती पिंकी और
1: चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इतनी अच्छी सी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, उसके लिए मैसेज दिया है, उम्मीद करते हैं लोग इसको समझेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे। और 11:34 का वक्त आ रहा है, प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है फ्रॉम द मूवी कृष्णा, और साथ ही आप हमें जरूर कॉल करिए, हमारी फोन लाइन्स ओपन है जिनके की कॉन्टेक्ट नंबर है 0522 2238 852, 0522 2238 845। स्टे ट्यून विद दिल आर्चेन निखिल।

जी दोस्तों, 11:38 का वक्त और प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे। मैं हूँ आपके साथ आपका दिल आर जेन निखिल। और साथ ही आपको दोस्तों बता दें कि बहुत सारे लोगों के ईमेल आ रहे हैं जिन लोगों का कॉल नहीं लग पा रहा, तो कोई बात नहीं, उनके मेल हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तेज बहादुर यादव जी का मेल है और लिखते हैं कि भाई सुपर हिट सॉन्ग्स, बहुत ही सुंदर गीत सुनवाए और इस कार्यक्रम में भी गीत पसंद आ रहे हैं और इनका जो संदेश है बड़ा ही अद्भुत है भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से कहा जा रहा है कि ये बात आप मान लीजिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। इन्होंने ये लिखा है कि हमारे जितने भी महान भाई बहन हैं जो लोग रोज रोज फोन करते हैं और अब बहुत सारे नाम गिनवा देते हैं, प्लीज उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में एक ही बार फोन करें ताकि नए लोगों का नंबर लग सके और नए लोगों को भी मौका मिल सके रेनबो पर अपना संदेश पहुंचाने का। और इन्होंने नाम लिखे हैं तेज बहादुर यादव, ममता यादव के, और गुरुग्राम हरियाणा से ये सुन रहे हैं हमको। तो भाई इनका संदेश भी ठीक है, सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज सभी लोगों को मौका दीजिए और जिनका फोन लग चुका है वो प्लीज दोबारा कॉल करिए, हमको जरूर करिए, आपका स्वागत है, लेकिन दूसरों को भी मौका जरूर दीजिए। महेंद्र दीपन जी का भी हमें ईमेल आया हुआ है जिला नागौर राजस्थान से, और नमस्ते लिख रहे हैं, साथ में लिखते हैं संदेश कि श्रोताओं की हम रास्तों पर चलते समय तो हादसों से बचने के लिए सावधानी का बोर्ड पढ़ते हैं, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में सोशल मीडिया की सड़क पर सावधानी बरतना भूल जाते हैं। इनकी ये छोटी सी सलाह है कि निजी जिंदगी की खुशियों और फैसलों की स्पीड को इंटरनेट पर थोड़ा सा धीमा रखें, क्योंकि हर बात को दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं। अपनी कुछ बातें, अपना सुकून सिर्फ अपने तक ही सीमित रखिए। आज के समय में सबसे बड़ी सुरक्षा और सावधानी यही है कि लोग अपनी जिंदगी के बारे में सिर्फ दूसरे लोग अंदाजा ही लगाते रहे, लेकिन आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहे और यही आपकी सेफ्टी है। बिल्कुल सही बात की है आपने महेंद्र जी, क्योंकि लोग इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें अपलोड करते रहते हैं, पर्सनल चीजें अपडेट करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा प्राइवेसी बनाकर रखना बहुत जरूरी है। नजीम रैन जी का भी हमें ईमेल आया है, गुड मॉर्निंग सर लिखा है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा गुलफसा सिद्दीकी जी का भी ईमेल आया हुआ है, संडीला से इन्होंने मेल लिखा, उन्होंने कहा है कि वैसे तो हम सब लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम सब लोग कई बार गंदगी भी फैला देते हैं और जिसकी वजह से कुछ लोग बीमार भी पड़ते हैं। अब जैसे इन्होंने लिखा है कि बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि जब कभी हम लोग नोटों की गड्डियां गिनते हैं, क्या एग्जांपल दिया भाई, नोटों पैसों की याद आ गई भाई। इन्होंने लिखा है कि जब भी नोटों की गड्डियां गिनते हैं तो अक्सर उसको गिनने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अंगूठे पे या उंगली पे मुंह पे थूक लगा लेते हैं और नोटों की गड्डियां गिनना चालू कर देते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजों का ही सही, शायद आपको स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। तालिब अंसारी जी का कटरा 12 बंकी से ईमेल आया हुआ है और इनका मैसेज नहीं, एक सवाल है, एक तारीफ कुछ ऐसी इन्होंने लिखी। इन्होंने लिखा है आरजे नितिन सर के बारे में, उन्होंने लिखा है कि वो रात में आते हैं, शोज अच्छे लगते हैं और मेरे लिए लिखा है कि मेरी और उनकी वॉइस बहुत मैच करती है। थैंक यू सो मच आपके इस ईमेल के लिए। वारिस अली खान जी का भी ईमेल आया हुआ है और इन्होंने लिखा है कि अर्ज है, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। क्या बात है, भरोसा रखिए सबके ऊपर, लेकिन आपको क्या करना है ये डिसीजन एक बार खुद

से भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और इन्होंने संदेश दिया है कि पतझड़ में सूखा पेड़ भी हार नहीं मानता, वो जानता है बसंत फिर लौट कर आता है। जिंदगी में ठहराव हो तो घबराना मत, हर सूखी डाली पर फिर से जीवन मुस्कुराता है। ऐशबाग से इन्होंने हमको ये ईमेल किया, ऐशबाग लखनऊ से। इसके अलावा हमें एक ईमेल और आया हुआ है हिदाया एंड फिदाया अंसारी जी का। जी हाँ, ये दोनों बहनें हैं आपस में, और ये साथ में इन्होंने ईमेल किया और साथ में इन्होंने लिखा कि एक जमाने के बाद आपकी आवाज सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड साथ में इन्होंने एक इल्तिजा की है, एक सॉन्ग के बारे में फरमाइश की है। खैर, आपका जो पसंदीदा सॉन्ग है ये कोशिश की जाएगी प्ले करने की हेलो एफएम प्रोग्राम में। फिलहाल के लिए आपने मेल किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे लोगों के लगातार ईमेल आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ट्रैक आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 11:43 का ये वक्त, और आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर। और जल्दी से हमें कॉल लगाइए क्योंकि हमारी फोन लाइंस ओपन है, जिनके की कॉन्टेक्ट नंबर है 0522 22 38 852 या फिर 0522 22 38 845। सो स्टे ट्यून्ड।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो। 100.7
4: तो दोस्तों 100.7 FM रेनबो आप सुन रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आपका दिल आरजे निखिल। और लगातार बहुत सारे लोगों के हमें ईमेल्स कॉल्स भी आ रहे हैं और अपना संदेश वो FM रेनबो के माध्यम से बहुत दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप भी हमें सुन रहे हैं और आपके मन में भी कोई संदेश है जो आपको लगता है बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज हमें कॉल करिए 0522 2238 852 पर या फिर 0522 2238 845 पर। और अपना मैसेज लेकर के हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है। हेलो। हेलो, हाँ जी, अब आपकी आवाज आई
5: आवाज।
4: नमस्ते जी। जी जी, कहाँ चली गई थी भाई? हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, मुझे लगा कोई टेक्निकल इशू आ गया, लेकिन आपकी आवाज वापस लौट आई। खैर कोई बात नहीं, रेनबो में आपका स्वागत है। बताइए आपका गुड नेम क्या है?
5: मेरा नाम अफसाना है।
4: अफसाना जी,
5: जी।
4: तो अफसाना जी क्या कर रही है वैसे आप? मौसम कैसा है वहाँ का?
5: यहाँ का मौसम तो हल्की के धूप निकल रही, बादल छाए हैं।
4: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
5: हम जयपुर से बोल रहे, बाराबंकी जिला।
4: बाराबंकी जिले से? तो वहाँ पर बरसात का मौसम नहीं है, बादल छाए हैं?
5: बादल छाए हुए हैं, पर रात में बाराबंकी के इलाके में बारिश हुई थी।
4: रात में हुई थी, चलिए। तो मौसम अभी फिलहाल ठीक होगा, धूप जैसी गर्मी वाली तपिश वाला हाल नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, मौसम अच्छा बना हुआ है। तो इस बारिश के मौसम में आपका क्या संदेश है वैसे?
5: बारिश के मौसम में ये संदेश है, लोग ज्यादा बारिश में लिख रहे हैं ना, छाता तो लेके लिख रहे हैं, जो लिख रहे गाड़ी धीम चलाएं।
4: जी चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का ख्याल रख रही हैं और लोगों को समझा भी रही हैं कि जागरूक रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बरसात में कहीं बीमार न पड़ जाए।
5: जो लोग रोज फोन करते हैं वो कृपया एक महीने के बाद किया करें, 15 दिन के बाद स्टाफ लेके।
4: ओहो, तो आपने एक बहुत ही जरूरी सूचना दे दी हमारे सभी लिसनर्स को। खैर कोई बात नहीं, उन तक ये बात पहुंच गई
5: है ना, इसलिए।
4: जी जी,
5: कल भी कितना समझाई नंजू मैम ने, सुमोना मैम ने, मगर लोग को समझ में नहीं आता है।
4: वो समझेंगे समझेंगे। देखिए आज आपका कॉल लगा है, मतलब किसी ने कॉल नहीं किया है, उनकी बात को माना है, तो आपकी कॉल लग गई है।
5: मैम पहले ही कॉल लग चुकी, जिनको मना किया था वो लोग पहले ही कॉल कर चुके हैं।
4: खैर कोई बात।

0: पहुंच गई है।
1: नहीं है ना, इसलिए
0: जी,
1: कल भी कितना समझाए नंजू मैम ने, सुमोना मैम ने, मगर लोग को समझ में नहीं आता है कि
0: नहीं
1: वो
0: नहीं
1: लोग क्या
0: समझेंगे
1: कह रहे हैं।
0: समझेंगे। देखिए, आज आपका कॉल लगा है, मतलब किसी ने कॉल नहीं किया है, उनकी बात को माना है, तो आपकी कॉल लग गई
1: पर
0: है
1: मैम पहले ही कॉल लग चुकी, जिनको
0: जी।
1: मना किया था वो लोग पहले ही कॉल कर चुके हैं।
0: खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बताइए, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: नाम मेरा दो भाई हैं,
0: जरूर लीजिए।
1: एक अदनान है एक जुबेर।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। जी हाँ, 11:51 का ये वक्त और प्यार से म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है आप सबके रेडियो सेट पर, सुनते रहिए।

कि एक दूसरे का साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस बहुत ही अच्छे मेल के लिए। इसके अलावा जुनैरबतुल अंसारी जी का भी ईमेल आया हुआ है और इन्होंने लिखा है कि भाई प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और एफएम रेनबो ये रोज सुनते हैं, और इन्होंने भी एक अपील की है कि भाई जो भी लिसनर प्लीज रोज रोज कॉल करते हैं जिनकी वजह से हमारे कॉल नहीं लगते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा अगर आपकी बात हो जाए तो किसी दूसरे कॉलर को मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस ईमेल के लिए। इसके अलावा गुलफ्सा सिद्दीकी जी का भी एक और मेल आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि एक बात बताइए, जब नए रिश्ते जोड़े जाते हैं तो क्या पुराने रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए, और उनको तो और सजा के हमें रखने चाहिए क्योंकि वो हमसे ज्यादा पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मेल के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने मेल किया, अपनी बातें रखी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों 11:57 हो गए हैं और अब इस प्यारे से म्यूजिकल के साथ, ट्रैक के साथ मैं आपको कहता हूँ टाटा बाय बाय। सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 11:54 का वक्त हो रहा है और प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के हमें ईमेल भी आए, तो जल्दी से उनके भी मेल और मैसेजेस आप तक पहुंचा देते हैं। भाई रामराज जी का मेल आया हुआ है और ये लिखते हैं, श्री गणेशाय नमो। संदेश आपके गीत हमारे जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पापू, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। तथा संदेश यह है कि बारिश का महीना है, गर्मी भी बहुत हो रही है, जो भी करना है सुबह और शाम को किया करें, धन्यवाद। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल के लिए। एमके राज जी का भी मेल आया हुआ है। लखीमपुर खीरी से इन्होंने मेल किया हुआ है, लिखा है कि हिम्मत ना हारिए विसारिए, है ना राम, दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। उनका संदेश ये है कि जो व्यक्ति अपनी समस्या से घिरा हुआ है, कृपया उसे परेशान करना या उस पर हंसना बहुत ही शर्मनाक होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी अथवा किसी भी समस्या से जूझ रहा है तो उसको हौसला बढ़ाइए, उसकी मदद कीजिए, ना कि उसका मजाक उड़ाइए, ना कि उसका दिल तोड़िए, क्योंकि समस्याएं तो सभी के साथ हो सकती हैं, चाहे परिवार में हो या बाहर। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। यह रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है, जिससे संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया है। IRCTC ने इस वर्जन में चार बड़े सुधार किए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप और ध्यान

भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जारी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा घोटाला मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी ने आज जेल में रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव से करीब एक घंटे पूछताछ की। एंटी करप्शन कोर्ट ने अनुमति लेकर कि ये पूछताछ की गई। विवेचक आज कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। काशी में भगवान जगन्नाथ की पुरी बनने के अवसर पर आज सूर्योदय की पहली किरण के साथ नाथों के नाथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर नमामि गंगे और अन्नपूर्णा सामाजिक सेवा समिति ने लोक कल्याण व पर्यावरण संरक्षण की कामना की। अष्टकोणीय पीतवर्ण के रथ पर आरुण भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा व भैया बलदाऊ को प्रिय नान खटाई का प्रसाद चढ़ाकर विकसित आत्मनिर्भर गंगा निर्मलीकरण व आरोग्य भारत के लिए आशीर्वाद मांगा। रथ यात्रा मेले में उपस्थित श्रद्धालुओं में भगवान जगन्नाथ के प्रिय तुलसी के पौधे एवं कपड़े के झूले का वितरण किया गया। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व के पांचवें नंबर खिलाड़ी चीन के हान यू को सीधे सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पीवी सिंधु ने मात्र 35 मिनट में 21-16, 21-14 से शानदार जीत दर्ज की। प्री क्वार्टर फाइनल में तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला के मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

दोस्तों आप सभी लोग सुन रहे हैं एफएम रेनबो और मैं हूं शालिनी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हमारे आज के विशेष कार्यक्रम शत्रुपा में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शौक की जो न केवल हमारे घर को खूबसूरत बनाता है बल्कि हमारे मन को सुकून देता है, तनाव कम करता है और हमें नेचर के और करीब ले जाता है। जी हाँ, तो पता है कौन सी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं बारिश के मौसम में घर पर बागवानी। बारिश का मौसम आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है ना, सूखी धरती फिर से मुस्कुराने लगती है, पेड़ पौधे नई पत्तियों से भर जाते हैं और वातावरण में एक अलग सी ताजगी महसूस होती है। ऐसे मौसम में अक्सर मन करता है कि काश हमारे घर में भी थोड़ा सा कोना हरा भरा हो जहां सुबह की चाय के साथ कुछ पल सुकून के बिताए जा सके। और अच्छी बात यह है, इसके लिए हमें किसी बड़े बगीचे की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास एक छोटी सी बालकनी है, छत का एक कोना है, खिड़की की चौखट या घर के बाहर थोड़ी सी जगह है, तो आप ये सारा काम यानी कि आप वहीं पर अपनी बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या क्या होंगी खास बातें, इसके लिए आपको हमसे यानी कि 100.7 एफएम रेनबो से जुड़ना होगा। शालिनी रहेगी आपके साथ और अगर आप भी इस तरह का कुछ काम करते हैं या कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं, तो आप हमें मेल के जरिए बता सकते हैं। मेल आईडी हाँ वही हमारा एफएम रेनबो आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com ना, कुछ हमारी मेल आईडी थोड़ा सा गड़बड़ा गई है। fmakashwani@lucknow.com दोबारा सुन लीजिए, fmakashwani@lucknow.com पे आपको मेल करना।

0: है आकाशवाणी में वी है डब्ल्यू नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बढ़िया वाले प्यार भरे मौसम वाले गाने पहुंचाएगी शालिनी आप तक।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

कहते हैं कि जिंदगी भागदौड़ से भर गई है, समय किसी के पास नहीं है, ना सुबह जल्दी उठने का, ना रात में जल्दी सोने का, सब कुछ उलट पुलट सा गया है। लेकिन दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बागवानी केवल एक शौक नहीं बल्कि एक तरह की थेरेपी भी बन गई है। दिन भर के काम के बाद जब हम कुछ समय पौधों के बीच बिताते हैं, उन्हें पानी देते हैं, उनकी नई पत्तियां निकलते देखते हैं या किसी पौधे पर पहला फूल खिलता हुआ देखते हैं, तो जो मन में खुशी मिलती है ना, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और यही वजह है कि आज शहरों में लोग अपनी बालकनी और छतों को छोटे छोटे गार्डन में बदल रहे हैं, है ना। तो आप कब क्या कैसे शुरुआत करेंगे, मेल करिए जरा FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
3: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:18 बोलने वाले थे और 1 सेकंड बढ़ा और वो 18 से 19 हो गया। 12:19 हो चले हैं और 7 सेकंड शालिनी आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में, जिसमें आज हम बातें पेड़ पौधों की कर रहे हैं। एक और खास बात है, बागवानी हमें पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार बनाती है। एक छोटा सा पौधा भी हमारे आसपास की हवा को बेहतर बनाने और तापमान को कंट्रोल रखने और साथ ही साथ पक्षियों को, तितलियों को आकर्षित करने में मदद करता है ना। अगर घर में 2 या 4 पौधे भी लग जाए तो सोचिए हमारा शहर कितना हरा भरा और खूबसूरत बन सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बागवानी शुरू करने के लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों, अब आप सोचेंगे कैसे हो जाएगी बिना खर्चा किए। भाई अभी ही मानसून आया है, उससे पहले आपने क्या किया था, साफ सफाई की थी ना, बालकनी की भी, ऊपर छत की भी, बहुत सारी चीजें निकली होंगी, जैसे टूटी बाल्टी निकली होगी, टिन डब्बा निकले होंगे, जिसमें आप आसानी से उनका उपयोग करके उसमें पौधे लगा सकते हैं। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग गार्डनिंग भी कहा जाता है इसे, जो घर के बेकार सामान से भी काम निकाला जा सकता है। हर पर्यावरण को भी फायदा होता है और उसको आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, जैसा आपको मन करे। और जब ये आप काम करेंगे ना मन से, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आज के सफर में हम जानेंगे कि बारिश में कौन कौन से पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं, उनकी कैसे देखभाल करें पौधों को बारिश में।

कैसे हम उनको अपने बीच बनाए रखें। मतलब केवल पौधा लगाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पौधा लगाने के बाद उससे दोस्ती करना। जी हाँ, जब आप दोस्ती करेंगे ना, तो दोस्त को कोई भूलता है भला? नहीं भूलता है ना, उसका हाल चाल, उसका ख्याल सब रखते हैं। तो बस आपको क्या करना है, पौधों से दोस्ती करना है। फिर देखिए, आप अपनी बात बताइए, उनकी बात भी आपको समझ आएगी। तो चलिए, और ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए।

अच्छा दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि बागवानी करना बड़ा मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए। अगर आप दिल से करेंगे ना तो आपके लिए समय कम पड़ जाएगा, ज्यादा तो चाहिए ही नहीं। और हाँ, बस मुश्किल इसलिए लगता है कि जैसे हमारे पैरों में, जोड़ों में परेशानी है और हमने 2 मंजिल या 3 मंजिल के ऊपर अपनी गार्डनिंग करी है, बागवानी करी है। आपको ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर आप सुविधा से पहुँच सकते हैं, जहाँ पर आसानी से आप पौधों से दोस्ती कर सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उस तरह से आपको सोचना है और उस नज़रिए से देखना है। और इसके लिए आपको रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट ही पौधे को देना है। और ये तो आपकी देखभाल का जवाब अपनी हरियाली और ताजगी से ये जरूर देंगे। और अब सवाल उठता है कि अगर आज से बागवानी हम शुरू करें तो कौन से पौधे लगाएं? जी हाँ, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत खर्च की बात आएगी। जब पौधे हम लाएंगे या हम कैसे इनका भी इस्तेमाल करते हैं और कैसे इनको भी अरेंज करते हैं। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप अपने किचन गार्डन की शुरुआत कर सकती हैं। जैसे धनिया पत्ती है, पुदीना है, मेथी है, पालक है। जी हाँ, ये पौधे जल्दी उगते हैं और रोज रसोई में भी काम आते हैं। सोचिए जरा, सुबह सुबह अपने ही घर में उगी हुई ताजी धनिया पत्ती आप तोड़ कर लाई और बढ़िया खुशबूदार सब्जी में आपने डाल दी, क्या बात है। मतलब सोचिए, और या आपने तुलसी की पत्ती ली और चाय में डाल दी, क्या बात है, है ना। पुदीना आपने उगाया है और चटनी खाने का मन है, ताजा हरा पुदीना आपने लिया और चटनी बना ली फटाफट। सोचिए जरा, जो इसका आनंद है ना, ये एकदम ही अलग है। तो बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और इस तरह से काम को करना है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है,
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।

दोस्तों, अभी बात करी हमने जिन लोगों को खाना बनाने का शौक है वो किचन गार्डन की शुरुआत करेंगे, और जिन्हें फूल पसंद है तो वो कौन से फूल लगा सकते हैं, गेंदा, सदाबहार, चमेली और गुलाब। और इस मौसम में ये बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, इनकी खुशबू और इनका रंग आय हाय घर का माहौल और भी खुशनुमा बना देता है। और वहीं अगर आप घर के अंदर रखने वाले पौधों को चाहते हैं तो

प्लांट है, स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, एलोवेरा जैसे बहुत अच्छे सारे ऑप्शन हैं। बस आपको चूज क्या करना है। और ये पौधे कम देखभाल में भी अच्छी तरह बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें खरीदने की जरूरत नहीं होती है। कई ऐसे पौधे हैं जिनके आप घर में पहले से जिन्हें आप लगा के रखा है, जिन्हें उनकी टहनी ही आप तोड़कर लगाकर दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत कम खर्च भी होता है और अपनी हरियाली भी बढ़ा सकते हैं। एक बात और, पौधे सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते हैं, ये हमें धैर्य सिखाते हैं। कैसे, जब हम रोज एक छोटे से पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं तो ये एहसास होता है कि लाइफ में अच्छी चीजों के लिए समय, मेहनत और देखभाल की जरूरत है। शायद यही वजह है कि आजकल डॉक्टर भी तनाव कम करने के लिए लोगों को गार्डनिंग जैसी गतिविधियों से जुड़ने की सलाह देते हैं। हाँ, आवाज आप कह रहे हैं ना, म्यूजिक भी इसी तरह से काम करता है। जी हाँ, तो देखिए गार्डिंग के साथ में म्यूजिक भी तो आप तक पहुंचा रहे हैं, तो सुनिए आप प्यारा से ट्रैक। अगर आपकी तरफ बारिश नहीं हो रही है उसके लिए ये प्ले कर रहे हैं, इसको सुनकर बारिश हो जाएगी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: दोस्तों 12:49 और 28 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में, शालिनी है आपके साथ और दो मेल भी आ चुके हैं हमारे बीच में। नीरज कुमार मिश्रा लखीमपुर से लिख रहे हैं कि इन्हें बागवानी का शौक है और इन्होंने अपनी छत पर बहुत सारे फूल वाले पौधे लगा रखे हैं और उनके साथ समय बिताना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शुभ अवसर पर पौधे भेंट करता हूं। ये बहुत अच्छी बात लिखी है, ये बात अभी आगे और हम करेंगे। और संजय निगम, शशि निगम, विवेक खंड 3 गोमती नगर लखनऊ से मेरे मेल आया हुआ है हमारे पास में और इन्होंने लिखा है कि हम अपने छोटे से घर में 130 गमलों में विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे गुलाब, कनेर, गुलहर, चंपा, बेलपत्र, चमेली, गुल मेहंदी, शनि लिली, मीठी नीम, कनेर, विष्णुकांति, हल्दी, अदरक जैसे पौधे लगाए। क्या बात है भाई संजय, आपके घर आना पड़ेगा। जब बाहर जाते हैं तो पौधे खराब हो जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, पता है। जब आप बाहर जाते हैं तो पौधे हमें मिस करते हैं, इसलिए वो दुखी होते हैं, इसलिए बेकार हो जाते हैं। बच्चों की देखभाल तो इनकी करनी ही पड़ती है, लेकिन रियल में आप जीनियस हैं बिल्कुल। इतने सारे पौधे, क्या इतने सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो आपका ख्याल और आप उनका ख्याल रखते हैं।

हाँ, अभी जो गौरव जी ने बात की थी ना कि मित्रों को शुभ अवसर पर हम पौधे भेंट करते हैं, इस मौसम में अगर कहीं पर कोई आप पार्टी में जाते हैं, शुभ अवसर पर आपको बुलाया जाता है, चाहे वो बर्थडे है, एनिवर्सरी है, शादी है, तो आप जब बुके देते हैं ना, बुके की जगह पर आप छोटे से गमले में उगा हुआ पौधा दे सकते हैं, जिससे कि आप उससे कहें कि देखिए ये हमारी भेंट है जिसे आपको संजो कर रखना है, इसकी देखभाल करनी है। कई जगह पर ऐसा किया भी जा रहा है, प्लांट गिफ्ट किए जाते हैं, रिटर्न गिफ्ट की तरह से भी दिए जाते हैं और इनका अलग ही आनंद है दोस्तों। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी पौधे लगाने में शामिल करें, उन्हें एक छोटा सा गमला दीजिए और कहिए कि इसकी देखभाल करो।

छोटा सा गमला दीजिए और कहिए कि इसकी देखभाल करो और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बच्चे भी नेचर से प्यार करें, उसकी जिम्मेदारी समझें और धैर्य जैसी अच्छी आदतें उनके अंदर आ जाएंगी। और क्यों ना इस बारिश के मौसम में हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि अपने घर में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे। और ये पौधा सिर्फ हमारे घर की सुंदरता ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि आने वाले समय में पर्यावरण के लिए एक छोटा सा ही सही लेकिन योगदान होगा। तो अब करेंगे ना ये सब जी। और 12:52:27 हो चले हैं और वक्त आ चला है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। लेकिन आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि क्या करना है, कैसे करना है और इसके बाद प्रोग्राम कौन सा होगा। ओठों पे तेरी बात, जी हाँ, आपकी ही बात शालिनी के ओठों के जरिए सब तक पहुंचेगी और क्या बात करना है ये हम आपको बताएंगे उसी प्रोग्राम में। उसके लिए क्या करना है, आपको बने रहना है 100.7 FM रेनबो पर, जो कि क्या है, धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है जिंदगी के।

आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत में हमारे सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। ये कार्यक्रम आधारित होता है आपके भेजे हुए पत्रों पर, यानी अनुरोध पर। और आइए, आज भी हर बार की तरह ढेर सारे पत्र हमारे हाथ में हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा नाम और ज्यादा से ज्यादा पत्र इस कार्यक्रम में शामिल करें। तो चलते हैं कार्यक्रम के पहले अनुरोध की ओर। फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। आवाज है जावेद वसीर की, लिखा है रजत अरोड़ा ने और कंपोज यानी संगीत है प्रीतम का। सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने। सम्राट चौक शिरपुर जैन जिला वाशिम से गिरीश देशमुख, सोनाली देशमुख, रेणुका आरव, अश्विनी देशमुख, मौसमी देशमुख, जयश्री, माधुरी, जी बॉय देशमुख। इसी गीत को सुनने के लिए ये पत्र भेजा है एडवोकेट वारिस अली खान ने इस्लामुन, और साथ में है इस्लामुन निशा, सहनवाज खान और परिवार के सभी सदस्य, शकील अहमद और सलीम अहमद भी। पता है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। मलोद कैंप पंजाब से ये पत्र हमें भेजा है सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह,

0: लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण सरोवर, रमेश मिगलानी और परिवार के सभी सदस्यों ने इसी गीत को सुनना चाहा है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से ये पत्र भेजा है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और सुनीता शर्मा। इस गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है बरेली जंक्शन से वीरेंद्र सिंह चौहान, गरीब भाई, विक्की भारद्वाज, सोनू मिश्रा, अंकित सिंह चौहान, जिला बरेली से। कोटबा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ये पत्र है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और इनके साथ में है अमित कुमार राय, हैप्पी रॉय। दुबिहा, नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर, कलाम, गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। छत्तीसगढ़, भाटापारा, दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। तो आइए आप सबके अनुरोध पर आपको सुनवाते हैं फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये गीत।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली और आप सुन रहे हैं आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत को। तो ये चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है वाई चीट इंडिया, आवाज है अरमान मलिक की, लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत है रोचक कोहली का। सुनने के लिए अनुरोध किया है आप सभी श्रोताओं ने। सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें भेजा है प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय मेर साय, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा और परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहा है। कवाई सालापुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षित अभिषेक श्रीवास्तव ने। श्री गंगानगर राजस्थान से नेकी राम बंसीवाला और परिवार के सभी सदस्य, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम गुलबालो तहसील आलो रतलाम मध्य प्रदेश से ये पत्र हमें भेजा है। कृपाल सिंह परिहार, विक्रम सिंह परिहार, दिलीप सिंह परिहार और परिवार के सभी सदस्य। बुलडाड़ा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधबड़े, अनीता गाठोड़े और साथ में है रमेश राव। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोद जिला रतलाम मध्य प्रदेश से ही बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा और साथ हैं ऋषि वर्मा। मोताला बाजार से ये पत्र भेजा है बबलू शेख शरी शागिर और इनके साथ में है शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान और सैयद अजलान। चक 14 PSB जिला श्री गंगानगर से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मन राज विर्क और परिवार के सभी सदस्य। फिल्म वाई चीट इंडिया के इसी गीत को सुनना चाहा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तनबी बोध ने। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे ढींगरा और परिवार के सभी सदस्य। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है सहारनपुर से, लिखने वाली है राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा। कस्बा क्योलड़िया नवाबगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, धर्मवीर गंगवार, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुला

गंगवार, अंकुश, राजू चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार और संजीव गंगवार। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू सिक्का, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं ये गीत आपके अनुरोध पर।

104.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुन लेते हैं एक रेडियो हेल्पलाइन संबंधी आवश्यक सूचना। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 को, यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमारे टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से सुन लें, विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर और इस समय आप सुन रहे हैं आपके अनुरोध पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम का अगला गीत जिसको आप सभी ने सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है तनु वेट्स मनु, आवाज है पूरन चंद वाडली और प्यारेलाल वाडली की, लिखा है राजेश खेर ने और संगीत दिया है कृष्णा ने। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम गुप्ता ने। मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिष्का पटेल। चलते हैं कार्यक्रम के अगले पत्र की ओर और ये पत्र हमें लिख के भेजा है राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना और भरत कुमार ने। गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से। इसी गीत को सुनने के लिए कार्यक्रम का अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम बापोस्ट गोठा खंडुआ आंवला जिला बरेली यूपी से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप, माधुरी, प्रदीप, सविता देवी, सत्यम मिश्रा, शीतल, राधा मिश्रा, सलोनी और शिवम मिश्रा का। कार्यक्रम का अगला अनुरोध हमें भेजा है गंज डिंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान ने। नारायण नगला परौर शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से ये पत्र है प्रदीप कुमार कुशवाहा, पारुल कुशवाहा, सुधीर, दल सिंह, प्रेमचंद, अमर सिंह एवं समस्त कुशवाहा परिवार का। जनकपुरी सहारनपुर से इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो ने। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत खान, इशरत जहां और साथ में

0: हैं मास्टर अजहर खान अजीम खान। चलते हैं अगले पत्र की ओर। फिल्म वाई चीट इंडिया के इसी गाने को सुनना। अगला कमेंट हमें क्षमा कीजिएगा, अगला पत्र हमें भेजा है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। इसी गीत को सुनना चाहा है। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री ने। चलते हैं अगले पत्र की ओर। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है MLB रोड ग्वालियर से। लिखने वाले हैं सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लाव्या आरफ खुराना, SK पप्पी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तनु वेट्स मनु का ये गीत।
1: Thank you.

14.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। और आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले अनुरोध की ओर। फिल्म का नाम है मर्डर 2, आवाज है हर्षित सक्सेना की, बोल है सईद कादरी के, संगीत है हर्षित सक्सेना का ही। कार्यक्रम में जो हमें पहला पत्र प्राप्त हुआ है इस गीत को सुनने के लिए, वो पत्र है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक का। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा नंदिनी, रघुवंशी, शोभा, रेखा, बबीता, भूमिका, ललिता वंदना कुमारी, नारायण भाऊ खरसे और परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है टोडरपुर भूड़ बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं पीएस यादव, अजनबी अजयपाल सिंह यादव, पवन कुमार, प्रभात, मयंक यादव, मुन्नी देवी, नीतू सिंह यादव, प्रतिभा और प्रतिज्ञा यादव। कार्यक्रम का अगला पत्र हमें भेजा है उत्तम सिंह जुनेजा, सीमा जुनेजा, साहिबा गुप्ता, भूपेंद्र जुनेजा, अनमोल जुनेजा और पूरे जुनेजा परिवार ने। साथ में है भूपेंद्र जुनेजा, इनका पता है पश्चिमपुरी दिल्ली से। इसी गीत को सुनने के लिए एक और पत्र हमें प्राप्त हुआ है शोहेब खान और इनके परिवार के सदस्यों का, पता इनका नहीं लिख गया है इसमें। चलते हैं कार्यक्रम के अगले पत्र की ओर। ये पत्र है अलकनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैग लाइन बरेली से बेचे लाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, योगेश कुमार और इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित, राज, महावीर कश्यप, राम राठौर, रमेश चंद सैनी और गौतम राम, साथ है बाबू भाई। और आइए अब चलते हैं एक और पत्र की ओर। ये पत्र हमें लिख के भेजा है प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, राधे, आरती, माही, गौरी, विजय, प्रकाश और सुरेंद्र कुमार रस्तोगी ने। साथ में है गरीब भाई श्री राम राठौर और परिवार के सभी सदस्य। इनका पता है किला छावनी बरेली से। अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम चमड़पाई तहसील भांडेर जिला दतिया से। लिखने वाले हैं महताप सिंह पाल, राहुल पाल, धर्मेंद्र बघेल और बबलू पाल दाऊ।

भेजा है गौरव मदान ने बरेली से, नई बस्ती गंजे डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। रेडियो श्रोता संघ गुलबालो तहसील आलोद जिला रतलाम मध्य प्रदेश से विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई बंदेवी, आकाश महेश्वरी, विनायक और समस्त मालवीय परिवार फिल्म मर्डर 2 के इसी गीत को सुनना चाहा है। मोहम्मद हाफिजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान ने ईदगाह जनूबी जिला भक्कर पंजाब से। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं ये गीत।

100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म जन्नत से, आवाज है केके की। लिखा है कामरान अहमद ने और संगीत भी है कामरान अहमद का। सुना चाहे आप सभी श्रोताओं ने मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, जुबेर अली और अनम यशफ अब्बासी। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य ने। चलते हैं अगले पत्र की ओर। ये पत्र है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ और परिवार के सभी सदस्य। नवासा खुपटी बंधु लोहार पोपलगढ़ चंद्र कला, इनके नाम हैं ये और लिखने वाले हैं निवासा से बंडू लोहार पोपटगढ़ और चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़। डाबकी रोड अकोला से ये पत्र भेजा है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर ने। उमेश कुमार गौड़ रानी गौड़ बुलंदशहर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं। बुलंदशहर से ही उमेश कुमार और रानी गौड़ के अलावा इनके परिवार के सभी सदस्य भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश और आकांक्षा करवा। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बोड़ाना, सुधामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां और साथ में हैं अजहर खान, अजीम खान। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और शारिक अली खान। भक्कड़ पंजाब से पत्र भेजा है रेहाना खान और हफीजुर रहमान खान ने। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें मिला है कमरुल्ला ठेकेदार नसीमन बेगम, आयशा खान, हादिया खान का। इनका पता है सरोज चौक से, इनके साथ में है अमरावती सरोज चौक से इनके साथ में है सईद भाई और सूफियान, अनस और आयजा। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म जन्नत का ये गीत।

कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे अभय जोधा पुरकर की आवाज में फिल्म जीरो का गीत, लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है अजय अतुल का। सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने, छावनी अशरफ खां, पानी की टंकी के पास, होली चौक, बरेली से ये पत्र हमें भेजा है। रामसरा शर्मा, बेटी वंदना, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, खेम, करण भाई और साथ में है लक्ष्मी देवी, परिवार के सभी सदस्य। मोहल्ला गड़िया, बरेली से कैशर शमसी, अजीम शमसी, सलीम, नवेद, रजिया शमसी व परिवार के सभी सदस्य। ककड़ाला बदायूं से मशहूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, कर्मवीर गोसवाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी और सभी साथी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और उस्मानाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और अदीबा। सारीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। इसी गीत को सुनने के लिए पत्र भेजा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। यह अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। कमरुल्ला, नसीबन बेगम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोतरा मुश्तवा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जय तेग वीरक और मीका वीरक। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढींगरा। मलोद कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह और साथ में है लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण सरोवर और रमेश मिगलानी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथक। आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म जीरो का ये गीत।

100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत का। फिल्म का नाम है क्योंकि, आवाज है कुणाल गांजावाला की, बोल है समीर के, संगीत है हिमेश रेशमिया का। सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहार का, हार्दिक और वंश बत्ता। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है आदर्श नगर मलोद से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। पीर बहुड़ा बरेली से आजाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम। मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल और रामप्रसाद शर्मा। ये पत्र हमें भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। लिखने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्ठा बजाज, कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैया काका और रीता देवी। इनका पता है उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लियारी ग्राम मुंडेला से। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर, पता है जसपुर उत्तराखंड से। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, सरगुना मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा उल्लाह। फिल्म क्योंकि के इसी गीत को सुनने के लिए ये पत्र हमें भेजा है शेरकोट जिला बिजनौर मोहल्ला हलवाईयन से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा, जिला बदायूं तहसील दातागंज से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, केशव यादव, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरज श्री यादव। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा व इनकी प्यारी बेटी प्राची वर्मा। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म क्योंकि का ये गीत।

ट्यून किया है आपने 100.4 FM। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के बज रहे हैं ठीक दो, और साथियों समय हो गया है प्रोग्राम रसरंग का। सदाओं आपको एक बार याद दिलाते चलें कि शाम को 4 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आज का विषय है बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा या फिर छोटे छोटे काम। तो आपकी ये प्रतिक्रियाएं हमें मिलती रहें हमारी फेसबुक पोस्ट पर, साथ ही साथ आप हमें प्रोग्राम में जुड़ने के लिए कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबरों पर। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 2:30 PM पर। हमारा फ़ोन नंबर तो आपको पता ही है, हमारा फ़ोन नंबर है 2517200, बरेली को STD कोड 0581 लगाना ना भूलिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं प्रोग्राम रसरंग, और प्रोग्राम रसरंग में ये जो पहला रस लेकर आए हैं, पहली नज़्म है अमृता कोतलकर की आवाज़ में, आइए सुनते हैं इस

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। अभी आपने सुना राम गोपाल के स्वर में ये लोकगीत, लेकर आ रहे हैं आपके लिए राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये कव्वाली।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं रसरंग कार्यक्रम के अंत में आपके लिए लेकर आ रहे हैं सुखशिंदर सिंधा की आवाज में ये पंजाबी गीत।

शुभ सिंधा सिंधा के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: रात आधी है,
1: कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

0: ओपिनियर की बनाई तर्ज पर इसे गया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: कि बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जहां आरा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल सुरों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज है। श्रोताओ, यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप सुनिए ये गीत, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं इस मंच पर और आज ढेर सारी बातें होंगी, आपस में भी होंगी और हमारे सुनने वालों से भी होंगी।
2: बिल्कुल, उनकी बातों को हम अच्छे, जिन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं उनको हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उनसे बातें करेंगे और हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनाएंगे।
1: तो भाई वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं सिर्फ वो श्रोता जिन्हें पता है कि आज के विषय क्या है। हाँ। तो हम किस विषय पर बात करेंगे ये बताना भी बहुत जरूरी है।
2: बताना जरूरी है। तो आज हम सब बात करेंगे मनोरंजन के बदलते स्वरूप।
1: तो मनोरंजन की बात हो रही, भाई रेडियो की बात ना हो, मनोरंजन का बहुत पुराना और सबसे पसंदीदा जरिया है रेडियो और हमारे

0: श्रोता है वो तो जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मनोरंजन के माध्यम हैं उन्होंने अब तक क्या बदलते हुए देखा और उन्हें क्या लगता है कि ये स्वरूप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना अपना हर किसी का देखने का नजरिया होता है।
1: जरूरी नहीं सिर्फ रेडियो हो, हम आपस में कितने खेल खेल के
0: वो तो कहा ना,
1: आपस में बातें करके हम अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करते थे सब मिलके सखियों से बात करके, तो ये सब चीजें जो है पहले के जो साधन थे वो ज्यादा अच्छे थे या अभी के जो है वो ज्यादा आपको पसंद आते हैं, सब अपने आप नजरिया बताइए कौन सा आपको ज्यादा सही लगता है।
0: बिल्कुल, आज डिजिटल युग है तो डिजिटाइज चीजें जो हो रही है ना वो भी किसी को पसंद है किसी को नहीं है। जो पुराने दौर के व्यक्ति है ना उन्हें लगता है कि नहीं ये मोबाइल या जो गैजेट्स हैं उनसे तो अच्छा है अपने दोस्तों में बैठ के बातें करो,
1: बिल्कुल
0: चार दोस्त मिल गए जो अगर सखियां हैं तो वो कुछ पकवान बनाएंगी किटी पार्टी जैसा करेंगी उनका मनोरंजन हो जाता है, बच्चों के लिए खेल कूद मनोरंजन है, तो आपके लिए मनोरंजन क्या है और आपने क्या स्वरूप बदलते हुए देखे अपने विचार हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत यानुंग जामो लेगो जो की जड़ी बूटी विशेषज्ञ है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जानते हैं अधिकतर लोग उनके बारे में।
0: मतलब ये ऐसे उपचार हैं कह सकते हैं कि इनके साइड इफेक्ट यानी कि आपको कुछ भी गलत उपचार मिलने की संभावना कम होती है, यानी कि जो चीज अगर आपने ली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको फायदा ना दे लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती
1: है। प्राकृतिक उपचार होता है, तो प्रकृति तो वैसे ही इतनी ज्यादा अपने अंदर समेटे हुए पूरा खजाना, तो उसको हम जान लें तो हम हमारे सारे चीजों का इलाज वैसे हो जाएगा।
0: आरती आपने देखा है कितने लोग सिर्फ प्राकृतिक वाटर बॉटल्स में मंगाकर पीते हैं, पसंद करते हैं,
1: महंगी आती है वो जो पानी मिलता है उन बॉटल्स में, वो बहुत महंगा पानी आता है, तो आजकल शुद्ध पानी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो शुद्धता होती है जो प्रकृतिक चीजें जड़ी बूटियां होती हैं,
0: बिल्कुल
1: कुछ अलग ही
0: तो शुद्ध हवा पानी अपने आप में बहुत कहते हैं कि एक दवा का काम करता है। इसके अलावा कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, उनको पहचानना भी अपने आप में बड़ा काम है। तो जिन सखी की आज हम बात करने वाले हैं ये उनको पहचान कर उनसे उपचार करती हैं और बहुत सारे लोगों को ये अपने उपचार से स्वस्थ कर चुकी हैं।
1: बिल्कुल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज
0: जी,
1: और साथ ही हम बात करेंगे कि चंचल कुछ बताने जा रही हूँ
0: दिमागी कसरत
1: भूल गई थोड़ा सा हमें दिमागी कसरत की जरूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीजें कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम टंग ट्विस्टर होते हैं, एकदम हमारे जीभ को घुमा देते हैं पूरी, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से पहेलियां होती हैं, पहेलियां बुझाते हैं। पहले हम लोग का बहुत ज्यादा ये मनपसंद खेल हुआ करता था कि हम कुछ ऐसी बातें कहें और बताएं बूझो तो जाने, अब ऐसी बात हमने कुछ लाइंस बोल दी अब बूझो तो जाने इसका क्या मतलब है, इसका क्या कौन सी चीज छिपी हुई शब्दों में, तो ये पहेलियां जो है ना इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना उसकी सारी बिल्कुल काम में लग जाता है, बिल्कुल कि ढूंढने क्या है क्या चीज।
0: और पहले बच्चों को ऐसे टास्क जब दिए जाते थे ना तो उनका दिमाग कहते हैं कि खुलता था इन चीजों से, तो आप करते हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं करते हैं, बच्चों के दिमागी कसरत के लिए पहेलियों के अलावा आपने क्या किया है हमारे साथ जरूर साझा करें।
1: बच्चों के ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जब चीजें हम करते रहते हैं ना, चाहे वो अखबार में निकलने वाले उनको पहेलियों को सुलझाना हो या किस तरीके की चीजों को करना हो, तो इससे हमारा दिमाग जो है ना एकदम काम में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। इससे ये होता है कि हम जैसे कभी कभी ऐसा होना था कि बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा सा याददाश्त में कमी होने लगती है तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं।
0: और बारिश का मौसम है ये हम सभी जानते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का, अपने पहनावे का, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब चीजों
1: का। वैसे भी कहा जाता है ना कि अब हम प्रकृति की बात करें तो कहा जाता है कि प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान भी रखना चाहिए, कौन से मौसम में, हर मौसम का खान पान अलग होता है, तो उसी हिसाब से हम अपना खान पान रखेंगे, संतुलित आहार रखेंगे, शुद्ध पानी पियेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखें।
0: और इसके अलावा भाई नींद बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इस समय हम श्रोताओं की नींद उड़ाने वाले ताकि अच्छा। वो प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार रहें।

0: हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी और अब वो हमें कमेंट भेजेंगे
1: पूरे ध्यान से प्रोग्राम को सुनेंगे
0: जी, और जो हमारे विषय है उन पर संदेश भी लिखकर भेजेंगे, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के जो बदलते स्वरूप हैं उन्हें लेकर, और बात जब मनोरंजन की होती है आरती, तो ये केवल समय बिताने का कोई साधन नहीं है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करके ताजगी भरने वाला भी होता है और रचनात्मक और जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। बदलते समय के साथ मनोरंजन के साधन भी बदले हैं और इस बात से हमारे श्रोता भी वाकिफ होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और अतीत की तुलना वर्तमान से करें तो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और पुराने समय का जो मनोरंजन था वो सामूहिकता, अपनापन और संस्कृति से अपनी जुड़ा हुआ था।
0: हाँ।
1: गांव की चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थी, लोकगीत और लोक नृत्य लोगों को एक सूत्र में बांध लेते थे, रामलीला, नौटंकी, कठपुतली का खेल, मेले, पारिवारिक खेल जो यानी सब परिवार पूरा मिलकर खेलते हैं हम लोग सब, और दादी नानी की कहानियां और रेडियो के कार्यक्रम जो थे वो उस समय के मनोरंजन के मुख्य माने जाते थे साधन।
0: और पहले के जमाने की अगर बात हो रही है तो जैसे आजकल बहुत सारे बोर्ड के गेम भी मिलते हैं
1: हाँ।
0: और या पासे होते हैं उसमें, तो वो

0: हम खुद ही किसी कोयले से या चौक से जमीन पर उसको काढ़ लिया करते थे और कुछ पत्थर वत्थर रख के बस पासे बनाकर उनसे खेला करते थे। तो इन चीजों में भी युग के साथ में बदलाव हुआ, फिर ये बोर्ड पर आने लगे बाजार में, और अब ये चीजें कई बार हमें डिजिटल यानी कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर टैब पर भी हम खेलते हैं।
1: अभी भी गाँव में देखिए तो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो गुटके खेलती हुई दिखाई देंगी, वो बहुत अच्छे लगता है वो, और जो जमीन पर बनाते हैं पहले उससे चौक से और एक दो तीन चार करके
0: और वो लंगड़ी से चलते हुए खेलते हैं, कहीं दो पैर टिकाने हैं कहीं एक पैर टिकाना होता है।
1: इस तरह के खेल तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन हाँ ये जो खेल थे ये पूरी तरह से हमें पूरे शरीर को भी एक्टिव रखते थे और दिमाग को भी एक्टिव रखते
0: और
1: थे।
0: बिल्कुल इन माध्यमों में सिर्फ आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि संस्कार है, लोक ज्ञान है, सामाजिक मेल मिलाप, ये सभी चीजें आरती में समाहित होता था और मनोरंजन लोगों का एक दूसरे को और पास ले आता था। वहीं वर्तमान समय में मनोरंजन ने तकनीक का हाथ थाम लिया, जैसा हम बात कर ही रहे हैं। डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, वीडियो गेम, पॉडकास्ट, ओटीटी, ये इतनी सारी चीजें हैं, इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया
1: बिल्कुल
0: है।
1: और आज का मनोरंजन हमारी उंगलियों की पहुंच में है, सबसे बड़ी बात।
0: हाँ
1: एक क्लिक पर दुनिया भर की फिल्में, संगीत, पुस्तकें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
0: हाँ
1: और इस बदलाव ने मनोरंजन को और अधिक सुलभ बना दिया है, विविध और व्यक्तिगत भी बना दिया है। अब हर आयु वर्ग अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को चुन सकता है। यही कारण है कि मनोरंजन आज केवल आनंद का माध्यम नहीं है बल्कि शिक्षा, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त साधन बन गया है।
0: हम बातें और करेंगे और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं इस बारे में वो भी पढ़ेंगे, पर गीत सुनते चलें।
1: बिल्कुल।

0: आरती, ये जो इस तरह के गीत हैं ना, ये भी दिल चुरा लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हम बात कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है मनोरंजन का, तो देखो ना, हमने गीत सुना ये कितने गुजरे जमाने का था, लेकिन ये
1: बिल्कुल,
0: आज भी मीठा लगता है। और संगीत का स्वरूप भी कितना बदला है।
1: बहुत ज्यादा बदल गया है। और बदलाव हर समझ लीजिए परिवर्तन जो होता है वो तो प्रकृति का नियम ही होता है, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो सबको पसंद आए,
0: जी,
1: है
0: और
1: ना।
0: परिवर्तन के साथ हम अगर जुड़ेंगे नहीं, खुद को अलग थलग
1: बिल्कुल
0: रखेंगे, तो वो खुद ही खामखा तकलीफ में रहेंगे। तो
1: बिल्कुल
0: बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है,
1: जी,
0: लेकिन बदलाव के साथ बिल्कुल इतने ना बह जाएं कि अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे हम भूल जाएं।

0: बस अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और
1: जी,
0: बदलाव को अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको
1: ना,
0: स्वीकार कीजिए।
1: और अपने बच्चों को भी जो अपनी संस्कृति है उससे अलग ना होने दीजिए।
0: बिल्कुल
1: अब वो नई चीजों को, जो भी आधुनिकता है उसे अपनाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उससे जुड़ाव बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: तो अब देखिए, हमारे श्रोता का कहना है कि विगत काल में मनोरंजन के साधन प्रकृति और सामुदायिक गतिविधियों में तक सीमित थे। मेले, सर्कस, कठपुतली शो, त्योहारों में पूरा समाज एक साथ जुड़ जाया करता था। रेडियो और दूरदर्शन के आने से मनोरंजन घर की चार दीवारी तक सीमित हुआ, लेकिन इसे भी पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। और तकनीकी क्रांति की बात कर रहे हैं, जहाँ इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है, वेब सीरीज आई हैं, आगे इन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल एजेंसी AI, एल्गोरिदम आधारित जो सिफारिशें हैं, इसने भी व्यक्तिगत बना दिया है मनोरंजन को, और बहुत विविधतापूर्ण मनोरंजन अभी है। और बहुत विस्तार से इन्होंने बातें लिखी हैं इस बारे में, तो आगे और भी संदेश पढ़ने हैं हमें।
0: बिल्कुल। और हमारे एक क्वेश्चन होता है, उनका संदेश है कि मनोरंजन के साधन तो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, पर कुछ तौर तरीके बदल गए हैं।
1: हाँ,
0: पहले रेडियो पर मनोरंजन हुआ करता था, पर आजकल तो मोबाइल फोन पर बहुत सारे बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं, पर मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है। पर मेरा मनोरंजन का स्वरूप पहले जैसा ही है, लगता है कुछ भी नहीं बदला है। मुझे वो पुराने रेडियो का दौर अच्छा लगता है, इस कारण जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मैं सिंपल पुराने रेडियो पर ही सुना करता हूँ, और मेरे लिए यही अच्छा है।
1: हमारे सुनने वाले श्रोता है ना, जो इतने पुराने गीत जो आज हम सुन रहे थे ना, ये अक्सर सुबह भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उन्हें सुनाई पड़ते होंगे। तो आज एक बदलाव ये भी है उनके लिए कि
0: हाँ
1: इतने पुराने गीत आज सखी सहेली में उन्हें सुनाई पड़ रहे
0: बिल्कुल।
1: हैं। और क्या संदेश है?
0: एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मनोरंजन अधिक जो विविध है, त्वरित और सस्ता हो गया है। घर बैठे ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ में मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि मनोरंजन जो है वो अब सामाजिक से अधिक व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि पहले सारे लोग मिलके हम साथ होते थे। अब अत्यधिक स्क्रीन टाइम से शारीरिक गतिविधियां भी कम हुई हैं और आंखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है।
1: हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, ये बहुत सही बात है कि बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, बड़ों की, और ना सिर्फ आंखों पर, आपकी और भी इंद्रियों को ये प्रभावित करते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: हमारे श्रोता खुद सजग हैं, इन बातों को जानते हैं, तो अपने घर में वो क्या इन चीजों को लेकर बदलाव करते हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए क्या उन्होंने एक समय निर्धारित किया है, या बच्चे उनके बहुत सा कितनी बार तो हम खुद ही आदत बिगाड़ते हैं बच्चों की, कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो TV लगा दिया, या तो फिर हमने उसके हाथ
0: फोन
1: में
0: पकड़ा
1: मोबाइल
0: दिया।
1: दे दिया कि उसका ध्यान थोड़ा सा वहां से, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है वो TV और मोबाइल की तरफ, और हम उसके ध्यान को थोड़ा सा भटका कर उसके मुंह में निवाले देते रहते हैं, और फिर वो चीजें आदत में बदल जाती हैं।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है,
0: लेकिन
1: मनोरंजन देना है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन स्वस्थ मनोरंजन
0: बिल्कुल
1: हमें अपने आगामी पीढ़ी को देना है।
0: और बच्चों को हमें समझाना भी है कि जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो, और खाने पर पूरा ध्यान रखते हैं,
1: जी
0: तो पुराने समय में क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जब हम हाथों से अपने खाना खाते हैं ना, तो एक जुड़ाव होता है खाने के
1: जी
0: साथ, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, उसके उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो वो खाना में और फायदा पहुंचाता है। इसलिए
1: हाँ
0: जरूरी होता है कि जब कुछ ना चल रहा हो, उस समय TV मत चलाइए, उसमें कुछ नहीं करिए, कहते हैं बात भी बोलना भी नहीं चाहिए, तो खाते समय थोड़ा अगर इस तरीके से हम करें तो देखिए कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
1: बहुत सही बात कही आरती आपने, कि हम एक एक स्वाद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान किसी और भी है, किसी तीसरी तरफ भी है, कि एक तरफ हमारी नजरें हैं इस तरफ कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एक तरफ हम TV भी देख रहे हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर भी है, तो खाने का लुत्फ हम ले ही नहीं पाएंगे,
0: बिल्कुल
1: और जितना असर हमें हर चीज को लेकर वो भोजन देगा शायद नहीं दे पाए।
0: बिल्कुल। तो और हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं कि प्राचीन काल के सामूहिक उत्सवों से लेकर आज के व्यक्तिगत डिजिटल स्क्रीन तक मनोरंजन का स्वरूप काफी बदल गया है। हालांकि इसका मूल उद्देश्य दिन भर की थकान मिटाना और मानसिक शांति पाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस चीजें चेंज हो गई थोड़ी सी।
1: बिल्कुल, तो हम फिर से एक पुराने गाने की तरफ बढ़ते हैं
0: बिल्कुल बदलाव
1: और बदलाव हम लेकर आ रहे हैं, तो एक गीत सुनते हैं।

0: बड़ा खूबसूरत गीत था और दो बहनों की आवाजें थी, तो दिमागी कसरत की बात है भाई, हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमारे श्रोता पता है कौन सी दो बहनें हैं इस गाने में, थोड़ी सी दिमागी कसरत उनकी भी हो जाए।
1: बिल्कुल
0: और ये भी एक खेल ही हो गया ना, मनोरंजन का बदलता स्वरूप है ये।
1: बिल्कुल, मनोरंजन के स्वरूप ही की बातें कर रहे थे, जैसे कि हम पहले हम परिवार के साथ में हम अपनी हंसी को बांटते थे, खुशी को बांटते थे, अब आज कई क्या ऐसा
0: अब
1: हो
0: हम
1: गया
0: सोशल
1: है।
0: मीडिया पर बांटते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: आज कई बार हंसी जो होती है वो हमारे जो इमोजी होते हैं ना वो
0: हाँ
1: बनकर मोबाइल स्क्रीन पर रह जाती है। पहले संवाद आमने सामने होते थे, अब आज वो डिजिटल माध्यमों से होते हैं। कभी पूरा परिवार साथ बैठकर रेडियो सुनता था या दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता था, जबकि आज अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में, फोन में बिजी दिखाई देता है।
0: और देखिए ना हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, मनोरंजन के स्वरूप भले बदले हों, रेडियो ने हमें आज भी जकड़ रखा है। यानी कि रेडियो जो है ना वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का मनोरंजन का बहुत पसंदीदा माध्यम है। आगे लिखते हैं कि रेडियो से पहले हमारे घर में ग्रामोफोन प्लेयर हुआ करता था,
1: अरे वाह।
0: जिस पर पुराने दौर की उन फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड बजाकर हम लुत्फ उठाया करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ साल 1960 में रेडियो का आगमन हुआ, उस समय से लेकर आज तक ये हमारे मनोरंजन का साथी बना हुआ है। इसके अलावा सिनेमा घर और दूरदर्शन का जमाना आया, जिसमें हर रविवार के दिन आ रही रामायण जैसे सीरियल और शाम को आने वाली फिल्में हमें काफी प्रभावित किया करती थी। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मनोरंजन को व्यक्तिगत और ऑन डिमांड बना दिया है। और आगे लिख रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: देखिए, परिवर्तन तो होता ही है,
0: जी
1: अब हम उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। और हमारे एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बचपन में सबसे मजेदार एक और मनोरंजन का साधन था कथा कहानी सुनाने का। अरे वाह, सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे, और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना जरूरी होता था। और कथा एक दिन में खत्म नहीं होती थी, दो दो दिन तक चलती थी। सुनने वाले की बातें इतनी लच्छेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे।
0: और इसी तरह से हम बात करें कि बदलते स्वरूप की, तो पहले चिट्ठियां हमारे श्रोता लिखा करते थे, अब हमारे श्रोता हमें कमेंट लिखकर भेजते हैं। कुछ श्रोता सिर्फ अपने विचार, इस जिस जो भी बात हो रही है उस बारे में अपने विचार लिखते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल तैयार माध्यम मिल जाता है, वो गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं उस बारे में और बिल्कुल उसको वहां से कॉपी करके एज इट इज वैसा कि वैसा उसे पेस्ट कर देते हैं। उसमें आप अपने विचार भी जोड़िए और
1: बिल्कुल,
0: आपकी क्या बात है
1: उससे
0: वो
1: हमें,
0: राय भी हमने
1: बिल्कुल
0: लिखकर
1: उससे हमें
0: पहुंचाए।
1: आपके विचार
0: जी
1: जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: तो ये
1: आपके
0: तो हमें भी पता
1: अनुभव,
0: है, बिल्कुल
1: आपके अनुभव
0: गूगल
1: मिल
0: पर
1: सकते
0: सब
1: हैं।
0: तरह की जानकारी है, लेकिन आपको अपने विचार लिखकर भेजने, इसलिए हमें

0: सही, हमेशा कहते हैं ना श्रोताओं से कि आप अपने विचार इस बारे में लिखकर भेजिए कि आपने क्या बदलते देखा है इस दौर में।
1: जो आपके अनुभव है ना, वो जब हम साझा करेंगे ना, तो और लोगों तक भी वो जो अनुभव है वो पहुंचेंगे।
0: जी
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि एक समय था जब लोग मेले, कठपुतली के शो, नाटकों और रेडियो पर निर्भर थे। इसके बाद सिनेमा घरों और टीवी का दौर आया, लेकिन अब जो है वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मनोरंजन के, जिन पे पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हम शाम को जब हमारा कोई सीरियल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि ऐसी ऐसी अब सीरीज हो गई है कि उनके एपिसोड ही चलते रहते हैं। तो ये बदलाव बता रहे हैं इस तरीके का हुआ है जो।
0: बिल्कुल, और मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रसन्न करना होता है, तनाव को कम करना होता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना होता है। आरती, अगर मनोरंजन हमें संवेदनशील, रचनात्मक और सकारात्मक बना रहा है, तभी उसकी वास्तविकता हम कह सकते हैं कि वो सिद्ध होती है। इसीलिए हमें ऐसे मनोरंजन को अपनाना चाहिए जो ज्ञान भी दे, हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करता रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि हम मनोरंजन के साधन को उस हिसाब से लें कि भाई हमें जो ज्ञान भी थोड़ा सा हमारा बढ़ाए।
0: बिल्कुल, समय तो बदलता रहेगा, मनोरंजन के स्वरूप भी बदलते रहेंगे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जीवन को आनंदमय और संतुलित, सार्थक बनाते रहना। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करके ही हम मनोरंजन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मनोरंजन के साधन को आप बदलते स्वरूप को अपने तरीके से चीजों को आप लीजिए। थोड़ा सा परिवर्तन भी जरूरी होता है, लेकिन आप ज्ञानवर्धक चीजों को देखिए, ऐसी चीजों को देखिए जिससे कि आपका पूरा विकास हो, आपके दिमाग का अच्छा, आपको खुद तनाव से मुक्ति मिले और आपको अच्छा महसूस हो, और साथ ही थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी रहे। इस तरीके के मनोरंजन के साधन भी करिए, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे खेल हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा
1: आप, कथा कहानी वाली बात बहुत अच्छी बताइए आप, वो भी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, बैठ के घर में आपस में बात कर सकते हैं, अंताक्षरी जैसे खेल होते थे वो खेल सकते हैं,
0: जिनमें तो कोई अलग से कोई खिलौना नहीं लाना है, बिना खिलौने वाले खेल भी हुआ करते थे। लेकिन
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 2:03:30 हो रहे हैं, और आइए अब सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ।
2: जी।

0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
1: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा।
1: जी, वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है।
1: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था, तो विमलेश जी अब आपकी बारी।
1: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था।
0: जी श्रोताओ, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोज पत्रों पर लिखे मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओ, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
1: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था, लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार।
0: जी।
1: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है।
1: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था,
1: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी।
0: जी।
1: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी। यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे।
1: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
1: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था, जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
0: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
0: जलवायु परिवर्तन।
2: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
4: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
2: जी।
4: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
2: जी, लेकिन वो कैसे?
4: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है।

0: जल और वायु
1: जी,
0: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है
1: जी।
0: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड
1: जी।
0: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
1: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी
2: जी।
1: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है
2: जी। डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है
1: जी।
2: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
2: जी।
1: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
2: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
1: जी
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है
2: जी।
0: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे
1: जी। जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
2: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे।
1: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
2: अच्छा
1: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
2: डॉक्टर नमिता
0: जी,
2: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
0: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
1: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं जी। तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
0: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है
1: जी।
0: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
2: अच्छा,
0: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
2: बहुत सुंदर उदाहरण है। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
1: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे।
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
2: बिल्कुल,
0: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा
1: जी।
0: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
2: बिल्कुल,
0: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
1: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा
2: जी।
1: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए लेकिन बहुत कम
2: जी।
1: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को

0: जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
1: बिल्कुल।
0: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी,
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी,
1: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: आप जैसे किताबें निकालो, चलो चलो अपने अपने पार्ट निकालो
2: जी,
1: मैं भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो, मेरी तरफ देखिए, शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना,
2: जी जी,
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: गुरुजी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी।

0: गोपाल
1: जी
0: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
1: जी गुरुजी। पानी
2: पानी
1: कुओं
2: कुओं
1: नदियों
2: नदियों
1: तालाबों
2: तालाबों
1: एवं झरनों से मिलता है
2: एवं झरनों से मिलता है।
3: गुरुजी झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
0: फिर बीच में बोले आगे पढ़ो। चलो चलो शाबाश।
1: गंदे पानी के प्रयोग से
2: गंदे पानी के प्रयोग से
1: अनेक बीमारियां हो जाती हैं
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
3: गुरुजी
0: हाँ बोलो।
3: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
0: बीच बीच में ना बोलो। तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
1: जी,
0: चलो
1: जी,
0: ठीक से बैठो। पीछे पीछे बोलो।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों नमस्ते। अच्छा बच्चों हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं। ठीक
1: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
5: अच्छा
1: मास्टर जी हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश बिल्कुल ठीक।
3: मास्टर जी वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ हाँ ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। ये बच्चों तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने झील तालाब बावड़ी आदि।
1: मास्टर जी
5: हाँ हाँ बोलो।
1: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं। ठीक
1: जी मास्टर।
5: लिखो फिर सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य खोज जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
8: दीदी
9: बोलो मालती।
8: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
9: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
8: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
9: ठीक।
8: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
9: हाँ फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
8: जी।
9: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
8: वाह एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
9: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थीं। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
10: नमस्ते
11: नमस्ते
12: नमस्ते बच्चों नमस्ते।
9: दीदी ये
12: अरे वाह कितने सुंदर फूल हैं ये।

0: प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
1: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
0: अच्छा?
2: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
0: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
3: गुलाब।
0: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
1: दीदी मैं बताऊंगी।
0: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
3: गुलाब।
0: गेंदा।
3: और चमेली।
0: चमेली।
3: सूरजमुखी।
0: सूरजमुखी, शाबाश।

0: अच्छा प्रवीण, और कौन-कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहां?
1: दीदी जी मैं बताऊंगी।
0: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हां प्रवीण बताओ।
2: गुलाब,
0: गेंदा,
2: चमेली और
0: चमेली, चमेली,
2: सूरजमुखी।
0: सूरजमुखी, शाबाश।
3: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हां इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
0: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूं।
3: जी।
0: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं। और मैं पूरा प्रयास करती हूं कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन-कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
3: जी जी।
0: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
3: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
0: जी, कभी-कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूं। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
3: बहुत अच्छे।
0: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
3: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
3: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
3: हल्के नीले रंग के?
0: हां, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
3: अच्छा।
0: मैं जिस इलाके की हूं ना, वहां ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
3: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हां, कभी-कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
3: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल-खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल-खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
3: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का यह सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग-अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक-ठीक बता पाना चुनौती भरा है। तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं यह जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र और स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं शाम के ठीक 4। और श्रोताओं अब समय हो गया है प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

0: श्रोताओं नमस्कार, ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और श्रोताओं लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और श्रोताओं आप तो जानते ही हैं कि कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हम हर दिन एक नया विषय लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही प्रासंगिक और रोचक विषय है। विषय बातें तो बहुत लोग बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कई बार काम करने से हिचकते हैं, तो विषय भी ऐसा ही है कि बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा या फिर छोटे छोटे काम। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बातें तो नहीं करते लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि लोग उन्हें वर्षों और फिर युगों तक याद रखते हैं। और कई हम लोग अपने ही समाज के बीच में ऐसे लोग भी देखते होंगे कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो कुल मिलाकर के हम सब अपने जीवन से जुड़ी बातें इसमें कार्यक्रम में साझा करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम जानेंगे अपने श्रोताओं से कि वो क्या करते हैं, कैसे उनका जीवन है, कैसे रहन सहन है, और अगर वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं तो क्या कुछ काम भी करते हैं, और अगर कुछ काम करते हैं तो वो कौन से काम हैं जो करते हैं वो, और क्या ऐसे भी लोग हमारे श्रोता हैं जो बातें नहीं करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो इन सारी ही बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने श्रोताओं से। और आइए देखते हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे कौन से श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: जी मैं जिला बरेली थाना मेहरगंज पोस्ट रोड ग्राम रसूलपुर इमामबाड़ी के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहा हूँ। सर
0: अल्ताफ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
0: अल्ताफ जी आज का हमारा विषय है कि बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा है या छोटे छोटे काम।
1: पहले तो सर मैं पूरी आकाशवाणी परिवार की टीम को धन्यवाद दिल से देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो आज विषय जो रखा और उस विषय के बारे में जो आपने 2 बजे कार्यक्रम रसरंग में बताया था मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं हर रोज ये कार्यक्रम सुनता हूँ और आज मेरे मन की जो भावनाएं थी वो आज उजागर हो गई
0: जी।
1: और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है इस बात के लिए भी कि जो अन्य और श्रोता हैं जो छोटे छोटे फोन वगैरह चलाते हैं
0: जी,
1: तो उनको भी इस विषय के बारे में पता चल जाएगा तो वो भी अब मायूस नहीं रहेंगे, वो भी अपने दिल की बात आकाशवाणी के साथ अपनी शेयर कर सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आज का विषय बहुत ही अच्छा रखा है कि बड़ी बड़ी बातें या हम अपना छोटा काम करने से
0: जी
1: कैसे मतलब प्रतिक्रिया अपनी संभालते हैं।

0: वो मैं यही कहना चाहूंगा
1: जी
0: कि अगर हम बड़ी बातें ना करें
1: जी
0: और छोटे छोटे कामों पर अपने ध्यान दें
1: जी,
0: और वो हम छोटा सा छोटा काम करते करते करते करते एकदम बड़ा काम को हम जब पकड़ लेते हैं
1: जी,
0: तो ये बड़ी बातें तो खुद ब खुद आगे आ ही जाती हैं और बड़ी बातें करने के लिए लोग जरूर उजागर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए आज ये इंसान ने एक छोटा सा काम करके बड़ा काम अपने उसमें कब्जे में कर लिया और उससे हौसला ही अफजाई कर ली
1: जी।
0: तो ये लोग खुद ही बड़े बातें मतलब होने लगती हैं, तो हमें बड़ी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने कार्य पे ज्यादातर ध्यान देना चाहिए।
1: अच्छी बात कही आपने अल्ताफ जी की, जब आप छोटे छोटे काम करते हो तो बड़ी बात अपने आप बन जाती है। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अल्ताफ जी आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे
0: जी? आज बंजारे मूवी फिल्म का गाना है, देश बदलते हैं भेद बदलते हैं, दिल में बसने वाले लोग दिल बदलते नहीं।
1: हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: सर मैं आपकी इजाजत से कुछ नाम ले सकता हूँ
1: जी? जल्दी जल्दी जैसे ले लीजिए।
0: ठीक है, ये बरेली करेली से लाल मोहम्मद अंसारी हैं और बरेली ही करेली से ये मेरे वंदन अली भाई हैं और ये एक मेरे मतलब जो है जो इंतजार भाई हैं, बहुत दिनों से इंतजार मैं कर रहा हूँ कि वो भी आकाशवाणी परिवार से जुड़े और हम लोगों के साथ फिर भी शेयर करें
1: जी। बिल्कुल, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हमारे साथ,
1: हेलो
0: हमारे
1: नमस्ते
0: कौन
1: सर।
0: से श्रोता जुड़ रहे हैं और कहां से आपने हमें फोन किया है?
1: मैं कुंडलवाड़ी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर, गंगाधर सावनकर।
0: गंगाधर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।
0: गंगाधर जी, आप नांदेड़ से जुड़ रहे हैं, तो किस प्रकार का मौसम है उधर आज?
1: मौसम तो सर बारिश 4-5 दिन गिरा, उसके बाद चलेगा है तो सर अभी तक बारिश नहीं है।
0: अच्छा,
1: फिर धूप भी निकला है।
0: अच्छा,
1: किसान परेशान है
0: बारिश के लिए।
1: बारिश के लिए क्योंकि खेतों में सर बीन जाने सर बो गए दोनों, और कुछ निकला कुछ जल गया।
0: तो
1: ये
0: इस समय आप लोग कौन सी फसल होती है आप लोगों के यहाँ इस समय?
1: सोयाबीन।
0: सोयाबीन, अच्छा
1: सोयाबीन सर।
0: ओके
1: जी सर।
0: तो गंगाधर जी, आज का हमारा विषय है बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा या फिर छोटे छोटे काम।
1: देखो सर, बड़ी बड़ी करना ही नहीं है तुम्हें, छोटी छोटी बातें करना। शॉर्टकट। आजकल जमाना चल रहा है सर शॉर्टकट। थोड़े से बात में निपटा लेना सर। अगर लंबी बातचीत अगर रहेगी तो अपनी अपना वक्त खराब, टाइम खराब, सभी कुछ ऐसा समझता हूँ मैं सर। जो भी कुछ कहना है थोड़े में बोल लेके काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा, और दरअसल ये इस कॉन्टेक्स्ट में थी ये बात, ये विषय कि बहुत सारे लोग हम लोगों ने देखा है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम कुछ नहीं करते, और कुछ
1: सर।
0: वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते कम हैं और चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, और एक दिन
1: हमारे पास गांव में बोलते सर पुरानी कहावत है, घर में नहीं दाना अम्मा पूरी पकाई, ऐसा बोलते। ऐसे लोग बड़े बड़े बात करते थे।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सर।
0: तो गंगाधर जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं या छोटे छोटे काम करने में विश्वास रखते हैं?
1: मैं छोटे छोटे काम में विश्वास करता हूँ सर, बड़े वाले बात करने पर जाता नहीं।
0: ओके।
1: अक्सर वो झूठ बोलते हैं सर, बड़े बड़े बातें हमारे पास है बहुत से बोलने वाले सर।
0: तो गंगाधर जी, आज आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, एक शोर फिल्म का गाना है सर ये।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से आपने हमें फोन किया है?
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सर मैं मंसूरी क्लब ग्राम अचोरा तहसील नीलक जिला रामपुर से सखावत हुसैन बात कर रहा हूँ सर।
0: सखावत जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सखावत जी, आज का हमारा कार्यक्रम में विषय है बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा या फिर छोटे छोटे काम।
1: सर बड़ी बड़ी बात से अच्छा करना नहीं है सर, छोटे छोटे काम करना अच्छी बात है सर।
0: तो कुछ
1: जी
0: बताइए सखावत जी कि आप इस चीज़ को अपने जीवन में कैसे देखते हैं, कि आप अपने आसपास कैसे देखते हैं, कि बहुत कुछ लोग होंगे जो केवल बातें ही करते हैं, कुछ लोग चुपचाप काम
1: जी
0: करते
1: हाँ
0: हैं। जी
1: जी हाँ बहुत लोग कुछ ऐसे हैं सर
0: जी
1: जो मतलब सिर्फ बातें करनी है उन्हें, जो मतलब यहाँ खड़े होकर बात कर दी वहाँ, और बाकी सर ज्यादातर छोटे छोटे जो काम किए जाएं जैसे अपने आसपास देख के साफ सुथराई या मतलब पेड़ लगाना या कुछ, या फिर किसी को ऐसे देखना सर, ये छोटे छोटे अगर काम करो तो सर वो बहुत अच्छा है, इससे जो बातें अच्छी रहती है सर।
0: तो कुल मिलाकर के बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें से अच्छा है कि हम चुपचाप अपने छोटे छोटे काम पर फोकस करें। भाई,
1: जी जी जी
0: इन दिनों हम देख रहे हैं कि थोड़ा बारिश कम हो रही है, लेकिन जब बारिश हो तो उसके पानी को सहेज के रख लें, इस मानसून में एक
1: जी
0: पौधा लगा दें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, अपने आसपास साफ
1: जी
0: सफाई बनाए रखें, बच्चों से अदब से बात करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। कितने ही ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनके परिणाम हमको बहुत बाद में दिखते हैं, लेकिन वो
1: जी
0: अगर
1: हाँ
0: हम डेली करते रहेंगे तो परिणाम लेकिन जरूर दिखेंगे, ये बात तो तय है।
1: जी हाँ वही तो सर, अगर छोटे छोटे काम जैसे करते रहें यही सब, तो इसका फल मिलता है सर आगे जाके। जी
0: बिल्कुल। तो सखावत जी, आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर आज फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल, गाने के बोल है दिल दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है बहुत प्यार किया है।
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद।

0: हेलो, हमारे साथ हमारे कौन से श्रोता जुड़ रहे हैं और कहां से?
1: जी मुन्ना सैफी बोल रहा हूँ।
0: मुन्ना सैफी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी बात आकाश।

0: वाणी के साथ में। तो क्या करते हैं मुन्ना जी?
1: जी मैं टेलरिंग का काम करता हूँ सर।
0: और कहाँ से आपने हमें फोन किया है?
1: जी ये बरेली में है, शिकारपुर चौधरी, फरीदापुर के पास।
0: जी जी है, शिकारपुर चौधरी है, बिल्कुल। तो मुन्ना जी, चूंकि आप टेलरिंग का काम करते हैं, और काम तो सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ केवल बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। फिलहाल आज का हमारा विषय है, बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा या फिर छोटे छोटे काम?
1: ये काम से पिचारा जाता है कोई आजकल, बड़ी बातें तो सही नहीं।
0: क्या लगता है आपको,
1: काम से?
0: आप चूंकि टेलरिंग का शॉप है आपका, लोग आपके पास आते होंगे, आप देखते होंगे, या आपके जीवन, परिवार, घर, रिश्तेदार, कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे, या खुद स्वयं आप भी अपने बारे में बता सकते हैं कि हाँ एक बार की बात है, या कि हम लोग ऐसे हुआ वैसा हुआ, मतलब कुछ भी आपके जीवन से जुड़ी बातें जो आपको लगता है सिर्फ बातें ही थी, असल में काम तो कुछ और था।
1: हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ।
0: जी
1: क्योंकि जब जीवन में समय मिलता है आदमी संभल नहीं पाता।
0: जी
1: उसको संभलना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: कोई भी है,
0: बिल्कुल सही बात है। तो
1: क्योंकि वक्त एक बार जाके फिर आता नहीं दोबारा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो वो वक्त को हमें जो है बातें करने में जाया ना करके काम
1: जाया नहीं करना चाहिए। सही बात,
0: काम करने में ही उसका सदुपयोग करना चाहिए, है ना?
1: ये मैं बहुत बहुत खुशी की बात है, आज पहली दफा कॉल लगा है।
0: आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मेरे को सुनना है अकेले हम अकेले, तुमका, तू मेरा दिल तू मेरी जान। मैं अपने लड़के को डेडिकेट करना चाहता हूँ, ये मेरा 5 साल का बेटा है।
0: अच्छा अच्छा बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आइए देखते हैं कौन से श्रोता है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। नमस्कार।
1: सर जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जगदीश जी, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप
1: बहुत मजे में है सर, बहुत आनंद में है
0: जगदीश जी? कैसा मौसम है आपके यहाँ?
1: सर जी, हमारे मौसम तो बहुत अभी गर्म चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है
0: अच्छा।
1: और सावन भी महीना भी शुरू हो गया है और बादल अभी तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
0: ये तो चिंता की बात है।
1: आगे आएंगे, सावन का महीना भी आज ही शुरू हुआ है तो अभी सावन सारा पड़ा है तो बरसेंगे, आएंगे बादल, ऐसी बात नहीं।
0: तो जगदीश जी, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में, वो विषय है बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा या फिर छोटे छोटे काम।
1: सर जी, बातें इंसान को उतनी ही करनी चाहिए जितनी वो जिन पर वो पूरा उतर सके,
0: क्या बात है।
1: और बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब हम बातें तो छोटी छोटी पर भी पूरा नहीं उतर पाते तो फिर बाद में पछताना पड़ता है, तो बेशर्मी भी मिलती है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं तो पूरी उतरते नहीं छोटी छोटी बातों पे भी। और मैं तो ये कहूंगा कि बातें छोटी छोटी हो, काम छोटे छोटे हो, भले ही छोटे हो पर वो पूरी तरह परिपक्व होने चाहिए। जितनी भी बात करो उस पर पूरा उतरो, बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातें करके भी, और छोटी छोटी बातों में भी खुशियां बहुत छुपी पड़ी हैं। छोटे छोटे कामों में छोटी छोटी खुशियां अगर मिलती है तो इसमें भी बड़ा आनंद है।
0: बिल्कुल सही बात कहा आपने जगदीश जी, बहुत सुंदर बात कही आपने कि बात उतनी ही करो जितने पे अमल उतर हो पाए जिन पे, और जब नहीं हो पाता है तो सिर्फ वो खोखली बातें ही रह जाती हैं और बाद में शर्मिंदगी होती है। अच्छी बात कही,
1: शर्मिंदगी होती है,
0: बहुत
1: बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जितनी बात आप कर सकते हो उससे भी थोड़ी सी कम करो, क्योंकि
0: हाँ।
1: जब बात आप बात पे खड़े उतरोगे तो दूसरे को भी लगेगा कि हाँ यार ये इंसान सचमुच में इंसान है, जितनी बात कहता है उस पे खरा उतरता है।
0: और फिर एक बात और भी बहुत अच्छी है ना जगदीश जी, कि हम खुद से बातें करने से बेहतर है कि हमारा काम बोले, नहीं?
1: बिल्कुल सही बात कही सर आपने, और हम बेशक बातें कम भी करें पर हम कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग खुद कहें कि फला आदमी ने यार कमाल कर दिया है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो जगदीश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गीत सर फिल्म है आया सावन झूम के, और इसमें रफी साहब जी की आवाज में गीत है, मेरी इच्छा है कि मैं उसको थोड़ा सा गुनगुना के बता दूं।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल गुनगुनाइए।

मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो बुरी है बुराई मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो बुरा मत

0: ट्यून किया है आपने 100.4 FM, सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और देश भर से हमारे पास फोन आ रहे हैं अपनी बातें अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए। इसी क्रम में आइए देखते हैं हमारे साथ कौन से श्रोता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेलो
1: जी भैया, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: ओहो, कैसे हैं योगेश जी?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: और मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
1: मौसम तो खुश मिजाज लग रहा है भैया। अभी खेत में काम चल रहे हैं तो खेत से ही आपसे बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, तो बारिश हो रही है आपके यहाँ?
1: नहीं, बारिश तो बहुत कम हुआ है भैया, बीच में थोड़ा सा 2-3 दिन हुआ है, तो उसी के सहारे खेतों में धान की बुआई ओनारी वगैरह कर दिए जी, और फिर राह देख रहे हैं
0: अब। अच्छा, राह देख रहे हैं बादलों की। दरअसल भारत के विभिन्न कोनों से हमारे पास भी फोन आ रहे हैं और सब लोग लगभग लगभग यही बात कर रहे हैं कि बादलों की बाट जो हो रहे हैं सब लोग, और हम लोग भी यहाँ जो हो रहे हैं, बरेली में भी जो हो रहे हैं। तो योगेश जी क्या करते हैं?
1: मूल रूप से तो हमारा खेती बाड़ी का काम है भैया।
0: क्या लगा रखा है इस समय खेत में?
1: धान लगाए।

0: दिया और कुछ बचा भी है और कुछ हो भी गया है।
1: तो धान कौन से किस्म की लगाते हैं आप?
0: किस्में हमारे यहाँ जो महमाया और सरना ये दो किस्में ज्यादा चलती हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो अच्छी बात है। और आज हम बात जिस विषय पे करेंगे योगेश जी, वो विषय है बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा या फिर छोटे छोटे काम।
0: छोटे छोटे काम ज्यादा अच्छे हैं भैया। देखिए, बातों में तो हम लंदन जा सकते हैं, लेकिन काम जैसे हम ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं तो जैसे सब चीजों को हम सरकार पे या शासन पे डाल देते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है भैया, हम बचपन से सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहन रूप से जुड़े हुए हैं, तो जो साफ सफाई का काम है, वृक्षारोपण का काम है, ये हम बखूबी करके आ रहे हैं बचपन से। और आज वो जो देखते हैं भैया, पहले जो पेड़ लगाए थे आज से लगभग 20 साल पहले, वो पेड़ आज देखते हैं तो बहुत बड़ा मतलब पेड़ बन गया है। हाँ।
1: अच्छा, वेरी गुड। देखिए, यही कामों की हम बात कर रहे थे कि मतलब छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो निश्चित रूप से रंग लेकर आते हैं। जैसे कि मतलब हम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमने देखा होगा अपने जीवन में कि सिर्फ बातें करते हैं कि बताओ वो पेड़ कट गया, ये हो गया, बारिश नहीं हो रही है, ऊपर गर्मी हो रही है, और मतलब दोष, मतलब उनका काम है केवल बातें करना। और कितनी सुंदरता से आपने ये बात की कि अपने जीवन में आप लोगों ने शुरू से ही छोटी छोटी चीज़ें करते आए हो। जैसे कि अब देखिए, पूरे भारत क्या पूरे विश्व में ही हम देख रहे हैं मौसम एक करवट ले रहा है, गर्म है ना, परिवेश एकदम गर्म है, और ये सबके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही लोग हैं भाई। अत्यधिक पेड़ों का कटना प्लस मतलब अपना जीवन का बदलना, जीवन शैली का बदलना, तो ये सारी चीज़ें इसके कारक हैं। लोग वृक्षारोपण करते नहीं हैं। अब मान के चलिए बारिश हो रही है, वो बारिश का पानी बरसता है, फिर नालियों में चला जाएगा, नालियों से नदियों में, नदियों से समुद्र में, और ख़राब हो जाएगा। जबकि चाहे तो एक आम इंसान कुछ नया कर, कुछ भी नहीं करेगा, तो कम से कम अपने छत पे, जो उसकी छत पे पानी बरस रहा है, उसको तो वो ग्राउंड में डाल सकता है, यानी कि जमीन के अंदर डाल सकता है। एक पौधा तो लगा सकता है मानसून में, अपने आसपास साफ सफाई तो रख सकता है। ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रेन के कोच गंदे हो जाते हैं। कैसे गंदे हो जाते हैं? कोई ऊपर से तो आके गंदा करता नहीं है, हम ही लोग
0: सब जिम्मेदार
1: है ना। तो जो चीज हमको जैसी मिली है, अगर हम बस इतना तय कर लें कि हम चलते चलते उतरते उतरते उसको वैसे ही रहने दें, तो ये भी कोई बड़ा काम से कम नहीं है।
0: मैं अभी एकदम आपको एकदम ताजा उदाहरण बता रहा हूँ भैया, आधे घंटे पहले का ही बात है
1: जी।
0: हमारे यहाँ गांव से बांध जाने का एक मार्ग है, वो बीच में 4-5 दिन लगातार बारिश हुआ तो मार्ग बीच से कट गया।
1: जी जी।
0: तो लोग अब केवल बातों में करते थे कि ये करवाएगा वो करवाएगा। मैं अभी जेसीबी लाके उस मार्ग को, मिट्टी 2 हाईवा के आसपास उसमें डलवा के मार्ग को फिर से सुचारू रूप से संचालित कराए हूँ भैया।
1: देखिए, इच्छा शक्ति है ना भाई, बातें करना, इसके सर उसके सर थोपना से बेहतर है छोटे छोटे प्रयास कर लेना, है ना। तो योगेश जी, आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। चाहेंगे योगेश जी, आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुन?
0: गीत आप हमें सुनवा देंगे भैया, फिल्म है धर्मात्मा और गीत के बोल है तेरे चेहरे में वो जादू है।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: श्रोताओं आइए देखते हैं हमारे साथ कौन से श्रोता हैं फोन लाइन पर। हेलो
1: हेलो
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: जी, हम बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, ग्राम कटवा कला से। बढ़िया
0: जी बंटू जी, कैसे हैं?
1: सर, आप कैसे हो?
0: सब अच्छे हैं। और बंटू जी, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो विषय है बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा या फिर छोटे छोटे काम।
1: जी, इसके बारे में हम यही कहना रखते आएंगे, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना भी ठीक है, छोटे छोटे काम भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे काम करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे।
0: तो क्या ये बता पाएंगे आप हमें कि बड़ी बड़ी बातें करना कैसे ठीक?
1: बड़ी बड़ी बातें मतलब जब कहते हैं तब मतलब ध्यान उन्हीं पर रहता है, और फिर जब उन पर अमल भी करते हैं तो हम कुछ कामयाब भी बन सकते हैं, इसलिए ठीक।
0: ठीक है, अच्छी बात कही आपने कि भाई बड़ी बातें करके उन पे अमल भी कीजिए, है ना? तो कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: गाना सुना दीजिए, ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ, कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: माफ करना, कुछ कहने आया हूँ,

0: आप सुन रहे प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आइए देखते हैं अब हमारे साथ अगले श्रोता कौन है फोन लाइन पर। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: सुल्तान रजा बात कर रहा हूँ, आपका नियमित दोस्त पाना सब्जी मंडी बरेली से।
0: सुल्तान जी कैसे हैं?
1: सब ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं सर?
0: सब बहुत अच्छे हैं, सब खैरियत से हैं। तो सुल्तान जी, जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं वो विषय है बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा या छोटे छोटे काम।
1: सर तो कहने का मतलब तो यही है कि छोटे छोटे काम कर लिया तो अच्छा है, बड़ी बड़ी बातों से।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि होता नहीं रोड पे ऐसे कि हम सोचते कि रोड की पूरी सफाई कर दे, वो ना करके अगर हम दरवाजे सामने सफाई कर देंगे ना,
0: हाँ
1: वो दूसरा कर देगा, तो ये छोटा काम हुआ लेकिन काम सफाई तो पूरी होगी ना रोड।
0: बिल्कुल सही,
1: हम सोच के कह के काम ना कर।
0: सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने कि बड़ी बड़ी केवल जो है डींगे हाँकने से बेहतर है कि, और एक बात ये भी है कि सुल्तान जी एक अपना दरवाजा तो साफ कर ही दिया, बल्कि ये काम तो छोटा है, एक छोटा सा ही प्रयास हो रहा है कि हम दूसरे का दरवाजा या दूसरी जगह भी अगर गंदगी ना फैलाएं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है। नहीं
1: जी जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम 200 पेड़ लगाएंगे, 400 पेड़ लगाएंगे,
0: हाँ।
1: वो ना लगा जाएगा और उसके हम देखभाल सही से कर,
0: क्या बात है,
1: तो वो ज्यादा बेहतर है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात
1: है। क्या होता है कि हम 10-12 पेड़ देखभाल कर लेंगे, बड़े हो गए तो वो परमेश्वर को आ गए, सही है। अब 2 लगा दिए उसके बाद देखने गए नहीं उसको, तो खराब होगा तो देखा रहे, बड़े बात ना कहे, छोटा काम करके, छोटे काम में हमें फायदा भी हुआ, हमने देखभाल भी कर ली उसकी।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने सुल्तान जी, हमेशा से ही आपसे बात करके हम लोगों को अच्छा लगता है। और सुल्तान जी आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर एक आपके लिए खेल रखा है मैंने
0: जी,
1: लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, बनने तक हौसला बनाए
0: रखिए। क्या सुंदर बात है, बिल्कुल बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, सुंदर, बहुत सुंदर बात कही आपने सुल्तान जी। और निश्चित रूप से आपसे बात करके हम लोग को हमेशा से यही अच्छा लगा है। आज आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गीत है दिलक दिखला जा, एक बार आजा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और साथियों, चलते चलते अब हम कुछ कमेंट्स भी लेते हैं हमारे प्रोग्राम के अंतिम सेगमेंट में। ये कमेंट हमें किया है साहिल रजा पोस्ट फरीदपुर झेड से। कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से तो अच्छा है कि छोटे छोटे काम कर रहे हैं, इससे हमें भी खुशी मिलती है। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि छोटे छोटे काम करना हमेशा से ही बेहतर रहा है। अगला मैसेज हमको करते हैं रामबाबू मिश्रा जी और कहते हैं कि नमस्कार। बिल्कुल, और एक बात याद आ गई कि नाम बड़े और दर्शन छोटे आजकल ये खूब देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी का कोई छोटे छोटे काम आ जाए तो हमको समय नहीं है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं। खुद को समय के अनुसार कार्य करना सीखो। अभी समय बारिश का है, कुछ पेड़ पौधे लगाओ, उनकी परवरिश करो, दूसरों को उपदेश मत दो। आपने ये बात हमारे साथ साझा की है ग्राम गोठा खंडुआ आंवला उत्तर प्रदेश से राम बाबू मिश्रा और आपके सभी साथी। अच्छी बात कही आपने। हमारे ढेर सारे श्रोता इसे भी फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम समझते हैं और केवल कॉमेंट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। हमें संबंधित पोस्ट के विषय में अपने विचार भी साझा करने हैं। हमारे निवेश होता है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाल और चंद्रकला रेवाल, और आप कहते हैं हम एक कहावत है कि बातों से पेट नहीं भरा जाता, काम करने से ही पेट भर जाता है। इसलिए बातें करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बातों में दम होना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम ऐसा करना चाहिए जो समाज और देश के हित में हो। अगर हम छोटे से काम से आरंभ करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े काम की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं। और छोटे छोटे पौधे लगाएं, उनकी रक्षा करें ताकि एक दिन वो पेड़ पौधे बन जाएं, मतलब वो पौधे पेड़ बन जाएं, और इस तरह पर्यावरण की रक्षा होगी। छोटे छोटे कामों से ही हमारा नाम होगा। और अच्छी बात कही आपने। अगला जो कमेंट हम पढ़ रहे हैं ये हमें किया है गंगा सिंह रावत ने रामपुर रोड हल्द्वानी से, और आप कहते हैं बातें हैं बातों का क्या, बातें करने से क्या हासिल होता है, कुछ नहीं, समय नष्ट होता है, जबकि काम करके जो खुशी मिलती है उसे क्या ही कहना। काम में व्यक्ति अपने को व्यस्त रखकर अनर्गल बातों से दूर रह सकता है। बड़ी बड़ी बातें करना सिर्फ डींग मारना या शेखी बगारना है और कुछ नहीं, जबकि छोटे छोटे काम एक दिन कामयाबी की इबारत लिख जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने गंगा सिंह जी रावत जी, और आप सभी श्रोताओं ने अपनी जो ये विचार साझा किए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं, आप सबकी पसंद का और हम सबकी पसंद का ये गीत।

तो श्रोताओं, ये तो था हमारा आज का आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम। प्रोग्राम कैसा लगा आपको, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर लिखिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। और श्रोताओं, इस बारिश में, इस मानसून में एक पौधा जरूर लगाइए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और हर दिन उन्हें अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित कीजिए। इन्हीं संदेशों के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ से मुझे यानी ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। ट्यून किया है आपने 100.4 FM और स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं शाम के ठीक 5। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में ब्रॉडकास्ट होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम को 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। महिलाओं का पसंदीदा प्रोग्राम नारी संसार पेश करेंगी भावना कंचन शाम को 5:30 पर, जिसमें होगी चर्चा परिवार में संवाद बनाए रखें, साथ ही होंगी हेल्थ टिप्स से होगा सेगमेंट इनसे मिलिए, और प्रोग्राम में ही होगा एक सेगमेंट वार्ता जिसमें जुड़ेंगे आपके साथ एक वार्ताकार एक विषय के साथ। शाम को 6:00 युवा साथी सुनेंगे प्रोग्राम युववाणी प्रज्ञा पाठक के साथ, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज, और होगा सेगमेंट ओएलक की। 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का, जिसमें भैया रविंद्र कुमार और धारा सिंह के साथ आप सुनेंगे आज की बात के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। साथ ही होगी कृषक गोष्ठी, जिसमें की विषय है दूध की डेयरी द्वारा आमदनी, जिसमें प्रतिभाग किया है आस मोहम्मद एहसान, जिनसे भेंट वार्ता की है तेजपाल सिंह ने। शाम को 7:00 कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सुनेंगे कृषि पाठशाला भाग संख्या 10, जिसका विषय है चारा संरक्षण, साइलेडा एवं इसका निर्माण। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुमन सेन, कृषक हैं विजय पाल मीरगंज बरेली से, और ये कार्यक्रम सुनेंगे आप शाम को 7:00। 7:31 पर रेडियो हेल्पलाइन सुनिएगा, जिसमें आज का विषय है दुर्घटना में घायल मरीज और इनका उपचार, शंकाएं व समाधान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास गुप्ता। रात्रि 8:00 से रिले करेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का। अब विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। सुबह 8:15 पर सुनना न भूलिएगा प्रोग्राम फिल्मी फ्राइडे। 8:45 पर लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम लोकगीतों का।

सुबह 9 बजे रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर हाजिर होंगे सुबह 10 बजे। 11 बजे समय रहेगा सब रंग का। एफएम रेनबो के प्रोग्राम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुबह 11:30 से। फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम अनुरोध गीत लेकर हाजिर होंगे दोपहर को 1 बजे से। कार्यक्रम रसरंग सुन सकेंगे आप दोपहर 2 बजे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाएंगे आपको 3:30 पर। आपके बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुनेंगे आप शाम को 4 बजे। शाम को 5:05 पर आनंद लीजिएगा भजन संध्या का। पांच बजकर 30 मिनट पर लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम लकी 3। शाम को 5:45 पर सामयिक वार्ता सुनिएगा, जिसमें विषय है बच्चों के लिए हिंदी का ज्ञान। विशेषज्ञ हैं, वार्ताकार हैं अजय कुमार त्रिपाठी। युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी शाम को 6 बजे, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज और नजराना है शाम। कार्यक्रम ग्राम जगत लेकर हाजिर होंगे शाम को 6:30 पर, जिसमें होगी चर्चा विषय है पशुपालन से अतिरिक्त आय के अवसर। साथ ही कृषक अनुभव में बातचीत होगी श्री जोगराज सिंह से सुरेंद्र पाल की, और होगा प्रोग्राम में लोकगीत। शाम को 7 बजे कृषि पाठशाला का भाग संख्या 11 आप सुन सकेंगे, जिसका विषय है ग्रीष्मकालीन चारा संकट के समाधान हेतु हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंजू काला, कृषक रहेंगे सम्मिलित कार्यक्रम में विजय बहादुर, और ये कार्यक्रम सुनेंगे आप शाम को 7 बजे से। 7:31 पर लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल, और रात्रि 8 बजे से रिले करेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, आइए सुनते हैं भजन संध्या।

भजन संध्या में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है और क्या दिव्य वातावरण है, चारों ओर जगन्नाथ जी के जयकारों से माहौल गूंज रहा है और पूरा माहौल जगन्नाथमय हो गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित ढेर सारे लोग, असंख्य लोग, करोड़ों लाखों लोग वहां जो सम्मिलित हुए हैं वहां से, और जो अपने अपने यथा स्थान से इस रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं, उन सभी की तरफ से एक बार जय जगन्नाथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं भजन संध्या, ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। जी हाँ, ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 होने को है। स्टूडियो में दाखिल हो गई हैं भावना कंचन, कार्यक्रम नारी संसार लेकर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम नारी संसार।

गुड इवनिंग, नमस्कार। नारी संसार प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूं बहुत ही खुश होंगी, प्रसन्न होंगी। और आज हम बात करेंगे उन जीवों की जिनके नाम से अक्सर लोग डर जाते हैं और जिनके बिना प्रकृति का संतुलन बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सांपों की, सर्प की। क्यों? क्योंकि आज है 16 जुलाई, यानी कि विश्व सर्प दिवस। अक्सर देखा जाता है फिल्मों में, किस्सों में, कहानियों में, और अंधविश्वासों के कारण सांपों को खतरनाक और बदले की भावना रखने वाला जीव मान लिया गया है। लेकिन सच्चाई जो है वो इससे बिल्कुल ही अलग है। सांप ना तो किसी से बदला लेते हैं और ना ही बिना कारण हमला करते हैं, और वो तभी काटते हैं जब उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में पाई जाने वाली अधिकांश सांपों की जो प्रजातियां होती हैं वो विषहीन होती हैं। केवल कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जिनका विष मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हर सांप को देखकर घबराने से या उसे मारने के बजाय सावधानी और समझदारी से ही काम लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जब भी सांप आपको दिखाई दे, यानी कि मनुष्य जो है उन पर सांप बिना किसी कारण के हमला नहीं करते हैं, उन पर तभी हमला करते हैं जब उन्हें छेड़ा जाए या फिर वे स्वयं को खतरे में जब महसूस करते हैं तभी वे आत्मरक्षा के लिए प्रतिक्रिया देते हैं। जब आपको सांप दिखाई दे तो उस पर कुछ ना कुछ बात जो है वो ध्यान में रखने की है। जैसे कि अगर आपके घर, खेत या आसपास सांप दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले तो घबराए नहीं, शांत रहें, उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उसे पकड़ने के लिए, भगाने के लिए या फिर मारने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है और सांप के लिए भी। संभव हो तो उस स्थान से बच्चों को, पालतू जानवरों को दूर रखें तथा साथ ही साथ स्थानीय वन विभाग या फिर वन्य जीव बचाव दल या फिर प्रशिक्षित सर्प रक्षक को तुरंत सूचना दें। याद रखें, सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ना ही सबसे सही और मानवीय उपाय है। बरसात के मौसम में कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी आवश्यक हैं, जैसे कि घर के आसपास झाड़ियां, कूड़ा करकट ना जमा होने दें। चूहों की संख्या कम रखने का प्रयास करें, क्योंकि जहां चूहे होते हैं वहां सांप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। रात के समय बाहर निकलते समय टॉर्च का उपयोग करें और खेतों या घास वाले क्षेत्रों में जाते समय पूरे पैर ढकने वाले जूते पहनें। और यदि किसी व्यक्ति को दुर्भाग्यवश सांप काट ले तो घबराने की बजाय उसे शांत रखें और बिना समय गवाए निकटतम अस्पताल पहुंचाएं। और इसके साथ ही साथ सही समय पर चिकित्सा ही जान बचा सकती है, इस बात को ध्यान रखें।

तो आज विश्व सर्प दिवस है और आज के दिन हमारा जो सवाल है वो यही है कि भारत में सांपों का गांव कौन सा है। और इस सवाल का जवाब आप हमें दे सकते हैं हमारे फेसबुक की नारी संसार की पोस्ट के कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से जाइए वहां पर अपना आंसर टाइप करिए, हम आपके आंसर को शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंत में। और तब तक सुन लेते हैं ये गाना।

0: इंटरमीडिएट सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस प्रोग्राम में मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ विशेष किया होता है। इन्होंने अपने पूरे घर को पेड़ पौधों से सजा के रखा हुआ है और अपने घर में एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे फूल पौधे और सब्जियां उगाई हुई हैं। तो आइए बात करते हैं दीप्ति सक्सेना जी से। दीप्ति जी, सबसे पहले तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: दीप्ति जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि गार्डनिंग या बागबानी करने का शौक आपको कैसे लगा?
1: गार्डनिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। देखिए, मैं एक किसान परिवार से आती हूँ, तो मुझे खेत और पेड़ ये सब बहुत पसंद थे। और फिर जब शहर में आए तो ये इसकी मुझे कमी लगी, ना पेड़ थे ना पौधे थे, तो बस मुझे वही डेवलप करना शुरू किया मैंने और अपने
0: जी,
1: घर को छोटी सी बगिया में बदल दिया।
0: जैसे कि आपने अपने छत को बगीचे का रूप दिया हुआ है, तो किस
1: हाँ
0: तरीके
1: जी,
0: से आप मैनेज करती हैं? कौन कौन से फूल आपने लगा रखे हैं?
1: मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, जैस्मीन है, चांदनी है, लिली, कई प्रकार की लिली है मेरे पास में, 10 बजिया है, रोजेस
0: जी
1: बहुत अच्छे हैं, और एक छोटा सा मेरे पास में किचन गार्डन भी है जहाँ मैं अपनी सब्जियाँ, पुदीना, धनिया और मीठा नीम मैंने लगा रखा है घर में, जो कि काफी बड़ा हो गया है। भिंडी मैं उगा
0: जी
1: लेती हूँ और टमाटर भी, पेड़ बहुत अच्छे फल देते हैं।
0: तो आप कितना टाइम देती हैं पेड़ पौधों को?
1: देखिए, गार्डनिंग टाइम तो चाहता है, रोज वाटरिंग करना, कटिंग करना, टाइमली कटिंग करना और उसको गुड़ाई करना, पिंचिंग करना, ये सब मुझे करना पड़ता है। सुबह में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा मुझे लग जाता है।
0: समय आपको हमारी बहुत सी बहनें सुन रही हैं और बरसात का सीजन भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में थोड़ा सा बताइए कि कितना आसान है कटिंग से पेड़ों को लगाना, या कैसे वो हमारे बगीचा होता है हम उसको बढ़ा सकते हैं?
1: ये सबसे अच्छा मौसम है बरसात का मौसम, जिसमें हम अपने प्लांट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
0: जी
1: कटिंग करके हमें छोटे छोटे पाउचेस में उसकी पौध बनानी होती है, और इस टाइम अगर आप बीज भी डालते हैं ना, तो वो भी बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। पेड़ की कटिंग करके उसको पन्नी में बांध के, और फिर आप उसमें छोटे से पॉलिथिन में मिट्टी और कंपोस्ट वगैरह की खाद लगा के आप उसमें करिए, और विद इन 10 डेज उसमें जड़ें आने लगती हैं, फिर आप उसको बड़े गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं।

0: कितना अच्छा लगता है आपको समय बिताना?
1: बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया। सुबह की चाय जब मैं छत पे बैठ के पीती हूँ, मेरे पौधे जब सर सर करके ठंडी हवा से झूमते हैं, तो मेरा मन बहुत आनंदित हो जाता है।
0: जी
1: मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है जब मैं अपने नीचे पोर्च में बैठ के झूले पे, और मैं अपनी ऊपर छत से नीचे लटकती हुई बोगनविलिया है, और मेरे पास में बहुत अच्छे प्लांट्स है, बेल भी बहुत अच्छी है मेरे पास में, जिसमें एक है मधुमालती, जो
0: जी
1: कि इस टाइम शाम के टाइम में इतनी प्यारी खुशबू देती है कि मेरा पूरा घर महकता है।
0: तो आप क्या कहना चाहेंगे, पेड़ का आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है?
1: पेड़ों का सिर्फ मेरी लाइफ में ही नहीं, सभी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता
0: जी
1: ही चला जा रहा है। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है, आप देखिए धुंध से ऊपर हमें चांद तारे तक दिखाई नहीं देते हैं,
0: जी
1: इतना पॉल्यूशन है। तो उसमें अगर आप छोटे छोटे गार्डन अपनी बेलकोनी में, अपनी छत में, जगह नहीं है तो अपनी बेलकोनी में ही डेवलप करिए, उससे हमें ऑक्सीजन तो एटलीस्ट मिलेगा। इतने बड़े पॉल्यूशन भरे माहौल में हम थोड़ा तो अच्छा महसूस करेंगे, जिससे हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और बहुत फील गुड होता है। आप लगा के देखिए, और इतना अच्छा लगता है, उससे हम एनवायरमेंट की हेल्प ही कर रहे हैं ना। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गार्डन अपने घर में जरूर डेवलप करें, और जिससे हेल्दी एनवायरनमेंट बने और ग्रीनरी बढ़े।
0: तो दीप्ति जी, जैसा कि आपने बताया कि पेड़ पौधे हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो बहुत ही जरूरी है कि हम सब इस ओर एक कदम बढ़ाएं। और चलते चलते आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग एक पौधा किसी भी अच्छे ओकेजन पे, जैसे आप रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, बर्थडे में आप
0: जी
1: रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो आप एक पौधा सबको बांटिए, जिससे वो अपने घर में जाके लगाएं और वो आपको हमेशा याद रखें कि ये पौधा हमें वहां से मिला था। और उससे क्या होगा कि वो मेमोरी भी बहुत अच्छी रहेगी और एनवायरमेंट के लिए भी बहुत हेल्दी रहेगा।
0: बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छे विचार आपके। और इस समय जो लोग आपको सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो कहीं ना कहीं इससे प्रेरित होंगे और अपने घर में, घर के आसपास कोशिश करेंगे पेड़ पौधों को लगाने की, उनकी केयर करने की और वातावरण को बचाने की। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो ये तो था हमारा आज का सेगमेंट इनसे मिलिए, और हमने बातचीत की दीप्ति सक्सेना जी से। और अब बारी है एक गाने की, तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

बहनों, अगर हम बात करें अपने परिवार की तो हर कोई यही चाहता है कि हमारी जो फैमिली है वो हैप्पी फैमिली रहे, और हर परिवार की खुशहाली, विश्वास और आपसी रिश्तों की जो नींव होती है वो होता है कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे से बातचीत, यानी कि परिवार में संवाद बनाए रखना। देखा जाए तो आज की तेज़ रफ्तार भरी ज़िंदगी में हम सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से खुलकर बात करने का समय कम होता जा रहा है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि मोबाइल की स्क्रीन ने आमने सामने की बातचीत की जगह ले ली, और ऐसे में छोटी छोटी गलतफहमियां कई बार बड़े मतभेद का रूप ले सकती हैं। संवाद यानी कि कम्युनिकेशन और बातचीत केवल बोलना नहीं बल्कि एक दूसरे को ध्यान से सुनना और समझना भी है। जब परिवार के सदस्य अपनी बात बिना किसी झिझक के कह पाते हैं और उनकी बात को सम्मानपूर्वक सुना जाता है, तब विश्वास मजबूत होता है और रिश्तों में अपनापन बना रहता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए माता पिता का समय और मार्गदर्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहीं बुज़ुर्गों के अनुभव परिवार की अमूल्य धरोहर होती है। तो यदि परिवार के सभी सदस्य रोज़ कुछ समय साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा करें तो कई समस्याएं शुरू होने से पहले ही सुलझ सकती हैं। तो छोटी छोटी कुछ आदतें हैं, अगर हम उसको अपना लें तो हमारे परिवार का जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो सकता है। सबसे पहली बात ये कि भोजन के समय सभी लोग साथ में बैठें और कुछ समय ऐसा निकालें जब आप बिना मोबाइल के केवल अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। बच्चों की बातों को पेशेंस के साथ सुने, बुज़ुर्गों का सम्मान करें, और साथ ही साथ अगर कोई गलतफहमी है, कोई मतभेद है, कोई नाराज़गी है तो उसको बढ़ाने की बजाय बातचीत करके सुलझाने का प्रयास करें। और अब बारी है गाने की, तो आइए सुन लेते हैं गाना और गाने के बाद आज के सवाल का जवाब।

आपसे हमारा आज का सवाल था कि भारत में सांपों का गांव कौन सा है, और इस सवाल का सही जवाब है कि भारत में सांपों का गांव महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है, जिसका नाम है शेतवाल गांव। और इस प्रश्न का सही उत्तर हम तक भेजा है सोमेंद्र यादव ने, और साथ ही साथ प्रवीण चौहान ने, और नबी हसन अब्बासी जी ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हम आप सभी सुनने वालों से यही कहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर हम तक भेजिए, प्रश्न के जवाब हम तक लिखकर भेजिए, और कार्यक्रम ऐसे ही सुनते रहें। और चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, और पिन कोड 243001। और अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम आपसे और बातचीत कर सकें। अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन को दीजिए अनुमति। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।

ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, सुन रहे थे प्रोग्राम नारी संसार और स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं ठीक छे। स्टूडियो में आ गई हैं प्रज्ञा पाठक कार्यक्रम युवाणी लेकर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम युवाणी।

जय जगन्नाथ साथियों, ये खास दिन और भी खास हो गया है क्योंकि आज आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक को मिला है आपका साथ। इस खास उत्सव पर हम सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि सबसे बड़ा उत्सव है। जगत के स्वामी आज अपने महल को छोड़कर आम लोगों के बीच पे सड़क में आ जाते हैं, जहां त्यौहार ये बताता है हमें कि उनका जब वो सब लोग मिलकर रथ पर बैठते हैं, प्रेम और भक्ति में कितनी ताकत होती है। जो लोग बीमार हैं, मंदिर नहीं जा सकते, उन्हें दर्शन देने प्रभु रथ पर सवार होकर खुद आ जाते हैं। ये रथ यात्रा भाई बहन के प्यार का एक अनोखा प्रतीक है। इसमें भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ आते हैं। रथ यात्रा में ना जाति है, ना धर्म है, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, भेदभाव नहीं होता। ये रस्सी सिर्फ रथ को नहीं बल्कि प्रभु के भक्तों के दिल को जोड़ती है।

वेलकम बैक दोस्तों। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और उससे जुड़े रहस्य दुनिया भर में अपनी भव्यता और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के पुरी में स्थित ये प्राचीन मंदिर इसका वार्षिक उत्सव भक्तों के लिए असीम आस्था और विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होने वाली ये यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की नगर भ्रमण यात्रा है। ये तीनों रथ पे सवार होकर अपनी मौसी के घर गुणीचा मंदिर तक जाते हैं। 9 दिन वहीं विश्राम करते हैं। रथ यात्रा का एक बेहद रोचक पहलू ये भी है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो एक मुस्लिम भक्त साल बेग की मज़ार के सामने भी थोड़ी देर ज़रूर रुकता है। और मंदिर के ऐसे कितने रहस्य हैं जो साइंस से परे हैं, जिसका जवाब विज्ञान भी नहीं दे पा रहा है। जैसे उल्टी दिशा में लहराता ध्वज, मंदिर में हवा के नियम ही बदल जाते हैं, कोई पक्षी और विमान मंदिर के ऊपर नहीं उड़ सकता, रसोई में एक चमत्कार हो जाता है कि जो वहाँ पर खाना पकाया जाता है मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं एक के ऊपर एक, वहाँ पर सबसे ऊपर वाले मिट्टी के बर्तन में खाना सबसे पहले पक जाता है। और ब्रह्म पदार्थ जिसे 12 साल में मूर्तियों में बदला जाता है, जिसे पुजारी भी खुली आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे कई सारी लीलाएँ प्रभु, तो बोलो जय जगन्नाथ।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: चाहे युवा साथी, हम आपसे वादा करते हैं, हम रोजाना किसी न किसी युवा साथी को आपके बीच में लेकर आते हैं, और ऐसे ही हमारे बीच में एक खास मेहमान जुड़ी हैं। जानते हैं इनसे, इन्हीं का नाम, आप हमारे युवा साथियों को अपना नाम बता दीजिए।
3: मेरा नाम सौम्या मिश्रा है।
2: सौम्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको हमारे बीच में जोड़ के। जब मुझे पता चला आप BSc नर्सिंग कर रही है, तो मेरा मन हुआ कि आपसे बातचीत करी जाए, आपके सफर के बारे में जाना जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आजकल कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है, और कई बार क्या होता है कि लोग फाइनेंशियली भी पीछे हट जाते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कुछ ज़्यादा महंगी हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे युवा साथियों से बात करी है, तो बहुत सारे लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इसकी शुरुआत कैसे करी, कब आपको ख्याल आया कि आपको BSc नर्सिंग करनी है?
3: देखिए, मैंने 12th में साइंस साइड ली थी ना, तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि कोई डॉक्टर लाइन में कुछ होए, तो मैंने नीट का एग्जाम भी दिया था, लेकिन उसकी कट ऑफ जनरल के लिए बहुत हाई हो गई है, 650 प्लस नंबर लाने होते हैं, तो उसमें मेरे आए थे 380, उससे मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, तो नीट में तो उस साल हुआ नहीं था, फिर ड्रॉप लेने से कोई फायदा नहीं था, साल वेस्ट होते रहते, और फिर प्राइवेट में बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता, इसलिए मैंने ये ABVM UBSC नर्सिंग का एग्जाम दिया था, CNET का, इसमें मुझे सिलेक्शन मिल गया, तो मैंने सोचा जब डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है तो नर्सिंग से ही कुछ कर लिया जाए, आगे PhD करके डॉक्टर भी बन सकते हैं।
2: ओह, अच्छा, इसका पेपर आपने बताया अलग से देना होता है, नीट में नहीं होता, इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है?
3: हाँ, इसका ABVM UBSC नर्सिंग करके होता है, CNET से उसमें होता है।
2: अच्छा, तो वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, 12th के बाद कोई भी बच्चा डाल दे,
3: हाँ,
2: उसको,
3: हाँ,
2: जो भी बायो से है,
3: हाँ,
2: को 12th के बाद भर सकता है, उसके बाद उसे कॉलेज मिल जाएगा?
3: हाँ, कॉलेज बहुत, मतलब इसमें गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं सारे, UP से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए, उत्तराखंड वालों के लिए नहीं है ये, UP के लिए सिर्फ।
2: अच्छा, तो UP के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें उनको
3: एडमिशन
2: मिल जाएगा।
3: हाँ।
2: अच्छा, तो आपने फिर कौन से कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपको कौन सा कॉलेज मिला है?
3: मैंने मतलब टॉप में सबसे पहले लखनऊ का भरा था, KGMU, लेकिन वो नहीं मिला, तो उसके बाद सबसे मेरे घर के पास मतलब बरेली से बदायूं ही था, तो
2: हाँ,
3: मैंने सेकेंड नंबर पे बदायूं डाला था, तो मुझे बदायूं का मिल गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, तो मैं उससे BSc नर्सिंग कर रही हूँ।
2: सौम्या जी, जैसे आपने मुझे बताया कि आप उससे गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रही हैं, आजकल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की देखिए अपने आप में ही बहुत वैल्यू है, आपने मुझे बताया कि BSc नर्सिंग करी है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि BSc नर्सिंग करने के बाद क्या क्या आप इसमें आगे लाइन में जा सकते हैं, और ये BSc नर्सिंग के कोर्स में हमें क्या क्या

0: चीजें सिखाते हैं।
1: बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एक तो थ्योरेटिकल को पोर्शन भी कंप्लीट करते हैं और प्रैक्टिकल, पास में हॉस्पिटल है तो उसमें ड्यूटी भी लगाते हैं, सब सिखाते हैं प्रैक्टिकल वर्क मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। और उससे आगे आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं और फिर और भी दे सकते हैं, जैसे कि एम्स में जा सकते हैं और एग्जाम दे के मतलब CHO भी बन सकते हैं, चीफ नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं, और भी बहुत सारे मतलब फॉर्म भर के आप मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी पोस्टिंग निकलती है कि नर्स बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों की जरूरत है, उन्हें डायरेक्ट जॉब भी मिल जाती है।
0: मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी करनी पड़े या फिर पीएचडी करने पड़े, आपको बीएससी नर्सिंग के बाद भी डायरेक्ट जॉब मिल सकती
1: जिन्हें
0: है।
1: हॉस्पिटल में जाना है मतलब वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग करके जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें लेक्चरर बनना है प्रोफेसर बनना है उन्हें एमएससी नर्सिंग करनी कंपलसरी है।
0: हाँ हाँ हाँ जी, अच्छा ये सौम्या जी ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने, और हमारे जितने भी युवा साथी आपको सुन रहे होंगे वो समझ सकेंगे कि उनको नई दिशा मिलेगी, और इस जो भी ये बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या उनके लिए बेनिफिट है।
1: और प्राइवेट में ना बीएससी नर्सिंग की फीस अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज देखोगे तो 1 ईयर की अप्रोक्स 1 लाख है, और
0: जी
1: गवर्नमेंट की जहाँ से मैं कर रही हूँ बदायूं से, वहाँ पे पूरे 4 साल की 1,30,000 फीस है ओनली, और स्कॉलरशिप के उससे वो वापस भी आ जाती है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई हम आपने हमें, और हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो इस सुनकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा साथी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा और भी जिम्मेदारियां रहती हैं। कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से चलते कई सारे युवा साथी पीछे हट जाते हैं कि मेडिकल लाइन में जाना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन अब आपने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, अगर हम तैयारी करें अच्छे से और अच्छे से सारी चीजों पर अपना फोकस करें और अपने आप को झोंक दें बिल्कुल पढ़ाई में, तो हर चीज हर मुकाम हासिल कर पाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने तैयारी करी थी, तो आपने सेल्फ स्टडी करी थी इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए?
1: क्योंकि मैंने नीट की स्टडी करी थी ना तो उसमें वही सिलेबस था, तो बायो मतलब बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इसमें यही सब आया था, और साथ में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और इंग्लिश और आया था, पूरा
0: अच्छा,
1: पेपर PYQ में ही था मतलब।
0: ओके ओके। तो मतलब जो भी बच्चे नीट की तैयारी 12th के बाद बायो तो लिए होगी उन्होंने,
1: हाँ
0: 12th के बाद अगर वो करेंगे तो ऑलमोस्ट वही सिमिलर कोर्स होता है, या वो बस थोड़ा सा ध्यान दें तो वो सेल्फ स्टडी भी कर
1: हाँ
0: सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक बुक्स वगैरह कोई ऐसा कि उनसे तैयारी करें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा?
1: मेनली तो NCERT क्लास 12th की बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स लिख।
0: तो मैं जी, आज आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, और जितने भी युवा साथी आपको सुन रहे होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, और वो भी एक नई दिशा मिल रही है उनको भी इन सारी चीजों को लेकर। और मतलब कई बार क्या होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, कई लोगों की फैमिली में कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं होता है कि हर कोई आपको बताए कि ऐसा चीज कर लो। आप ही जैसे लोगों से हम बात करते हैं ताकि हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और आपने इतनी अच्छी बात बताई कि आप बुक से भी तैयारी करके अपने आप सेल्फ स्टडी से भी कोई फालतू का खर्चा नहीं, आप खुद से भी अगर चाहें तो खुद से भी सारी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बीएससी नर्सिंग के बाद आपने बताया ही है गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं, आप उनको फिल करके आप पेपर दे सकते हैं। अच्छा, जो आपने बताया बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो वो 3 साल का है या 4 साल का है?
1: 4 साल का है।
0: अच्छा, 4 साल की ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ही कहलाएगी।
1: हाँ ग्रेजुएशन के साथ साथ जैसे लोग बीएससी करते हैं फिर बाद में कुछ करते हैं, तो इसमें बीएससी भी हो रहा है और साथ में नर्सिंग भी हो रहा है। बीएससी नर्सिंग वैसे 3 का होता है बीएससी, बस 1 साल और करके बीएससी नर्सिंग हो रहा है, तो
0: जी
1: कोई
0: जी
1: अलग से ग्रेजुएशन करने की भी जरूरत नहीं है। बीए बीकॉम इसमें वो भी हो रहा है और साथ में मतलब हॉस्पिटल नॉलेज भी हो रही है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो दोनों तरह से एक बेनिफिट मिल गया उनको, कि कई बार क्या होता है अलग से कोर्स करना पड़ता है तो वो भी 2 साल का है, तो इससे आपकी ग्रेजुएशन भी साथ में हो जाएगी और आपको डिप्लोमा की जरूरत भी नहीं है, आप साथ में सारी चीजें इसमें सीख लेंगे। आपने बताया थियोरटिकल नॉलेज भी मिलती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, हर तरीके से मिलती है। अच्छा, जैसे कि अगर आप एमएससी करनी हो बीएससी के बाद, बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी करनी हो, तो उसके लिए भी फॉर्म आते हैं, उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम का कोई फॉर्म आता
1: हाँ
0: है?
1: अगर गवर्नमेंट से करनी है तो फॉर्म आएगा, लेकिन प्राइवेट अगर जैसे आपको बीएससी के बाद जॉब भी करनी है और साथ
0: जी
1: में प्राइवेट एमएससी करना है तो आप प्राइवेट तो किसी भी कॉलेज में कर सकते हो,
0: अच्छा,
1: और अगर गवर्नमेंट करना है तो उसके लिए हाँ एंट्रेंस देना होगा।
0: एंट्रेंस देना होगा। उसके बाद फिर आपके ऊपर है कि आप उसके बाद कैसे कंटिन्यू करना चाहते हो, आपको जॉब में कंटिन्यू करना है या एमएससी करके पीएचडी करना है, वो आपके ऊपर है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अच्छा सौम्या जी, आज आपसे बातचीत करी और हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी सारी बातें बताई, और जो भी युवा साथी आपको सुन रहे हैं जो भी इस मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, उम्मीद करती हूँ उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज आपकी बातचीत सुनकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं, और कई बार कई स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो पीछे हट जाते हैं, पर आपने बताया कि अगर इरादे मजबूत हों तो आगे का सफर

0: पर बहुत आसान हो जाता है। हमेशा अपने आप में एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आप अपने आप के लिए पर्याप्त हैं, और हमेशा अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्डअप रखिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस जरा सा भी लूज हुआ तो आप किसी भी सफर को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये 100% दीजिए अपना, और आगे का सफर हमेशा ही आप उसके लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आज आपसे बातचीत करी सौम्या जी, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं हम आपके आगे के भविष्य के लिए कि आपका भविष्य भी बहुत ज्यादा ब्राइट हो, और ऐसे ही आपसे प्यारी प्यारी बातें हम आगे भी करते रहें। आज आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।
0: वेलकम बैक साथियों, अब हम बात करेंगे, आज जयंती है अरुणा असफ अली जी की, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका जन्म से नाम अरुणा गांगुली था, जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। गांधी जी आदि नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मुंबई में विरोध सभा आयोजित करके विदेश यात्रा को खुली चुनौती सरकार को खुली चुनौती देने वाली प्रमुख महिला थी। उन्होंने 1992 को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और 1997 में भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत रत्न का उन्हें सम्मान दिया गया। दोस्तों अब चलते हैं आपकी फरमाइशों की तरफ, बहुत सारी फरमाइशें हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं। फरमाइश आई है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह की। अगली फरमाइश धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद बेबी, आलिया अयान बाबू की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो की, राजवीर सिंह यादव, सोमेंद्र यादव, धर्मेंद्र चिंपा की, भोपालगढ़ राजस्थान से। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो सब चलते हैं आज के सवाल पर, जहां हमने आपसे पूछा था कि 2026 T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, और हमें सही उत्तर दिया है पद्मा टॉकेश नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुजन झनशाह ने नरवील नगर नरवील महाराष्ट्र से, पीएस नवानकर सादुल शहर राजस्थान से, रामकुमार रेवाड़ भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र चिंपा ने सहारनपुर से, जॉन टिकेस्ट्रो ने, राजवीर सिंह यादव, सुमेंद्र यादव, अगला बमलीश पंवार, महरबा दरवाज़ा ईटा से, नबी हसन अब्बासी, प्रवीण चौहान, मोहम्मद आमिर अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, इन सभी ने आज के सवाल का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब चलते हैं फरमाइश की तरफ। फरमाइश आई हमारे पास नरवेश्वर नरवेल महाराज से, पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल मलकापुर से, नारायण इंगले, सोपान ताइंगे, आशीष मोहरे। अगली फरमाइश हमारे पास आई है सादुल शहर राजस्थान से, रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ की फरमाइश है हमारे पास। मरबा दरबाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, सैनवास अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशव अब्बासी, इनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। स्टूडियो में दाखिल हो गए हैं धारा भैया और रघु भैया, कार्यक्रम किसान वाणी लेकर के। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसानवाणी सुन रहे सभी किसान भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा
2: और भैया रघु की
1: राम राम। कैसे हैं रघु भैया?
2: धारा भैया हालचाल ठीक हैं। और देखो आज तो हम खेतों पे चले आ रहे हैं, 7-8 दिन हो गए हमारी धान की रोपाई को, तो दरार ऐसी फट रही खेत में, तो हमने सोची कि सिंचाई करी आवे।
1: हाँ, हमें तो जा लग रही है कि कपड़ा तक ना बदले हैं, अभी भीगे भागे चले आ रहे हैं, अभी थोड़ी थोड़ी जो बूंदाबांदी हुई गाँव है।
2: हाँ बिल्कुल, आप देखो भैया खेती बाड़ी को काम ऐसा है धारा भैया कि कपड़ा देखोगे या खेत देखोगे, हमारो तो सब कुछ खेते में बसूबू है। खेते से जो उत्पादन मिला है बाई से आगे कपड़ा बनेंगे, तो कपड़ा उपड़ा ना देखा था हम तो भैया, खेत को एक काम की ताक देखते हैं कि कौ पानी लगाने, कौ खाद लगाने, कौ मामे दवाई लगाने।
1: और उत्तीय ताक से अपने कार्यक्रम किसान वाणी में उपस्थित हो के आप महत्वपूर्ण जानकारियां भी जो है किसान भैया बहनों को पहुंचाओ, तो और आज भी जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप अपने भैया बहनों को पहुंचाओगे। लेकिन आपको एक बात और पता है जो हम लोग भूले तो ना है, लेकिन थोड़ी देर भले ही हो जाए कि हम अपने कार्यक्रम में किसान भैया से एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल को जवाबों हम ही देते हैं।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो किसान भैया बहन सवाल को उत्तर देते हैं, बिल्कुल सटीक उत्तर देते हैं, तो आगे की बातचीत कुछ करी जाए उससे पहले आज को सवाल पूछ ले भैया बहन से।
2: तो भैया देखो आज को सवाल लिख लो अपनी कॉपी में, पशुओं में सर्रा रोग किस कारण से होता है?
1: बहुत आसान सो सवाल है और इस समय बरसात को समय है, इसके मद्देनजर जो है अपने पशुओं को ज़्यादा ध्यान रखने और रखने हैं। और अब एक महत्वपूर्ण बात ये अपने भैया बहनों के साथ साझा करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो भारत सरकार ज़्यादा जोर दे रही है, तो वो आखिर क्यों इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? हमारे भैया बहनों को इस ओर ध्यान देना होगा और समझना भी होगा, क्योंकि अगर कोई योजना सरकार किसान भाइयों के हित में लाती है तो वो उनका हित होता है उसमें।
2: बिल्कुल, अब भैया हित की बात जा है कि अब जैसे धान लगाए गए हैं तो सूखो पड़ सकते हैं, बाँ में हमारी फसल मारी जा सकती है, और जा है कि जब कटाई को टाइम होता है तो कई फेरा भैया हमारे ही धान बह गए खर्रा के या नदी के पानी में, तो ऐसे समय पे जब फसल खराब हो जाती है तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो बहुत काम में आती है।
1: कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए और उस आपदा में हम लोगों के खेत में खड़ी फसल जो है नष्ट हो जाए और हम लोगों को ना मिले, तो भैया अगर हमने फसल बीमा कराया है और उसका मुआवजा हम लोगों को मिल सकता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा है किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत। लोग लापरवाही बरत जाते हैं, अरे कहाँ करने हैं बीमा कराए के, हाँ कौन सो हमें मिल जाता है ना। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिन

0: को इसका लाभ मिल जाता है और मिलता उन्हीं को भी है जो जागरूक हैं, अपनी फसल का बीमा कराते हैं और अगर कोई नुकसान भाव है तो समय से भैया उसकी सूचना संबंधित बैंक को या फिर जहां से बीमा कराया है वहां को दे देते हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल, और भैया हमें तो लाभ मिलो जाको, और हम तो हमारो केसीसी कार्ड बनो वो, और हम बासे जो कृषि ऋण लेते हैं तो बाई के माध्यम से हम भैया अपने चाहे खरीफ सीजन हो चाहे रवि सीजन हो हम अपनी फसलन को बीमा जरूर कराते हैं।
0: रघु भैया बात बिल्कुल ठीक है, यही अपने भैया बहनों को बताना चाह रहे हैं कि देखो जिन लोगों ने अभी बीमा ना करा हुआ है उन्हें तो जवाब की जानकारी ना है, और जिन लोगों ने बीमा कराओ है और उसको लाभ लो है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी और बेजाबाद के लिए छोड़ता ना है। तो आपको बता दें कि देखो कुछ लोग उनको जब तो पता नहीं कितना पैसा लेंगे बीमा कराने में, कत ही ना जो खरीफ की फसल है अगर उसको बीमा कराना चाह रहे हैं तो जो हमारी लागत या जितना उत्पादन हो सकता है अनुमानित उसको 2% भैया पैसा देने पड़ता है प्रीमियम को, और ऐसे रवि फसल के लिए केवल 1.5% पैसा देने पड़ता है, और अगर कोई व्यवसायिक खेती है या बागवानी है जिसमें के फलदार बागान हैं उनमें भैया जो है थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा जाता है उसमें 5% प्रीमियम देने पड़ता है। अब इसके लिए किसान भैया बहनों एक बात और कहेंगे कि आपके पास में अगर खेती की ज़मीन है तो उसमें आपकी खतौनी है, आधार कार्ड है, ये कुछ चीज़ें होंगी, या जैसे केसीसी लोन लो, बाकी आपके पास में पासबुक हुई, बैंक में जा कर अपने भैया बीमा करा सकते हैं या फिर कहीं CSC केंद्र पर पहुँच कर बीमा करा लें तो इसको फ़ायदा आप लोगों को जरूर मिल सकता है।
1: बिल्कुल धारा भैया कतई सही कह रहे हो, बस जरूरत है जागरूक होने की, और जब हम जागरूक हुई जाएंगे तो अपनों नुकसान बचा लेंगे।
0: तो आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे जो बातचीत हुई है हम लोगों की और भैया बहनों ने जो सुनी है उसको लाभ वे लोग जरूर उठाएंगे, और हम भी जानते हैं आप भी जान रहे हो और भैया बहनों को भी इस बात की जानकारी है कि हम अपने कार्यक्रम में एक परिचर्चा शामिल कर रहे हैं आजकल, तो परिचर्चा को का विषय है और कौन कौन भैया शामिल हो रहे हैं?
1: आज की जो परिचर्चा है बाकू विषय है दूध की डेयरी द्वारा आमदनी करें, जा परिचर्चा में प्रतिभागी हैं आस मोहम्मद और मोहम्मद एहसान, और जा परिचर्चा को संचालन कर रहे हैं भैया तेजपाल।
2: आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है दूध की डेयरी द्वारा आमदनी कैसे करें, और हमारे साथ में आप हैं?
3: मैं हूं मोहम्मद एहसान।
4: मैं हूं आस मोहम्मद।
2: आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का विषय है
3: जी
2: कि दूध की डेयरी द्वारा आमदनी करें
3: जी,
2: आप क्या काम धाम करते हैं?
4: सर डेयरी का काम हमारा डेयरी फार्म है।
2: अच्छा डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म आप कितने समय से कर रहे हैं?
4: हमारा दादा लाई है सर, दादा परदादा के टाइम से चला रहा।
2: अच्छा
4: जी,
2: तो आपने
3: खानदानी पैसा आई है।
2: अच्छा
3: जी।
2: अच्छा बात करूँ शिक्षा दीक्षा की, तो आपने पढ़ाई लिखाई की है क्या?
4: पढ़ाई करी हमने 6 क्लास तक करी।
2: अच्छा
4: जी,
2: तो आपके मन में कैसे विचार आया कि जो है हमें डेयरी पालन करें? और
3: सर खान ये हम शुरू से ही करते हुए आए, पढ़ाई के साथ साथ स्टडी के साथ साथ हमने डेयरी का काम करते हुए, जब हमें पे लोड ज्यादा पड़ जाता है तो पढ़ाई हमें बीच में छोड़ देना पड़ती है, क्योंकि उसके देख रेख में हम लोगों को देखना पड़ता है।
2: अच्छा,
3: हमारे अंडर में भी लोग होते हैं ना नीचे काम करने के लिए। फिर यही है कि अपना इससे अच्छा बिजनेस हमें कुछ लगा नहीं। मैंने BA बीच में छोड़ दिया, BA कराया, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी।
2: अच्छा,
3: इसलिए छोड़ना पड़ा।
2: तो कितनी भैंसे हैं आपके पास में?
4: हमारे पास 12-13 भैंसे हैं
3: थी। लॉकडाउन के बाद थोड़ा हम लोगों का लॉस हुआ।
2: अच्छा
3: जी जी,
2: तो 12-13 भैंसे हैं तो लगभग कितना दूध का उत्पादन हो जाता है?
4: हो जाता है सर 1 क्विंटल दूध का।
2: अच्छा, तो इसकी जो बिक्री आप कैसे करते हैं, घर पे ही सेल हो जाता है या फिर
4: वहीं से डेयरी से ले आते हैं?
2: अच्छा, डेयरी से ही सेल हो जाता है।
3: कुछ स्वीट है मिठाई वालों के जाता है।
2: अच्छा,
3: और कुछ कस्टमर आते हैं और जो वहाँ पे हमारी बजरी में मंडी एक मंडी वहाँ जाता है। अच्छा, सेल होता है वहाँ पे।
2: कुल मिला के जो है डेयरी पालन करने से
3: जी
2: फायदे हैं?
3: जी सर, बहुत बेनिफिट है। मैं खैर अकाउंटेंट संभालता हूँ।
2: अच्छा,
3: तो अपना तो थोड़ा भी बरसात का टाइम इसलिए हमने कम कर दिया हूँ, अब ये स्टार्टिंग जो विंटर आएगा उसके बाद थोड़ा अपना इसको प्रोग्रेस और बढ़ाएंगे आगे को काम जाएंगे।
2: अच्छा,
3: कम से कम 50-60 करना है हमें।
2: अच्छा, तो जो अच्छा भैंसों की देख रेख, अच्छा इसमें जैसे कि जो भैंसें आपने पाल रखी हैं
3: जी,
2: इनको क्या खिलाते पिलाते हैं, खान पान का इनके कैसे ध्यान रखते हैं?
4: खान पान का ये

0: भूसा और चोकर चुनी मसूर की अरहर की खल ये सब ब्रेड होती है,
1: अच्छा,
0: ये सब खाती हैं।
1: एक संतुलित पशु आहार भी आता है। अगर हम अपने पशुओं को इसको खिलाएं
2: जी सर,
1: तो जो है उससे क्या होता है कि दूध के उत्पादन की
2: जी
1: क्षमता है
2: जी
1: पशु के अंदर बढ़
0: जी
1: जाती
0: हाँ
1: है।
2: सर, हमें तो जिससे बेनिफिट मिलेगा हम उसी को खाएंगे फिर।
1: अच्छा,
2: जी सर।
1: तो और गर्मी के मौसम में पशुओं का कैसे ध्यान रखते हैं?
2: सर, गर्मी का जी हमारे उस पर जो है तिरपाल बांध दिया जाता है,
1: अच्छा।
2: बाकी सुबह शाम नहला दिया जाता है। मतलब ये उसकी पंखे भी लगे हुए हैं इसी ये आसपास, जब भी कभी भी कोई जानवर आता है या कुछ भी होता है तो नहला देते हैं।
1: बिल्कुल होना भी ये चाहिए। और साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है,
0: साफ
1: कैसे साफ
0: सफाई
1: सफाई
0: के
1: का?
0: समर्थन आजकल तो वही समर्थन धुलाई भी हो गई इससे, अब ऐसे भी नागे साफ डेली बिल्कुल क्लियर रहती है।
1: अच्छा, दूसरा ये है कि जो जिस जगह पशु हमारे बंधे हुए होते हैं
0: जी सर
1: उनके नीचे गंदगी ना रहे और सूखा रहे, जगह जगह देखते हैं
0: वो
1: उसमें।
0: सर जब समर थे भी चलता है धुलाई हो जाती है तो उसके बाद जब
2: सर
0: सूखता तो
2: देखिए,
0: सब
2: ऐसा होता
0: साफ
2: है
0: रहता।
2: जो
0: अच्छा
2: गोबर जो
0: हाँ
2: होता है ना उसका, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, वहां से ट्राली आती है वो लेके
1: अच्छा
2: चली जाती है। बाकी साफ सफाई तो हम अपने समरसेबिल से खैर साफ करते हैं, पानी इतना नहीं बहाते उसमें साफ सफाई में, बट पहले गोबर हटा के थोड़ा साफ करके गोबर खुद ब खुद ले जाते हैं।
1: अच्छा, गोबर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे गोबर ज़्यादातर हमारे जो किसान साथी हैं
2: जी सर,
1: वो देसी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं,
2: जी
1: तो
2: जी
1: आपके यहाँ से क्या गोबर की कोई खाद बनाई जाती है क्या?
0: गोबर
1: सर
0: इकट्ठा होता है हमारा,
2: ट्राली
0: फिर
2: वाले ले
0: वहां से फिर
2: जाते
0: ट्राली
2: हैं,
0: वाले आते हैं वो ले जाते हैं,
2: वही
0: फिर
2: अपने अंडर में कहीं जहाँ ले जाके वहीं
0: वो
2: पे।
0: खेतों में बेचते हैं फिर
1: अच्छा,
0: सही।
1: आप मतलब जो है आपके द्वारा नहीं बिकता है गोबर?
0: हमारे
1: नहीं
0: द्वारा
1: सर,
0: नहीं,
1: आप।
0: हमारे पास सिर्फ ट्राली वाले आते हैं
1: अच्छा,
0: वो भर के ले आते हैं, वो अपने खेतों में कहीं बेचते हैं।
1: अब जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में पशुओं में कई तरीके की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है,
2: जी सर,
1: जैसे कि जो खुरपका है,
2: खुरपका,
1: मुंहका है, मुंहपका है, थनेला भी हो
2: खुरपका
1: जाता
2: रोग
1: है,
2: हो गया।
1: तो
2: हाँ
1: ये रोग ना हो तो इसके लिए क्या उपाय करते हैं आप?
2: सर, इसके लिए मेन चीज़ है साफ सुथराई, आप उसको साफ सुथराई रखिए, और एंटीबायोटिक कई जगह कुछ भी प्रॉब्लम है दवाई देते रहिए।
0: जैसे कोई भैंस भी लगी के तो तुरंत डॉक्टर को दिखा देते हैं।
1: अच्छा, मतलब जो है पशु चिकित्सा केंद्र होंगे
2: हाँ,
1: पास में बने हुए।
2: कोशिश करें कि हम खुद करें उसका, जब
1: अच्छा
2: हमें इतनी नॉलेज है, क्योंकि सर देखिए हमारा खानदानी पैसा है,
1: हाँ
2: हमें
1: बिल्कुल,
2: पता
1: अगर
2: है,
1: मान लो
2: तो
1: पहले
2: हमें
1: से।
2: इतनी नॉलेज हमारे बड़े दे देते हैं। हाँ,
1: हाँ
2: जहाँ लगता है ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रही है, हम दे नहीं पाते इसको, सही नहीं हो
0: जैसे कि
2: पाता है,
0: भैंस को डाउन
2: फिर
0: होती
2: डॉक्टर
0: है
2: को
0: तो
2: ज़्यादा
0: भैंस खाती
2: ही
0: ही
2: डाउन हो
0: नहीं,
2: जाता है मामला, तो डॉक्टर को दिखाते हैं।
1: होना तो यही चाहिए, क्योंकि समय समय पर हमारे जो डॉक्टरों की टीम घूमती रहती है
2: जी सर,
1: पशुओं की देखरेख के लिए,
2: जी
1: जैसे कि संक्रामक जो बीमारियां ना हो समय से टीकाकरण करा दें,
2: जी
1: तो इससे ये होता है कि समय रहते बीमारी
0: बिल्कुल
1: होने से पहले अगर हम उनका
2: बीमा,
1: ट्रीटमेंट सही से कर देते हैं, इलाज
2: जी
1: करा लें, तो बीमारी हो ही ना, और
2: जी सर,
1: जब पशु हमारे जब स्वस्थ होंगे तभी तो हमको उनसे उत्पादन
2: हाँ
1: मिलेगा। अच्छा, डेयरी पालन आप कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और भी कई तरीके के काम हैं कर
2: जी
1: रहे हैं पशुपालन करने से,
2: जी
1: जो
2: सर,
1: फायदे हैं, अब जैसे कि उनके बच्चे हैं तो अगर उनकी देखरेख ठीक ठाक रहेगी तो समय रहते जो है वो भी बड़े होकर
2: बेनिफिट मिलता है सर।
0: हाँ बेनिफिट मिलता है। उस पर
2: जो
0: उन्हें
2: हमारे
0: सूखी जगह चाहिए होती है, सूखी जगह चाहिए होती है, और लिमिट में दूध जैसे ज़्यादा नहीं ना ही कम हो, इस तरीके का दूध मिलता है शुरू शुरू में, फिर हल्के हल्के बच्चा खाने लगता है, फिर उसी हिसाब से दूध कम
2: ये
0: करते हैं
2: जिस
0: साथ साथ।
2: तरीके से आप देखभाल करेंगे उसकी,
1: बिल्कुल
2: वो कल को हमें बेनिफिट देके जाएगा।
1: जरूरी भी है ये। और
2: बहुत से लोग होते हैं कि जानवर के बच्चे को, भैंस के जो बच्चे होता है उसकी देखभाल नहीं करते, फेंक देते हैं, मर जाता है। आप जब उसको देखभाल सही से करेंगे, साफ सुथराई भी रखेंगे, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देके
0: जो होती
2: जाएगा।
0: है ना जैसे भैंस आती है दूर से, जैसे पंजाब से आती है दूर से आती है, तो भैंस वो बच्चा भूल जाती है, फिर वो डेयरी पे आके उसको लगाते हैं बच्चा लेती नहीं है,
1: अच्छा,
0: फिर उस बच्चों को दूध मिल नहीं पाता है, अगर हम सी से अलग से पिलाते हैं तो फिर बच्चा भेज नहीं पाता वो।
2: उसके लिए मैं एडवाइस देना चाहूँगा, जब हम साथ में लेके आते हैं ना, बहुत सी कोशिश होती है कि डायरेक्ट लेके आते हैं कि जल्दी पहुँच जाए हम रास्ते में, पर मेरा मानना है कि सीधा नहीं लेके आए, थोड़ा कहीं स्टॉपेज लें दो
1: अच्छा
2: तीन घंटे का, भैंस को दूध पिलवाएं, भैंस के बच्चों को, वहाँ पे भैंस आप काढ़े भी, भैंस को जानवरों को आराम भी मिलेगा, फिर उसको दोबारा रात के सीधा लेके आए। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट लेके आ जाते हैं।
1: अच्छा, ये जो है आप भैंस जो लेके आते हैं ये कहाँ कहाँ से आपको भैंस को
2: सर
1: खरीदते
2: ये तो
1: लाते हैं?
2: अपने

0: से आती है,
1: पंजाब, बिहार,
0: बिहार से आ रही है,
1: बिहार और जितने भी कुछ कुछ गांव
0: और
1: होते हैं।
0: आसपास गांव में बाजार है, नवाबगंज
1: अब तो
0: का,
1: इधर बजरी में
0: चुचेरा
1: बहुत से
0: का
1: लोग गुजरात से लेके आने लगे हैं, जाफरानी है, बड़े बड़े सिंगापुरी आने लगी, गुजरात से ही पैसे आने लगे।
2: अच्छा, दुधारू नस्ल की क्या पहचान होती है? जैसे कि भैंस जो दुधारू होती है उसकी क्या पहचान होती है, और अपने यहाँ क्या दुधारू नस्लें नहीं हैं?
0: हैं पर कम है।
2: अच्छा
1: सर देखिए, भैंसें आती वहाँ से
2: अच्छा
1: जो
2: सबसे ज्यादा जो दुधारू नस्ल की भैंस कहाँ मिलती है?
1: पंजाब,
2: अच्छा,
1: पंजाब
2: पंजाब
1: मिलती
2: में।
1: है, बस वहाँ की भैंस जो यहाँ के जो है थोड़ा रोज आती है,
0: क्योंकि
1: मतलब कम
0: इस
1: देती
0: तरह
1: है,
0: का जो
1: जो
0: वहाँ
1: वहाँ
0: पे
1: का
0: आराम
1: खान पीना
0: पीना
1: जो
0: खाना
1: होता
0: पीना
1: है
0: होता है वो
1: सुकून
0: यहाँ नहीं हो
1: है,
0: पाता,
1: वहाँ
0: वो
1: की
0: यहाँ नहीं हो पाता।
1: वातावरण है, वातावरण है, हरियाली है, पानी है,
0: अब यहाँ पे क्या,
1: सब।
0: डेयरी पे, बड़ी बड़ी डेयरी पे आके एक बार भैंस बन गई तो बनी रहती है बूटे पे वो।
2: क्योंकि अब एक तरीके से जो है पशुओं का घूमना फिरना भी बहुत
1: हाँ
2: जरूरी होता है। जैसे कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से
1: जी सर,
2: आपको और हमें, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान साथी हैं
1: जी,
2: वो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम के
1: जी
2: माध्यम से, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे वो पशुपालन करें और कैसे वो पशुपालन से लाभ उठाएं?
1: सर, मेरा मानना तो ये, पशुपालन अगर आप करें तो आउट ऑफ सिटी में करें ज़्यादातर, वहाँ पे जानवर को थोड़ा फ्री रहने दें,
0: ताकि उन्हें घूमने को मिले,
1: घूमना
0: कच्चे में
1: फिरना,
0: बैठे और
1: कच्चे
0: छत
1: में
0: पे
1: बैठे
0: पेड़ के
1: हैं,
0: नीचे।
1: उसका हमें बेनिफिट भी मिलेगा उन लोगों को, जो जितना हम चोकर जो शहर में खिलवाते हैं वहाँ पे आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर उनको वातावरण जो भी है सबका बेनिफिट मिलेगा। शहर में अगर 5 लीटर देगी तो आउट ऑफ सिटी में वो कम से कम एक्स्ट्रा देगी।
2: अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि गांव क्षेत्र के लोग और दिन पे दिन पशुपालन कम करते चले आ रहे
1: जी सर,
2: हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, और पशुपालन तो बहुत ज़रूरी
1: जी जी
2: है। अगर खेती बाड़ी हमारे गांव क्षेत्र के लोग कर रहे हैं
1: जी
2: तो उनके लिए तो पशुपालन बहुत ही ज़रूरी
0: बहुत
2: है,
0: ज़रूरी।
2: और बिना पशुपालन के खेती बाड़ी भी अधूरी मानी गई है।
1: इसके लिए भी सर मैं इतना कहना चाहूँगा, देखिए आज के टाइम में पशुपालन करना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, भैंस के काम में करने के लिए आज के टाइम में बहुत पैसा चाहिए। लोग 50 हज़ार 1 लाख में अपना काम बना लेते हैं, आज के टाइम में 1 लाख में एक भैंस आती है
2: वो
1: सही से।
0: भी 1 लाख रुपए
1: आप
0: भैंस।
1: उनको थोड़ी सरकार की तरफ से, मैं निवेदन करता हूँ सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत सब्सिडी मिले, बेनिफिट मिले, तो उनके थोड़ा हिम्मत भी करें वो।
2: और वैसे तो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जो केसीसी के माध्यम से काफी
1: हाँ,
2: सरकार
1: उसका
2: मदद
1: लाभ
2: कर रही
1: उठाना
2: है,
1: चाहिए।
2: मदद कर रही है, और हम तो यही चाहेंगे कि जो
1: जी
2: हमारे
1: सर,
2: ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो
1: हाँ,
2: केसीसी का लाभ उठाएं।
1: इसका लाभ उठाएं इन लोग
2: और इससे
1: को।
2: होता क्या है कि जैसे कि 3 लाख तक का लोन सरकार
1: जी सर,
2: मतलब पशुपालन के लिए और खेती बाड़ी के लिए देती है,
1: जी सर,
2: दूसरा ये है कि उसका ब्याज भी 4% का लगता
1: जी सर,
2: है, और 1.5 लाख तक का लोन लेने के लिए किसान को किसी गारंटर की भी ज़रूरत नहीं होती। तो समय रहते हमारे जो किसान साथी हैं वो केसीसी का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप लोगों ने भी अपने अनुभव बताए किसानों के लिए, और जागरूक करना चाहते हैं हम अपने किसान साथियों को कि समय रहते जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं
1: इसका लाभ उठाएं।
2: उनका भी लाभ उठाएं, और
1: जी
2: खेती
1: सर,
2: बाड़ी के साथ
1: जी
2: साथ
1: जी
2: पशुपालन अवश्य करें, और जब हमारे किसान साथी पशुपालन करेंगे खेती बाड़ी के साथ साथ तो उनको दोहरा मुनाफा मिलेगा।
1: पशुपालन में आप देखिए सर, मैं इतना कहना चाहूँगा अपने किसान साथियों से कि आप भैंसों के साथ साथ बकरी पालें, मुर्गा पालें। पशुपालन में जो आप देखते हैं भैंस से गोबर जो होता है ना, तो आप मुर्गा छोड़ देंगे वहाँ पे, मुर्गी के बच्चे तो वो खा के बहुत जल्दी बड़े होते हैं,
2: हाँ बिल्कुल सही बात है,
1: साथ में
2: क्योंकि
1: इसका बेनिफिट भी है, जो बकरी होती हैं तो वो उनका झूठा होती है वो खाती हैं।
2: बिल्कुल, और यही है, यही यही हम अपने किसान साथियों को सुझाव देना चाहते हैं कि
1: इसके
2: यही तो
1: साथ साथ
2: है
1: हम दो बिजनेस भी कर सकते हैं,
2: खेती
1: बकरी भी पाल
2: बाड़ी
1: सकते
2: के
1: हैं,
2: साथ
1: खेती
2: साथ
1: बाड़ी
2: अन्य
1: सब कुछ।
2: व्यवसाय करने का
1: जी
2: यही
1: सर,
2: फायदा है
1: जी,
2: इस कार्यक्रम के माध्यम से। मोहम्मद
1: चलिए
2: एहसान और आस
1: मोहम्मद
2: मोहम्मद जी,
1: आसम, जी सर,
2: आपने डेयरी पालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जरूर पसंद आया होगा। और भैया देखिए, समय की एक सीमा होती है रघु भैया, तो धीरे धीरे समय समाप्ति की ओर है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे कार्यक्रम में शेष रह गई हैं। पहले जो हमने सवाल पूछा है उसका जवाब आप बता दीजिएगा।
1: तो भैया देखो, आज को जो हमारो सवाल हो वो हो, पशुओं में सर्रा रोग किस कारण होता है? तो भैया जाको जो जवाब है वो है हार्स फ्लाई, यानी कि हमारे गांव में कहते हैं मक्खा,
0: हाँ,
1: के पशुओं का खून चूसने के कारण होता है।
0: और
1: जा मक्खी जो है वो मक्खा ही कहते हैं गांव में अपने, तो जा अगर पशु उनको खून चूस ले तो उन्हें सर्रा रोग हो जाता है।
0: इस सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब जो है वो प्रवीण चौहान, सचिन कुमार और जमुना प्रसाद ने दिया है। और
1: और देखो धारा भैया।

0: प्रसाद ने दिया है। और
1: और देखो धारा भैया, अब बात कर रहे हैं कि बरसात को मौसम शुरू ही हो गया, चौमासे हैं, ऐसे में कहा है कि जो सर्रा रोग है, जासे भी हमें अपने पशुओं को बचाने हैं। दूसरी बात क्या है कि ऐसे में और ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है अपने पशुओं की, क्योंकि संक्रामक जो बीमारियां हैं वे जासे में खूब फैलती हैं।
0: हमारे जो पशु हैं, अगर शाम के समय वो चर के आ रहे हैं तो देखा होगा कि कुछ कीचड़ है उसमें अंधे होते हैं, पूंछ से भी जो है वो उनके शरीर पे जो है छींटे पहुंच जाते हैं, और ऐसे में जो डांस मक्खी है वो उनके शरीर पर चिपट जाती है और उनका खून चूसती रहती है। तो
1: बिल्कुल
0: हम लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम पशुशाला में पशुओं को ले जाएं, है ना, तो नहलाए के तब अंदर बांधें। और अब तो भैया देखो पानी की कोई दिक्कत किसी को है ही ना, कि मोटर चलाई और भैया अपने पशुओं को नहलाओ और फिर आगे को काम शुरू करो, क्योंकि दूध दुहेंगे तो भैया हमारे लिए साफ सफाई करके अपने पशुओं को दूध निकालने हैं, उनके चारे की बिल्कुल सही अच्छी तरीका से व्यवस्था करके तब हम उनको सही से ध्यान रख सकते हैं।
1: दूसरी बात जो है कि अब बरसात को सीजन है भैया, तो बरसात में क्या करते हैं हमारे भैया, जो चारा अपनो भंडारण करू है हमारे भैया बहन ने, तो एक बात तो खास करके ध्यान रखने हैं कि बामे जो है नमी को असर ना हो, ना तो फफूंदी आ जाती है और जो चारा है वो दूषित हो जाता है। और ऐसे में जब हम दूषित चारा अपने पशुओं को खवावेंगे तो एक तो उनके दुग्ध उत्पादन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, दूसरी बात जाए कि हमारे पशु बीमार हो जाएंगे।
0: हाँ भैया, इस बात को तो ध्यान अवश्य रखने ही रखने हैं, क्योंकि बहुत से किसान हैं जो इस समय हरे चारे की व्यवस्था न कर पाने के कारण सूखो चारों भी अपने पशुओं को देते हैं, और जो साइलेज के माध्यम से जो चारा तैयार करके रखो जाता है वो चारों भी जो है उनके लिए देते हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है कि अगर हरे चारे की व्यवस्था हो रही है इस समय तो भैया उसको इस्तेमाल करें, और जो संतुलित पशु आहार है उसको अगर अपने पशुओं को देंगे तो अच्छो दूध देंगे और उनको स्वास्थ्य भी सही सलामत बनो रहेगा। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात रघु भैया अपने भैया बहन से कहना चाहेंगे कि जो नवजात पशु हैं उनको हमारे लिए विशेष कर ध्यान रखने हैं, कारण उसको जो है कि वे तो नवजात हैं और वो धीरे धीरे दूध पी के या फिर चारा खा के वो बड़े होंगे और आगे बड़े होकर के ही हमारे लिए वो पशुधन के रूप में काम आवेंगे।
1: बिल्कुल दारा भैया, है कहा कि हमारे जो भैया हैं बड़े सीधे कह लो या कैसे कह लो, क्या करते हैं कि उन पर हरो चारो बहो तो हरो चारो सरकाय दो भैंसिया के आगे, सूखो बहो तो सूखो। अब उन्हें जो समझन की जरूरत है कि दोनों को मिला के दें, संतुलित आहार जो अब आप कह रहे हैं, तो और ऐसे में संतुलित आहार अब जैसे खा रहा है चावल लाई लटा की सरस है खा रहा है, मूंगफली के दाने की खा रहा है, तो बामे कहा है कि उन्हों को मिला में, और खनिज लवण जो हैं उनकी मात्रा को बहुत ध्यान रखने हैं चारा में, अगर अच्छो उत्पादन अपने पशुओं से लेने हैं।
0: और साथ ही साथ ये ध्यान भी रखने, क्योंकि हमारे पशु जो है ना वो बेजुबान है, कुछ हमें बता तो सकते ना है, हमें सिर्फ और उनके हाव भाव को देख के ही उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने हैं। अगर हमारे पशु का शरीर कम ठंडा है या अधिक गर्म है ना, या उनके कान में थोड़ी ज़्यादा गर्माहट है या ठंडूपन है, या चारों सही से वे ना खा रहे हैं, है ना, कुछ जुगाली ना कर रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान हमारे लिए रखने ही रखने हैं, क्योंकि गला घोटू है, खुरपका है, मुंह पका है, ये बीमारियां भी जो हैं वो इन दिनों ज़्यादा पनपने लगती हैं। इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रह के जरूर अपने इस सब बातों की ध्यान रखना चाहिए।
1: तो भैया हमारे ध्यान रखेंगे, और अब हम बता दे रहे हैं अपने भैयन को आज के कार्यक्रम की नसीहत। तो हमारी जो नसीहत है कि किसान भैया खेती तो करें मगर खेती के संग संग पशुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी।
0: बिल्कुल सही है। और अब देखो अधिक समय ना बचो है, आज के कार्यक्रम किसान मणि से इसी वादे के साथ के कुछ और जानकारियों को लेकर हम हाजिर होंगे और महत्वपूर्ण बातें करेंगे अपने भैया धारा
1: और अपने भैया रघु को देव अनुमति। भैया बहनों राम
0: राम राम।
1: राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 7 बज रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत के अंतर्गत कृषि पाठशाला का भाग संख्या 10।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
1: किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों कृषि पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की कृषि पाठशाला में हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर सुमन सेन जी। आप वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एग्रोनॉमी विभाग IVRI इज्जत नगर बरेली से और आज बातचीत का विषय है साइलेज और हे के द्वारा चारा संरक्षण। जब विषय पर आप जानकारी देंगे और आज जब विषय पर आपसे सवाल पूछने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री विजयपाल जी जो ग्राम दुसास मीरगंज बरेली से। विजयपाल जी देखो डॉक्टर साहब आपके साथ में ही हैं और आप पशु भी पालते हो चारा भी करते हो किस तरीका से पशुओं को चारों खिलाना चाहिए और मेन बात आती है कि चारों को हम संरक्षण कैसे करके कराएं क्या कराएं कैसे करके देखभाल कराएं कैसे करके चारों बनावा। तो आप सवाल पूछो का सवाल है पहलू आप
2: डॉक्टर साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज आप हमें राय देने आए। हम तो यही मतलब जो सुनने को भी तो बहुत दिनों से मतलब चाह रहे थे कि हमें जानकारी मिले, तो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि चारा संरक्षण क्यों जरूरी है और क्या फायदे हैं।
1: बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर साहब इनको है कि चारा संरक्षण क्यों जरूरी है और कहाँ कहाँ जाके फायदे
3: हैं। पशुपालन के लिए चारे का महत्व जो है वो हम सबको पता है, लेकिन साल में दो ऐसा टाइम आता है जब चारा अवेलेबल नहीं होता
2: जी।
3: एक तो होता है आपका अप्रैल से जून तक
2: जी
3: और होता है नवंबर दिसंबर तक
2: जी।
3: ये जो 4-5 महीना टाइम होता है आपको कोई चारा मिलता नहीं है और उसी के साथ आपको सिर्फ या तो पुआल नहीं तो सूखा चारा
2: या सूखा चारा ज्यादातर मिलता है,
3: उस पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है इस टाइम पे देखिएगा कि जो दुग्ध प्रोडक्शन है जो मिल्क प्रोडक्शन है वो एकदम घट जाता है
2: जी।
3: इसीलिए जो बरसात के टाइम पे जो एक्स्ट्रा चारा हम उगाते हैं
2: जी
3: तब चारा एक्स्ट्रा होता है
2: जी,
3: और सर्दी में आपका फरवरी मार्च में जो एक्स्ट्रा चारा होता है
2: जी
3: उसको हम संरक्षण कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए
2: जी।
3: हाँ, तो इससे क्या होगा अगर हम इसको संरक्षण कर ले उसको किसी तरीके से उसको अच्छे से बचा ले तो अगले आपका जो 2 महीना जो चारा खेत में कम होता है
2: जी
3: वो उस चारा से आपका पूर्ति हो जाएगा, तो आपका जो जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें कोई कटौती नहीं होगी। इसलिए चारा संरक्षण जरूरी है
2: जी।
3: और इसका फायदा यही है कि आपका मिल्क प्रोडक्शन घटेगा नहीं, पूरा साल ठीक ठाक चलता रहेगा और आपका जो पशुपालन जो है वो काफी टिकाऊ और लाभदायक रहेगा
2: जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है। फिर एक बात और बताइए किस किस प्रकार से हम चारा संरक्षण कर सकते हैं।
3: देखिए मुख्यतः 2 प्रकार है
2: जी।
3: एक होता है हम बनाते हैं साइलेज
2: जी
3: और बनाते हैं हे
2: जी।
3: साइलेज ये होता है कि जो आप किसी भी सब्जी या फल होता है जो उसका मुझे अचार बना देते हैं तो वो एकदम कभी कभी 1 साल चला जाता है, हम 6 महीने तक रख सकते हैं। वैसे ही हम चारे का वो अचार बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं जो चारा जो उसको अधिक नमी होता है उसको हम वायुरोधी कंडीशन में किसी तरीके से हवा जल ना जाए उसी कंडीशन में उसको संरक्षण करते हैं और उसका उसमें एक लैक्टिक अम्ल बनता है। वो किसी भी तरीके से जो सूक्ष्म परजीवी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया जो उसको खराब कर देते हैं
2: जी,
3: जो फफूंदी लग जाता है वो नहीं लगता।
1: हम पूछना चाहेंगे आप दोनों लोगों को रोक कर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम अचार बनाते हैं साइल मतलब
3: चारे का
1: तो जो कैसे करें बनाते जागो का मतलब है
2: डॉक्टर साहब इसे रोकेंगे कैसे हम इतने दिनों तक।
3: अच्छा हाँ
2: इतने दिनों तक क्या क्या सुविधा हमें देनी पड़ेगी उसमें।
3: देखिए इसके लिए तो आपको पहले सबसे पहले आप कैसे बनाएंगे जो आपने पूछा
1: जी, जी
3: तो उसका पहले सबसे पहले चयन करना पड़ेगा हमें फसल कौन सा उगाना है चाहिए। इसके लिए 2-3 टाइप का फसल है जैसे आपका मक्का
2: जी,
3: ज्वार
2: जी,
3: बाजरा जई और अच्छा। कुछ नेपियर घास आता है
2: जी,
3: रोड घास आता है ये सब घास आता है, लेकिन अगर आप

0: देखेंगे साइलेज कौन सा बनाना है, तो सबसे बढ़िया जो फसल है वो है मक्का।
1: अच्छा
0: बाकी से भी अच्छा बनता है लेकिन ये सबसे बेस्ट है।
1: अच्छा
0: और इसको आप जैसे ही इसका उसका पुष्प अवस्था हो, मतलब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब उसका बाली आना स्टार्ट हो जाए,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: हार्वेस्ट करना है और खेत में एक दिन के आसपास रख लेना है, क्योंकि उसमें 70-80% मॉइस्चर है, नमी रहता है फसल
1: अच्छा
0: में, उसको
1: हाँ
0: घटा के आपको 60 से 70% लाना है। फिर
1: अच्छा
0: उसको उसका कुट्टी काटना है, एक
1: जी
0: इंच, दो से
1: अच्छा
0: 3 सेंटीमीटर, मतलब एक एक इंच का।
1: जी जी
0: उसके बाद आपको कुछ गड्ढा बनाना है, वो
1: अच्छा
0: गड्ढा दो प्रकार का होता
1: मिट्टी
0: है,
1: का
0: दो प्रकार का है, मिट्टी का भी होता है, उसको हम
1: अच्छा
0: कच्चा सैलो बोलते हैं, तो
1: अच्छा
0: कच्चा गड्ढे और पक्का। कच्चे में क्या होता है, अगर कच्चा है तो आप उसमें चारा उसमें भरेंगे तो क्या मिट्टी के साथ वो उसका
1: हाँ
0: संस्पर्श में आ जाएगा,
1: हाँ खराब
0: फिर
1: हो
0: वो
1: जाएगा
0: खराब हो जाएगा। इसीलिए
1: जी
0: अगर आपका कच्चा गड्ढा है तो आपको पॉलीथीन से चारों तरफ पॉलीथीन और नीचे पॉलीथीन बिछा दीजिए।
1: जी
0: अगर आप चाहते हैं कि हम हर साल बनाएंगे
1: जी
0: तो आप परमानेंट बनाइए
1: हाँ
0: उसको, उनको
1: परमानेंट
0: हाँ
1: ईंटों
0: उसको
1: से बना देंगे
0: हाँ
1: हम
0: ईंटों से बनाते हैं, उसके बाद वो कंक्रीट से या सीमेंट से उसका लाइनिंग कर देते हैं, मतलब उसका प्लास्टर
1: जी जी
0: जैसे कर
1: प्लास्टर
0: देते
1: हो
0: हैं, तो
1: जाएगा
0: इसको हम बोलते हैं पक्का साइलो। ठीक है, तो उसका साइज भी होता है। मान लीजिए कि आपके पास 5 से 10 एनिमल्स है,
1: जी
0: ठीक है, तो उसी हिसाब से आप हम बोलते हैं कि वर्ग मीटर की, अगर आपके पास 1 वर्ग मीटर बना ले, मतलब उसका 1 मीटर गहरा, एक
1: जी
0: मीटर चौड़ा
1: एक
0: और
1: मीटर
0: एक मीटर
1: चौड़ा
0: लंबाई,
1: जी
0: तो एक एक वर्ग मीटर हो गया, तो
1: जी
0: 1 वर्ग मीटर में आप 600 से 700 kg चारा उसमें एकदम
1: अच्छे से बना
0: अच्छे से
1: सकते हैं
0: पैक्ड चारा बनता है। तो अगर आप आपके पास मान लीजिए कि अगले 2 महीने चारा नहीं है,
1: जी
0: नहीं रहेगा, मतलब
1: जी
0: मान लीजिए कि अप्रैल से लेके मई या जून के मीट तक आपके पास चारा कम होगा,
1: हाँ कम हो
0: तो
1: जाता है
0: आप
1: फिर
0: फेब्रुआरी में बना लीजिए, क्योंकि
1: जी
0: 2 महीने बनने में लगता है, जैसे
1: हाँ
0: आपका अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा आपका वो चारा रेडी हो जाएगा।
1: हाँ
0: तो अगर आपके पास 5 एनिमल्स है और आपने एक 200 वर्ग मीटर का बना लीजिए, 200 वर्ग फुट का, मतलब 8 मीटर चौड़ा,
1: जी
0: इसे 8 फुट चौड़ा,
1: जी
0: 5 फीट, सॉरी इसका ये होगा कि लंबाई में 8 फीट,
1: जी
0: चौड़ाई में 5 फीट और गहराई 5 फीट,
1: अच्छा
0: तो
1: जी
0: ये हो गया आपका 200 क्यूबिक फीट।
1: जी
0: तो इसमें आपका लगभग अगर 4-5 एनिमल्स है उसको आप 2 महीने तक इतना चारा उसमें पैक हो जाएगा, बन जाएगा कि अगले 2 महीने तक हर रोज हर एनिमल को 20 किलो,
1: जी पूर्ति हो जाएगी हमारी।
0: 20 किलो अगर एक एक एनिमल के दे देंगे तो अगले 2 महीने तक चारा खिला सकते हैं
1: अच्छा, तो
0: जैसे
1: उस
0: सर।
1: गड्ढे में चारा एडवांस रखना पड़ेगा
0: हाँ
1: हाँ दो
0: अगर
1: महीने
0: है
1: पहले।
0: हाँ
1: तो
0: दो दो
1: एक
0: महीने
1: है
0: पहले बना कर रखना पड़ेगा।
1: कि
0: आपका जनवरी फेब्रुआरी मार्च इसमें भरपूर चारा होता है,
1: जी
0: खासकर जई हो गया, और
1: हाँ
0: अगर आप बरसात में आपका मक्का लगाते हैं तो आपका सितंबर में बहुत, हाँ अगस्त सितंबर में आपका बहुत, जैसे अभी मक्का
1: जी
0: बहुत है
1: हाँ मक्का
0: ना,
1: इस
0: तो
1: समय तो
0: आपका
1: काफी है।
0: अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चारा कम होगा, तो उसका 2 महीने पहले मक्का काट लीजिए,
1: हाँ जी
0: काट के एक एक इंच का उसका कुट्टी काट के उसको जो गड्ढा आपने बनाया है
1: जी
0: उसको पहले 1 फीट भरिए,
1: हाँ
0: 1 फीट भरने के बाद उसमें एक तो ट्रैक्टर चलाइए, नहीं तो कोई भी रोलर से उसको एकदम कॉम्पैक्ट कर दीजिए कि उसमें किसी भी तरीके का हवा ना रहे।
1: अच्छा
0: उसके बाद उसमें अगर 1 से 2% जो शीरा मिलता है,
1: जी
0: शीरा मतलब जो मीठा
1: हाँ
0: है,
1: शीरा होता
0: अगर
1: है
0: हाँ
1: मिठाई
0: तो
1: वाला
0: 1 से 2% मतलब आपका अगर 100 100 किलो चारा है
1: जी।
0: तो 1 से 2 किलो पड़ेगा, मतलब
1: शीरा
0: एक
1: अच्छा
0: क्विंटल में
1: शीरा
0: एक से दो किलो
1: अच्छा शीरा छिलकने हैं उस पर।
0: छिड़कना है। अगर शीरा
1: अच्छा
0: नहीं मिले तो
1: हाँ
0: आपका गुड़,
1: जी
0: जो लो
1: गुड़
0: क्वालिटी का लो ग्रेड गुड़ आता है
1: जी
0: उसको पानी
1: जी
0: में घोल के,
1: अच्छा
0: हाँ उसके पर क्विंटल के हिसाब से 4 से 5 किलो गुड़ पड़ेगा,
1: अच्छा
0: और कुछ अनाज के दाना पड़ेगा चार
1: अच्छा
0: पाँच किलो पर क्विंटल के हिसाब से,
1: अच्छा
0: और पर क्विंटल के हिसाब से 1 से 2 किलो आपका नमक पड़ेगा,
1: अच्छा
0: हाँ या तो शीरा
1: हाँ
0: नहीं तो आपका
1: मतलब गुड़
0: गुड़, हाँ
1: हाँ
0: अनाज के दाना,
1: जी
0: और 1 2 किलो पर क्विंटल के हिसाब से नमक, उसको अच्छे से छिड़काव कीजिए,
1: जी
0: छिड़काव करके फिर 1 फीट भरिए,
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा
0: फिर उसके बाद सेम एक एक फीट
1: अच्छा
0: भरना है, उसको अच्छे से पैक करना है कि हवा निकल जाए, उसके
1: जी
0: बाद फिर नमक या शीरा या गुड़ छिड़कना है,
1: अच्छा फिर से
0: हाँ
1: वही वही
0: हाँ
1: तरीका
0: वही तरीका।
1: अपनाने हैं।
0: अगर आपका पाँच
1: अच्छा
0: फीट है,
1: जी
0: 5 फीट का
1: जी
0: गड्ढा का
1: जी
0: गहराई है,
1: जी
0: तो 6 फीट तक भरिए उसको,
1: अच्छा
0: ठीक है,
1: जी
0: उसके बाद जैसे भर गए उसके
1: हाँ
0: ऊपर एक पॉलीथीन से उसको ढक दीजिए, उसके ऊपर 1 फीट तक पॉलीथिन के ऊपर मिट्टी से पूरा लीप दीजिए, लेप दीजिए पूरा,
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल सांस नहीं होने
0: हाँ
1: उद्योग
0: कि
1: को बंद
0: अंदर
1: रहना चाहिए,
0: अंदर से
1: हवा नहीं आना
0: हवा ना
1: चाहिए
0: जाए
1: जी।
0: और अंदर कोई से पानी ना जाए,
1: अच्छा
0: उसको ऐसे रख दीजिए। रखने के बाद क्या होगा, जो 1 फीट हमने एक्स्ट्रा भरा, पाँच
1: जी
0: छः फीट वो
1: जी
0: धीरे धीरे हवा तो कुछ तो रह
1: जी
0: जाएगा, वो
1: हाँ
0: धीरे धीरे नीचे
1: नीचे बराबर आ
0: हाँ बराबर आ
1: जाएगा।
0: जाएगा, घटता जाएगा, एकदम
1: अच्छा
0: लेवल आ जाएगा।
1: अच्छा
0: तो ऐसे आप पैक करके रख देंगे,
1: जी
0: 60 से 90 दिन में ये चारा आपका रेडी हो जाएगा।
1: अच्छा
0: चलो
1: तो हम उसको जानवर को चारे के रूप में खिलाएंगे।

0: ये अचार के रूप में खिलाएंगे।
1: ये अगर एकदम चारा हरा चारा नहीं है
0: जी,
1: तो एक जैसे एक एनिमल को अगर उसका एक दिन में 25 से 30 किलो हरा चारा पड़ता है
0: जी
1: हम देते हैं, तो आप 20 से 25 किलो सिर्फ साइलेज खिला सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब का मानना यह है कि जैसे भूसा है, प्याल है, उसमें मिलाकर हम
1: खिला सकते हैं। लेकिन अगर कोई जानवर है, पशु है
2: जी,
1: वो अपने लाइफ में कभी इसका पहले साइलेज नहीं खाया
2: जी,
1: साइलेज से क्या ना, जैसे विनीगर होता है मार्केट में मिलता है, विनीगर का जैसे लैक्टिक एसिड बनता है वो तो यह है, तो उसमें एक विनीगर जैसे स्मेल आता है, तो क्या होगा पहले 2-3 दिन पशु से खाएगा
2: देखेगा क्या है,
1: उसको मतलब उस प्रेफर नहीं करेगा उसको। तो इसलिए क्या है, पहले आपको 5-5 किलो जैसे 10 किलो सूखा चारा दिया, 5 किलो 2 किलो करके थोड़ा उसका आदत डाल दीजिए,
2: थोड़ा आदत
1: बनाने पड़ेगी, आदत पड़ गया फिर वो पूरा साइलेज ही खाए, वो एनिमल खाएगा। और ये थोड़ा मीठा होता है, उसका पौष्टिक जो गुण है वो भी अच्छा होता है, इसीलिए थोड़ा बाद में प्रेफरेंस उसका जो अच्छा हो जाएगा, लेकिन पहले उसको थोड़ा आदत डालवाना पड़ेगा
0: जी। उसमें जय है कि भाई थोड़ी बहुत महक आ गई जाना है,
2: महक तो मारेगी साहब।
0: तो वो महक के लिए अपने थोड़ा बहुत हरो चारो या सूखो चारो मिला के जानो आदत डाल दो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरीका से आपने बताई कि हम जो अचार है, सीधी भाषा में कहते हैं पशुओं के लिए अचार
2: जी,
0: जो आप साइलेज को नाम दे रहे हैं वो सीधे सीधे हम तो आम भाषा में कहेंगे वो एक प्रकार को अचार है, जैसे हम अपने लिए अचार डाल लेते हैं ऐसे पशुओं के लिए वो अचार है। किस तरीका से डालो जाए, कैसे करके उसको रखरखाव करो जाए, कैसे करके बनाओ जाए और कैसे करके पशुओं को खवाओ जाए, जो शुरू में बातचीत करी हमने विषय के बारे में बताई आपसे, वो बात ही हमारी कि चारा संरक्षण साइलेज और हे
2: जी
0: ज्यादा ही की साइलेज की बात
2: जी।
0: और बहुत अच्छी तरीका से आपने बताई कि साइलेज कैसे करके बनाओ जाता है, कौन कौन सी फसल वामा आती है, कौन कौन से चारे वामा ले सकते हैं, कैसे बनाओ जाता है। और बीरपाल भैया अब आप सवाल पूछ लो डॉक्टर साहब से अगलो
1: जी। हे वही है कि सूखा चारा
2: जी,
1: इसमें थोड़ा हमारा चारा सुखाने के तरीका अलग है, जो हमारे पुआल होता है, पराली होता है, देखिएगा वो ब्राउन भूरा कलर का होता है
2: जी,
1: वो क्योंकि वो धूप में सूख गया है, धीरे धीरे सूखा है
2: जी,
1: उसमें पौष्टिक जो गुण वो भी कम होता है,
2: कम
1: हो जाता है। ये होता है जो हमारा हरा चारा है उसमें जो नमी 70-80% नमी है, उसको हम काट के
2: जी
1: एकदम जब धूप अच्छे तरीके से धूप है, आसमान साफ है, उस कंडीशन में एकदम तुरंत क्विकली उसको सुखा लेते हैं कि उसका हरापन जो है वो बचा रहे
2: जी,
1: और उसका पौष्टिक गुण जो है वो भी बचा रहे, लेकिन जिसका मॉइस्चर जो कंटेंट है, उसका नमी है
2: जी,
1: वो 10-15% पे आ जाए।
2: अच्छा।
1: उसको बहुत जल्दी करना है
2: जी,
1: अगर धीरे धीरे सुखाएंगे तो उसमें भूरापन आ जाएगा, काला पड़ जाएगा, अगर बहुत जल्दी सुखा लेंगे 3-4 दिन में
2: जी,
1: तो वो आपका वो हरा रहेगा, एकदम ग्रीन कंडीशन में रहेगा
2: जी,
1: एकदम हरा चारा जैसे ही रहेगा, लेकिन नमी एकदम कम रहेगा 10-15%। तो मतलब अगर 10-15% नमी है उसको आप 3-4 महीने तक भी कहीं पे भी रख सकते हैं।
2: जैसे डॉक्टर साहब हम धान काटते हैं
1: ऐसे ही
2: तो धान जो है पतला पतला अगर डालें तो बहुत अच्छा सूखता है।
1: हे बनाने का सबसे उपयुक्त उत्तर भारत में
2: जी
1: सबसे उपयुक्त समय है मार्च अप्रैल का महीना, इस टाइम पे बारिश कम होता है
2: जी,
1: बहुत धूप रहता है
2: जी,
1: और कोई भी चीज एकदम जल्दी सूख जाता है
2: जी।
1: तो इसीलिए जब जई आपका लोबिया
2: ज्यादातर जई होते हैं,
1: बरसीम, लूसन, ये सब हे बनाने के लिए अच्छा है।
2: अच्छा।
1: सबसे अगर दलहनी फसल में लूसन सबसे बढ़िया है।
2: अच्छा।
1: और अनाज फसल में जई ये सबसे हे बनाने के लिए सबसे बढ़िया है
2: जी।
1: और आप जो हमारा बरसाती का जो फसल है वो भी आप कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, जैसे आपका मक्का हो गया, ज्वार बाजरा, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कभी कभी धूप का उतना अच्छा धूप नहीं रहता, कभी कभी हो सकता है कि बारिश हो जाए, क्लाउड आ जाए तो खराब हो सकता है। तो
0: जब विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी और पूरी विस्तार से आपने बताओ कि किस तरीका से साइलेज बनाए, किस तरीका से हे बनाए, यानी कहने का मतलब जो है कि आपने बहुत अच्छी तरीका से सीधे सीधे शब्दन में बता दी कि जैसे हम अपने अचार बनाते हैं वैसे हमारे किसान भैया अपने जानवरों के लिए किस तरह से अचार रूपी जो चारा है वो बनावा और वहां से जानवरों को क्या क्या फायदे होते हैं, और हमारे किसान भैया बहुत फायदे हैं क्योंकि जिस समय चारों ना मिलते तो उस समय साइलेज जो है बहुत ज्यादा उपयोगी चीज
2: जी, बहुत दिक्कत आती है।
0: विजय पाल जी आपने भी बहुत अच्छे सवाल डॉक्टर साहब से किए, आप दोनों लोग स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, आप स्टूडियो में आए, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम कृषि पाठशाला। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन प्रोग्राम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 18 जुलाई 2026 को शाम को 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 शाम को 4 बजे से। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581-251-200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियोज में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लीजिए। विषय है प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। शंकाएं व समाधान रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 यानी कि कल शाम को 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581-251-200। सूचना समाप्त हो रही। श्रोताओं आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। ग्राम भूड़ा ब्रह्मपुरा थाना बहेड़ी जिला बरेली से नंदलाल पुत्र नारायण लाल सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी राजकुमारी दिनांक 17/5/2026 से गुमशुदा हैं। इनकी उम्र करीब 20 वर्ष है। कद 5 फुट 2 इंच, इकहरा मजबूत जिस्म, रंग सांवला, आंखों का रंग काला, बालों का रंग काला, ये साड़ी पहने हुए हैं। जिस किसी को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो वो कृपया इस पते पर सूचित करें। गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बरेली उत्तर प्रदेश। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा को 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से करेंगे। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होगी, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन समेत 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों के बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने समेत कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज वाराणसी में विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और प्रदेश के ग्राम विकास विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा।
1: विकसित भारत जी राम जी है, इसमें पीएम गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है। जो सड़क पहले लोग बनाते थे, गांव की कच्ची बनावे चाहे पक्की बनावे, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। पीएम गति शक्ति का मतलब है कि अगर आपने गाँव के हर घर तक आप आवागमन और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़ेगा।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है।
2: विकसित भारत जी राम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में एक घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम। अपने गाँव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं, ये आपके ऊपर है।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने आज एंटी करप्शन कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 1 हफ्ते की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर कल सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर आज सुबह लगभग 1 घंटे दोनों से पूछताछ भी की। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें।

0: ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरेल आरक्षित वन में देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक आवेदन पर कल ये आदेश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को नाइट सफारी का काम शुरू करने से पहले विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने और अनुमतियां प्राप्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने बताया कि नाइट सफारी राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी श्रद्धालुओं ने रथ यात्राएं निकाली। वाराणसी में 3 दिवसीय ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले का आज शुभारंभ हो गया है। आज भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती में भाग लेकर सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। हापुड़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा से सुशोभित रथ को श्रद्धालुओं ने बारी बारी से खींचा। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती गई और ड्रोन कैमरे की मदद से रथ यात्रा पर निगरानी रखी गई। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया रूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
3: पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जलस्तर इसी तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जलस्तर की सूचना दे दी जाएगी।
0: मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में

आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन, उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा को पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो रहे हैं और आइए सुनते हैं अब रेडियो हेल्पलाइन।
2: हमारा मोबाइल नंबर
3: के प्रायोजक दीपमाला हॉस्पिटल निकट टेलीफोन एक्सचेंज चौपला बरेली।
4: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
3: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
4: बरेली शहर का सबसे किफायती ICU अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन ICU
5: दीपमाला हॉस्पिटल निकट टेलीफोन एक्सचेंज चौपला बरेली।
4: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
4: 9837000048।
6: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ स्टूडियो में आज एक बार फिर मौजूद हैं दीपमाला अस्पताल बरेली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
7: थैंक यू सो मच।
6: और डॉक्टर साहब आज हमने विषय रखा है दुर्घटना में घायल मरीज और उसका इलाज।
7: जी,
6: जो शंकाएं हमारे श्रोताओं की उनके समाधान भी आपसे जरूर चाहेंगे और विस्तार से जानकारी भी हम चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को मिल जाए। इसी बीच एक कॉल आ रही है हमारे फोन पर, देखते हैं कौन श्रोता है, क्या जानना चाहते हैं। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
8: हेलो डॉक्टर साहब।
7: नमस्कार
8: जी। डॉक्टर साहब हम इधर से बोल रहे हैं, मीरगंज से।
7: जी बताइए साहब।
8: बबलू नाम है हमारा।
7: ठीक है
8: डॉक्टर साहब, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आज का जो विषय है दुर्घटना में घायल मरीज।
7: जी।
8: तो जैसे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लो हम वहाँ से गुजर रहे हैं।
7: हाँ।
8: तो जैसे दुर्घटना हो गई, चोट लग गई किसी की, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए उस स्थिति में?
7: उस स्थिति में सबसे पहले तो देखना होता है कि आसपास अपनी सुरक्षा का भी, आप दुर्घटना हुई है तो सबसे पहले वहाँ के चारों तरफ अपनी सेफ्टी देखनी है, साथ में जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है या कुछ कई लोगों की दुर्घटना ही, तो उनकी भी सेफ्टी देखनी है। तो सबसे पहला काम है कि देखो वहां पे जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है, जैसे कोई गाड़ियां कई लड़ रही हैं, तो खुद को पहले बचाना है। अर्थक्वेक आया तो देखनी पड़ती, कोई बिल्डिंग्स तो नहीं गिर रही, तो सबसे पहले सेफ्टी देखनी है। उसके बाद हमें मरीज या जो भी जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसकी सेफ्टी देखनी है और उसी समय इमीडिएटली इमरजेंसी नंबर्स हैं या एम्बुलेंस है उनको कॉल करनी है।
6: 112 नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। जो
8: और जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे हमारा साथी है या कोई साथ में है और वो मोटरसाइकिल गिर गई, सड़क पे गिर गया, सिर में चोट लग गई, खून बहने लगा, तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं प्रथम उपचार के रूप?
7: सबसे प्रथम उपचार है कि जहां से अगर चोट लगी, खून बह रहा है, तो उसको दबा के रखना है। उसके बाद देखना है कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, तो वो देखना होगा कि उसके कहीं गले में तो कुछ चोट नहीं है, गले में कुछ अटक तो नहीं रहा है, वो देखना है। और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं कि कोई चीज घुसी हुई होती है मरीज के, शीशा कट के घुस गया या कुछ, तो उस चीज को निकालना नहीं होता है उस समय।
8: अच्छा,
7: जो भी चीज है उसके लिए डॉक्टर अस्पताल के पास जाना है, वहां पे वो खुद निकालेंगे। कभी कभी उसकी वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल में होती है और हम लोग वहीं पे निकाल लेते हैं, कुछ शीशा कटा हुआ घुसा है, उसके बाद फिर ब्लीडिंग इतनी बढ़ जाती है कि हम रोक नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि पहले तो ब्लीडिंग को अगर कहीं से हो रही तो नॉर्मल दबा के रोकें। दूसरी चीज, कोई चीज अगर घुसी हुई है, लोहे की पत्ती हो जाती, ब्लेड हो जाता, शीशा हो जाता, तो उसको निकालना नहीं है।
8: अच्छा, उसको लगा रहने दें,
7: उसको लगा रहने दें और जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे। वो अस्पताल में डॉक्टर अपने हिसाब से उसको एसेस करेगा और फिर उसको अपने हिसाब से निकालेगा।
6: और कुछ जानना है आपको बबलू जी?
8: जैसे डॉक्टर साहब ऐसा भी है, जैसे मान लो किसी का लगता है कि जैसे हाथ पैर एकदम मुड़ जाता है, टूट जाता है, तो उसको
7: सबसे पहली चीज होती है कि अगर हाथ पैर हो, कि अगर किसी चीज से अगर टूटा लग रहा है,

0: वो तो उसमें अगर आसपास कोई फट्टा पड़ा, कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, तो बेटर है कि उसकी सपोर्ट लगा के उसको बांध के, मतलब उसको स्टेबलाइज करना हो, जिससे कि वो और ना मुड़े। उसको एक कोई नॉर्मली अगर कोई गत्ता है जो पड़ा होता है जिसे बोलते हैं, वो लगा दिया उसके नीचे जहाँ पे फ्रैक्चर लग रहा है, उसको हल्का सा सपोर्ट दिया, उसके साथ ले जाए, वो ज्यादा बेटर रहता है। दूसरी चीज होती है, कभी कभी सर में या स्पाइन की चोट होती है, तो उन कंडीशंस में गर्दन को मोड़ना नहीं होता है, हिलाना डुलाना नहीं होता है, एक ही पोजीशन में स्टिल करना, मतलब कि एक समान स्थिति में सीधा करके, जिधर की गर्दन ना हिले या स्पाइन हो मुड़ी हो तो वो ना मुड़े, और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करना चाहिए।
1: और कुछ जानना है आपको बबलू जी?
2: नहीं, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिल पाई, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के माध्यम से, और हम संतुष्ट हैं। और अगर ऐसी कोई स्थिति भविष्य में हमारे सामने आती तो आपकी बताई हुई बातों का ध्यान रखें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमारे श्रोता जागरूक हो चुके हैं, और उनकी जिज्ञासा भी ये रहती है कि आखिर मेरी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह मैं कैसे करूं।
0: जरूरी है,
1: ऐसे ही हमारे ये जागरूक श्रोता हैं, ऐसे श्रोताओं के लिए हम तो ये कहेंगे कि ये वाकई में तारीफ के योग्य,
0: तारीफ के योग्य हैं। ऐसी चीजें अगर लोग जानने लगे, बेसिक चीजें, तो हम बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब चोटों को कम कर सकते हैं, जो डेथ होती है एक्सीडेंट के द्वारा उनको बहुत काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी, चौंकाने वाली बात तो ये है कि दुर्घटना में जो मृत्यु होती हैं प्रतिवर्ष, उनकी तादाद बहुत बहुत बहुत ज्यादा है।
0: जी,
1: सबसे ज्यादा मौतें दुर्घटनाओं में
0: हो रही हैं।
1: उनको नियंत्रित करने के लिए जागरूकता बहुत बड़ी चीज
0: है।
1: बहरहाल, तो हम बात कर रहे हैं दुर्घटना में घायल मरीजों की और उनके इलाज की। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो दुर्घटनाएं होती हैं किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि क्या घटना उसके साथ कब हो जाएगी, और कई बार तो जान तक चली जाती है लोगों की। हम बात करेंगे सबसे पहले जो दोपहिया वाहन पे लोग चलते हैं उनके साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं, कई बार गिर जाते हैं, छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो कई बार बड़ी भी चोट लग जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी वाहन से टकराया, दोपहिया वाहन पे है, तो उसे क्या ध्यान रखने की जरूरत है, किस तरह की जो चोटें हैं वो लगती हैं दोपहिया वाहन वालों को ज्यादातर?
0: मैं एक डेटा आज मैं देख रहा था, मुझे कुछ दिन पहले की याद है, मैंने कुछ डेटा सर्च किया था मतलब उसका, तो मैं इसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में, तो मैं ये देखा कि दोपहिया वाहन से ही अराउंड लगभग 45% तक एक्सीडेंट जो होते हैं उनमें दोपहिया वाहन का ही रोल है।
1: 45%
0: तक जो एक्सीडेंट होते हैं वो उनमें दोपहिया वाहन ही है।
1: जी,
0: जो टोटल 100% एक्सीडेंट में 45% तो सिर्फ टू व्हीलर की वजह से हो रहे हैं, जिनमें बाकी और सारे इंक्लूडेड हैं।
1: जी जी जी, तो ये तो
0: बहुत बड़ी है। इसलिए दोपहिया वाहन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के कारण होते हैं, और मौत का भी जो बहुत बड़ा रिस्क है वो भी दोपहिया वाहन एक्सीडेंट की वजह से होता है।
1: जी, जी।
0: जिसके लिए हम एक छोटी सी चीज बोले, हेलमेट जिसको बोलते हैं हम लोग, जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अवॉइड करते हैं हेलमेट नहीं पहनना, लेकिन जो कि एक लाइफ सेविंग है, ये जो हमारी जान बचाने वाली चीज है।
1: डॉक्टर साहब, हैरत तो तब होती है कि हेलमेट होता है दोपहिया वाहन वाले के पास, वो टांग लेता है एक तरफ, सर पे रखने की बजाय वो अपनी बाइक पे इधर उधर रख देता है।
0: आजकल लोगों को लगता है वो पुलिस या चालान से बचने का काम है, अपनी जान की कोई भी कीमत नहीं समझ रहा आदमी उस समय, उसको नहीं पता कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हेलमेट जो होता है, अगर एक्सीडेंट के समय हेलमेट है या फोर व्हीलर में सीट बेल्ट है, जो कि काफी हद तक जान बचाने में सहायक होती है।
1: जी जी, हेलमेट की बात आई है डॉक्टर साहब, तो ये बताइएगा दोपहिया वाहन पर जो व्यक्ति चल रहा है, अगर वो हेलमेट पहने उसके बाद कहीं उसकी छोटी मोटी टक्कर हो जाती है, तो वो कितना सुरक्षित और कैसे रहता है?
0: हेलमेट से एक WHO का डेटा है, 2 साल पहले WHO ने पब्लिश किया था।
1: जी,
0: उसमें लिखा है कि 6 गुना ज्यादा तक हम मौतों को बचा सकते हैं सिर्फ हेलमेट पहनने से।
1: जी जी।
0: दूसरा था डेटा कि ब्रेन इंजरी जो होती है ना, दिमाग की चोट होती है, उसमें 74% तक कमी आती है हेलमेट लगाए हुए लोगों में, कंपेयर टू जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। तो हेलमेट बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत ही कहते हैं कि लाइटली ले रखा है।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, हेड इंजरी की बात है, तो जो हेड इंजरी है सर के टकराने से ही होती है, सर कहीं इधर उधर टकरा जाता है तो हेड इंजरी होती है। अगर हेलमेट लगा है तो वो हमें लगता है जो टकराने की स्थिति है वो शायद इतना नुकसान नहीं करता।
0: नहीं देते, हमारा सबसे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन बोले या जिसको बोले मेन ऑर्गन है, ब्रेन है। अगर ब्रेन में कुछ होता है तो आदमी की सोचने की, चलने की, बोलने की सारी क्षमताएं खत्म हो सकती हैं। तो इसीलिए सबसे प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। अगर सबसे बड़ी चीज ऊपर होता है सर में, सबसे पहले इम्पैक्ट भी किसी चीज में होता है तो सर में ही होता है। मान लो एक्सीडेंट हुआ है तो गिरेगा आदमी, तो सबसे पहले सर जमीन में टकराता है ज्यादातर, तो इसलिए सर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है,
1: और वो हेलमेट से,
0: वो हेलमेट से हो सकता है, बहुत सी छोटी सी चीज है, ना ही बहुत महंगी है, लेकिन आदमी अपनी जान से ज्यादा हेलमेट की कीमत समझता है।
1: तो हमारी यही रिक्वेस्ट है और यही सुझाव भी है इस आज की रेडियो हेल्पलाइन।

0: कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोताओं से कि हेलमेट जरूर पहने दोपहिया
1: जरूर
0: वाहन
1: पहने।
0: पर अगर आप सफर करते हैं। अब ये बताइए डॉक्टर साहब, अगर सिर में चोट लगती है दुर्घटना में किसी को, तो किस किस तरह के नुकसान होते हैं?
1: सर में चोट लगती है तो कई चीजें होती है। एक बार होता है कि सिर्फ सर के कोई मीन्स ब्रेन के बाहर ही हड्डी के फ्रैक्चर हो गया,
0: जी
1: या मान लो ऊपर ही खाली खाल में चोट लग गई, लेसरेशन हो गया है। लेकिन कभी सीवियर दुर्घटना में क्या होता है कि सर के अंदर चोट लगती है, जिसको
0: जी
1: बोलते हैं ब्रेन के अंदर, उसमें हेमेटोमा बोलते हैं, एक्स्ट्रा जुरल ईडीएच बोलते हैं, एसडीएच बोलते हैं, कंट्यूजन जो हमारी मेडिकल भाषा में बोलते हैं, मतलब कि ब्रेन के अंदर एक बहुत सा बड़ा क्लॉट बन जाना,
0: जी
1: तो जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है
0: अच्छा
1: और जिसको हम हेलमेट से काफी हद तक बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आपने बताया कि हड्डियां हैं सिर की, और इन हड्डियों में भी फ्रैक्चर हो जाते हैं, दिमाग तक ये चोट पहुंचती है, तो कितना जटिल हो जाता है ऐसे दुर्घटनाग्रस्त लोगों का इलाज करना जिनके सिर की हड्डी में चोट लगी हो या दिमाग तक चोट का असर पहुंचा हो।
1: जब दिमाग तक चोट पहुंचती है तो उस समय हमें बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं, हम इतना जल्दी अगर लोगों को पता लग जाए, रोड साइड में मान लो कोई पड़ा है, अगर बेहोश लग रहा है या बोल नहीं पा रहा है या दौड़े झटके जैसे लग रही संभावना है, तो तुरंत अस्पताल पहुंचे।
0: जी
1: और हॉस्पिटल में हमें अक्सर देखना पड़ता है कि अंदर ब्रेन के अंदर कितना सा क्लॉट है, कितना बड़ा खून का थक्का जमा है, किस एरिया में है। ज्यादातर केसेस में हमें कभी कभी तो बहुत बार होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है कि तुरंत ही सीधे मरीज आता है, उसको ऑपरेशन थिएटर में लेना पड़ता है,
0: जी
1: सर्जरी भी करनी पड़ती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है जहाँ हड्डी फ्रैक्चर होती है तो वहां नीचे ब्रेन में चोट लगी ही लगी होती है,
0: जी जी
1: तो उसका इलाज हम कभी दवाइयों से भी करते हैं और कभी सर्जरी से भी करते हैं।
0: जी जी जहां तक इलाज की बात है डॉक्टर साहब, तो व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए इलाज किया जाता है।
1: जरूर जी
0: लेकिन इलाज होने के बावजूद भी लोगों में कई तरह की डिफॉर्मेलिटीज आ जाती हैं,
1: जी
0: जैसे आंखों में देखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कई बार सुनने की क्षमता, तो कई बार बोलना भी संभव नहीं हो पाता।
1: अब एक्चुअली होता क्या, हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है,
0: जी
1: ब्रेन के अंदर अलग अलग हिस्से का अलग अलग फंक्शन है,
0: जी
1: अपना काम करने का चीजें। तो ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिनसे हमें देखने की क्षमता होती है, कंट्रोल करता है विजन को, कुछ होते हैं कि जिनमें बोलने को कंट्रोल करते हैं कुछ एरिया, कुछ होते हैं सुनने को, कुछ होते हैं चलने को, तो वो उस पर निर्भर करता है कि किस एरिया में हमारे चोट लगी है।
0: जी
1: कभी कभी अगर बोलने वाली एरिया ब्रेन का एक सेंटर होता है, उसमें अगर चोट लग गई, वहां पर कोई क्लॉट हो गया, तो फिर बोलने में समस्या हो जाती है।
0: जी
1: कभी हाथ पैर में एक तरफ लकवा जिसको बोलते हैं, चोट के बाद भी लग जाता है वो, उसको बोलते हैं कमजोरी आ गई, तो वो ब्रेन के जो हिस्सा जिस चीज को कंट्रोल कर रहा है उस पर निर्भर करता है।
0: जी ये तो बात रही डॉक्टर साहब ब्रेन की, क्योंकि कई बार लोगों की दुर्घटना होती है तो हाथ पैर में चोट लग जाती है, जैसा
1: जी
0: हमारे श्रोता ने भी
1: जरूर,
0: अभी
1: हाँ
0: जानना
1: फ्रैक्चर
0: चाहा
1: हो
0: था।
1: जाता है, खुला
0: जी
1: चोट
0: फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार चोट खुल जाती है तो कई
1: लगता
0: बार नहीं खुलती, तो उस स्थिति में क्या सबसे पहली जरूरत होती है?
1: है। सबसे पहले होता है हमें देखना कि आसपास अपनी सुरक्षा, मरीज की सुरक्षा,
0: जी
1: जो हम स्टेप बाइज अगर बोलें। दूसरा चीज है तो इमीडिएटली हमें इमरजेंसी एम्बुलेंस या उसको तुरंत कॉल करना है।
0: जी जी
1: फिर हमें तीसरी उसी समय साइड बाय साइड ही देखना होता है, कहीं से अगर बहुत ज्यादा खून तो नहीं बह रहा है,
0: जी
1: खून बह रहा है तो उसको दबा के रखना है, जैसे कि श्रोता ने हमारे पूछा था।
0: जी
1: अगर कहीं फ्रैक्चर लग रहा है फिर हमें देखना कि सांस लेने में तो दिक्कत नहीं हो रही मरीज को, कभी
0: जी
1: कभी कुछ फंस जाता है गले में, तो उसको पहले वहां से खोलना है, हटाना है, कभी मुंह से दबा है, किसी कपड़े से दबा है, या गाड़ी के अंदर है तो सीट से दब गया है, तो सांस लेने की रास्ता साफ करना होता है।
0: जी
1: तो ये बेसिक छोटी छोटी सी चीजें जिनको हमें ध्यान रखना होता है। कोशिश करनी होती है मरीज को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, मरीज जिस कंडीशन में उसको सीधा करके रखना है,
0: जी
1: कपड़े टाइट पहने हैं तो तुरंत कपड़े खोल लेने हैं, थोड़ा लूज कर देना है,
0: अच्छा
1: बहुत ज्यादा मरीज ठंडा नहीं होना चाहिए, जिससे कि कभी सर्दियों में अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें बॉडी का इतना टेम्परेचर कम हो जाता है तापमान की, उससे वजह से भी आदमी की जान जा सकती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इनका हमें
0: ध्यान
1: विशेष
0: रखनी
1: ध्यान
0: होगी।
1: रखना है।
0: जी, सबसे पहली बात आपने बताई डॉक्टर साहब, सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा और जो दुर्घटना में घायल मरीज हैं, लोग हैं,
1: उसकी सुरक्षा,
0: उनकी सुरक्षा। तो सुरक्षा के बात जहां तक है तो सभी समझते हैं, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते सुरक्षा को आप किस तरह लेते हैं, किस तरह की सुरक्षा की
1: मैं ये
0: जरूरत है?
1: बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कोई दुर्घटना, अब एक्सीडेंट मान लो या भूकंप होता है या कुछ बाढ़ आती है, तो सुरक्षा का मतलब होता है उस एरिया में आप और उस आसपास अब कुछ और तो नहीं हो सकता, जैसे आप भी आप मरीज को बचाने के चक्कर में कुछ आपके साथ ना दुर्घटना हो जाए,
0: जी
1: उसको बोलते हैं सुरक्षा। आपको आसपास की चीजें भी असेस करनी है, मान लो भूकंप आ रहा है, कोई बिल्डिंग गिर रही है,
0: जी
1: आप किसी को बचा रहे हो, पता लगा आपके ऊपर ही गिर गई, उस समय किसी भी दुर्घटना के आसपास की चारों तरफ की चीजों की देखनी, अपने आप को भी सेफ रखना है,
0: जी
1: उसके बाद मरीज की सेफ्टी करनी है, अदरवाइज आपके साथ कुछ हो गया तो ना मरीज को कुछ कर पाएंगे ना आप खुद को कुछ कर पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए खुद की सुरक्षा बहुत
1: पहले
0: जरूरी
1: खुद
0: है।
1: की सुरक्षा, उसी समय मरीज की सुरक्षा, मतलब ये इतना इमीडिएट करना है, ऐसा नहीं कि अपनी सुरक्षा करने के चक्कर में उसको छोड़ देना है,
0: जी
1: मतलब है कि

0: आसपास का एरिया को भी देखना है एक
1: जी
0: बार।
1: जी और उसके बाद दूसरा काम यह है कि मरीज को जो है सुरक्षित स्थान पर भी रखने की
0: रखने
1: जरूरत
0: की
1: होती है,
0: कोशिश
1: हटाने की
0: करें,
1: जरूरत होती है।
0: हाँ
1: जी
0: उसमें कोशिश यही करनी होती है, जल्दी मरीज को सीधा रखें। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे कुछ खतरा नहीं है तो मरीज को जिस कंडीशन में वहीं पे रखें
1: जी
0: तक कोई एम्बुलेंस या कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स या कुछ ना आ जाए,
1: जी
0: क्योंकि कोशिश करना होता है कि मरीज को बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं होता है,
1: जी
0: तो उस चीज को ध्यान रखना। अगर लग रहा है कुछ ऐसी स्थिति बन गई जैसे भूकंप वाली, तो वहां से आपको जल्दी से जल्दी एक सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए।
1: जी जी रोड साइड एक्सीडेंट की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो कई बार लोगों के इतनी ज्यादा चोटें लग जाती हैं, जख्म हो जाते हैं कि खून का रिसाव तेजी से होने लगता है। आपने कहा है कि खून का रिसाव रोकने की जरूरत है, उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो क्या अगर किसी के खुला जख्म है जहां से खून रिस रहा है, तो उस जगह पे क्या पट्टी या इस तरह का कोई बांधने की
0: हाँ
1: आवश्यकता
0: जरूर,
1: है?
0: वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पहले उसको दबा के रखो। ऐसा
1: जी
0: नहीं, कभी कभी हम लोग इतना टाइट बहुत ज्यादा कस के पट्टी बांध देते हैं जिससे भी नुकसान हो सकता है, तो
1: बिल्कुल
0: ऐसा नहीं करना है। जहां पे खुली चोट है उसके ऊपर ही दबाना है, दो अगर कपड़े कुछ पड़े कपड़े से पैड करके अच्छे से बांध देना है वहां पे,
1: जी
0: ना कि ऊपर या नीचे जो लोग बांधते हैं टाइटली उतना नहीं करना है। इतना प्रेशर देना है कि उस जगह से खून का दौरान रुक जाए, ना
1: बस
0: कि पूरे हाथ या पैर में पूरा लपेट के चारों तरफ से बांध देना है।
1: जी
0: वो चीजें अवॉइड करनी है, बट प्रेशर रखना है उस पर।
1: जी उसके बाद बात आती है डॉक्टर साहब मेडिकल जो सुविधा है उसकी, मेडिकल केयर की। आपने कहा एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के लिए तो हमारी सरकार बहुत जागरूक है इस मामले में। 112
0: जी
1: नंबर एक ऐसा नंबर है जो सभी को याद है, दुर्घटना होने पे 112 नंबर डायल करने पे तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। क्या बताएंगे सर, एम्बुलेंस अगर आपके पास नहीं पहुंच पा रही है तो क्या करना है, या फिर एम्बुलेंस जब तक आपके पास पहुंचे तब तक के धैर्य के लिए क्या करें?
0: के लिए हमें यही चीजें देखनी है। मरीज को सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वहां पे एरिया को खुला रखें, लोग चारों तरफ भीड़ हटाएं,
1: जी
0: स्वच्छ हवा आने दें मरीज को। जहां पे अगर लग रहा है कि सर में चोट है स्पाइन में चोट हो सकती है तो उसको सपोर्ट दें किसी चीज से। हाथ में फ्रैक्चर है तो जो भी आसपास कुछ भी पड़ा ये सब्जेक्ट कोई भी पड़ी वस्तु है, फट्टा है या लकड़ी है, उससे सपोर्ट से बांध दें उसको जिससे कि वो मुड़े ना।
1: जी
0: तीसरी बात हो गई है कि अब अगर लग रहा है कि एक बेसिक सी चीज जिसको बोलते हैं हम CPR या कार्डियो पल्मोनरी
1: जी जी
0: रिसुसिटेशन, ये एक इतना इम्पोर्टेंट चीज हो गई है। आपको लग रहा है मरीज को सांस लेने में या नब्ज नहीं मिल रही या बेहोश पड़ रहा है या लग रहा है कि बहुत ज्यादा खून बह गया, तो उन केसेस में एक बेसिक सी चीज है, मुझे लग रहा है कि आजकल गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम चला रही है जिससे स्कूलों में जाके सिखाया जा रहा है बच्चों को,
1: जी
0: तो CPR देने की भी जरूरत पड़ सकती है।
1: जी जी
0: तो उसमें कार्डिक जिसको बोलते हैं चेस्ट की मसाज या चेस्ट को दबाना होता है जिससे कि हार्ट भी अगर कभी बंद हो रहा होता है चोट की तो पंप करने लगता है, तो जो एक जनरली एम्बुलेंस में जो लोग होते हैं उनको तो आ रहा होता है, लेकिन एक मुझे लगता है कि एक नॉर्मल जनरल पब्लिक को भी पता होना चाहिए
1: जी
0: इन केसेस में, उसकी भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है
1: जी जी
0: तो उसको देना आना चाहिए। तीसरी चीज है अगर लग रहा है कि मरीज का शौक बोलते हैं जैसे BP कम लग रहा है अनकॉन्शियस हो गए, तो कोशिश करना चाहिए कि किसी पैर वैर को ऊपर उठा दो जिससे हार्ट के लेवल से ऊपर उठा के रखो
1: जी
0: जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। बेसिक चीजें जो हम कर सकते हैं वहीं
1: जी
0: पे।
1: जी CPR एक तकनीकी प्रक्रिया है, और CPR सीखने की भी जरूरत है, और मैं तो ये कहूंगा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को CPR आना जरूरी
0: आना
1: है।
0: जरूरी है।
1: अगर कोई आपसे सीखना चाहे डॉक्टर साहब, तो वो कैसे सीख सकता है? क्या आप लोग उसके लिए कुछ पैसा चार्ज करते हैं, फीस लेते हैं,
0: नहीं
1: या फिर
0: नहीं इसके लिए
1: निःशुल्क?
0: कोई नहीं, हम लोग कभी कभी मेडिकल एसोसिएशन के कैंप लगते हैं बरेली के अंदर भी, तो वहां पे इनकी ट्रेनिंग होती है। कभी कभी मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू लोग हम कॉलेजेस में स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं, इसके लिए
1: जी
0: कोई चार्ज नहीं लगता है।
1: जी तो CPR की तकनीक को सीखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। सरकारी संस्थान तो है ही जहां CPR के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। निजी चिकित्सालय जितने भी हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जनहित में फ्री में सिखाते हैं। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि सभी लोग समाज के CPR को जरूर
0: जरूर
1: सीख लें।
0: समझे,
1: जी
0: बहुत ये छोटी सी चीज है लेकिन ये जान बचाने वाली चीज है।
1: जी सर, इसके बाद बात आती है एम्बुलेंस की। 112 नंबर जिसका जिक्र हम शुरू से करते
0: हाँ
1: आ रहे हैं, 112 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई जा सकती है। अगर उपलब्ध हो ही जाती है एम्बुलेंस, और अगर कोई ऐसी जगह है जहां से फोन की सुविधा नहीं है, तो जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने की बात होती है। सर एक सरकार की योजना और भी है जिसमें ये कहा जाता है कि इस योजना में किसी भी सड़क पर घायल मरीज का मुफ्त इलाज किया जाता है,
0: जी
1: तो उसके बारे में हम चाहेंगे हमारे श्रोता जान लें क्या योजना है, कैसे कैसे इलाज की सुविधा
0: अभी
1: मिलती है।
0: हाँ मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई ये योजना शुरू की, प्रधानमंत्री राहत योजना, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए ही बनाई गई है।
1: जी
0: इसके अंदर अगर कोई भी रोड पे अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस मरीज को

0: जाके आप किसी भी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो वहां पे उसका निशुल्क इलाज किया जाएगा।
1: जी
0: कुछ कुछ उसमें डिजिग्नेटेड मतलब इम्पैनल हॉस्पिटल हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है,
1: जी
0: तो हर जगह कुछ ना कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनको उनमें अगर आप लेके जाएंगे तो उस मरीज का फ्री इलाज होगा, और उस योजना के अंदर कुछ प्रोत्साहन राशि जो ले जाने वाले को भी दी जा रही है।
1: अच्छा
0: तो उसमें अगर कोई पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीजें क्लियर कर दी कि उन लोगों से पूछताछ नहीं होगी जो लोग लेके जाते हैं
1: जो
0: एक्सीडेंट
1: मदद
0: वालों
1: कर रहे हैं
0: जो
1: लोगों
0: मदद
1: को।
0: कर रहे हैं, तो इसलिए
1: जी
0: इसमें अब घबराना नहीं है। पहले लोग घबराते थे, तो
1: जी
0: अब कोशिश यही करनी चाहिए जितना जल्दी अगर कहीं मिले तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाएं। उसमें एक हमारा हॉस्पिटल भी है बरेली के अंदर, 4-5 हॉस्पिटल्स में, जिसके अंदर इसका कैशलेस मुफ्त इलाज होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका पूरा इलाज फ्री होगा अगर आप दुर्घटना में कहीं घायल होकर लेके लाया जाएगा।
1: जी जी और जो मदद कर रहा है रास्ते में उसे राहवीर पुरस्कार की
0: जी
1: बात
0: हाँ,
1: आप जो कर
0: रविवार
1: रहे हैं,
0: पुरस्कार।
1: राहवीर पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार में धनराशि दी जाती है,
0: जी
1: प्रोत्साहन राशि है, लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए है जो वाकई में अपना काम छोड़ के एक घायल व्यक्ति की मदद करता
0: कर
1: है, ये
0: रहे हैं,
1: मानवीय कर्तव्य भी
0: मानवीय
1: है।
0: है और बहुत
1: जी
0: जरूरी है। इसलिए हम हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सी ये योजना है जिससे
1: जी
0: काफी लोगों की जान बचाई जा सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, पीएम राहत योजना की बात आपने की तो इसमें 7 दिनों तक इलाज की बात शायद कही
0: हाँ,
1: गई है,
0: 7 दिनों तक
1: मुफ्त इलाज होता
0: मुफ्त
1: है,
0: इलाज।
1: किसी भी तरह के इलाज की अगर मरीज को जरूरत है, घायल व्यक्ति को जरूरत है, तो सरकार की तरफ से ये
0: सरकार की तरफ
1: योजना
0: से
1: है।
0: पे किया जाएगा,
1: जी
0: मरीज की तरफ से कुछ नहीं, सब कैशलेस इलाज होता है।
1: जी
0: बस बस तो उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए जो पहचान के लिए एक, उसके अंदर फिर वो सारा कुछ उसके अंदर ही हॉस्पिटल को सीधे पे होता है गवर्नमेंट की तरफ से।
1: जी और ये जो मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, जो घायल मरीज के उपचार की बात है, सरकारी अस्पतालों में तो है ही सुविधा, इसके अलावा जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हर शहर में कुछ अस्पताल होते हैं जहां फ्री इलाज की सुविधा है, विशेष तौर से दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के।
0: मरीजों के
1: बरेली में कुछ अस्पताल हैं, उनमें से एक आपका अस्पताल भी है
0: जी
1: जैसा आपने कहा।
0: दीपमाला हॉस्पिटल
1: जी
0: जहाँ
1: जी
0: पे सुविधा उपलब्ध है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये और बताइएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति दुर्घटना में सामूहिक रूप से जा रहे हैं कोई व्यक्ति और सामूहिक रूप से घायल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति को तो एक व्यक्ति संभाल सकता है, लेकिन जहां कई बार बड़े वाहन लड़ जाते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, वहां परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत लगने लगती हैं, ऐसी स्थिति में क्या क्या बातें ध्यान रखने की हैं।
0: अब उस स्थिति में हम लोग अपने मेडिकल में ट्राइज एक वर्ड यूज करते हैं। ट्राइज मतलब कि हम एक गंभीरता के हिसाब से मरीजों को अलग अलग श्रेणी में रखते हैं।
1: जी
0: तो उसमें हम पहले देखते हैं कि किस मरीज को सबसे कम जरूरत है, किस मरीज को ज्यादा जरूरत है,
1: जी
0: किसको कम बीच की जरूरत जिसको बोलते हैं।
1: जी
0: तो हम उस तरह से डिवाइड करें, जिसको कम जरूरत है हम उसको एक साइड में रखते हैं, सबसे पहले जिस सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल है जिसको हम लगता है कि जान बचा सकते हैं उसको देखते हैं। एक आता है मरीज जिसमें हमें लगता है कि हम उसकी जान भी नहीं बचा सकते हैं,
1: जी
0: तो उन कोशिश में वो एक हमारा एक सिस्टम बना हुआ उन पे हम कम फोकस करके जो ज्यादा गंभीर रूप से है और जिनको हमें लगता है बचा सकते हैं उन पे फोकस करते हैं, ना कि जिनको कम चोट जिसको कट गया या खरोच आ रखी है या थोड़ा सा चोट है जो अपने आप उठ के चल सकते हैं, कंपेयर टू उनसे ज्यादा फोकस गंभीर मरीजों पे करते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसमें हमें एक अपने आप में ही एक डिसीजन लेना होता है किस मरीज को हम जितना जल्दी और किसको ज्यादा जरूरत उपचार की है उसको जल्दी से जल्दी हम ट्रांसफर करने की कोशिश करें किसी हॉस्पिटल में।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और बात होती है, अगर दुर्घटना में किसी घायल व्यक्ति को देखते हैं तो कई बार तो खुद मरीज कहता है पानी पिलाओ, तो कई बार लोग पानी वानी पिलाने की कोशिश करते हैं, और जो है वो स्थानीय इलाज भी करने की कोशिश में लोग रहते हैं, नुस्खे लोगों के पास होते हैं, उन्हें आजमाने की प्रयास में रहते हैं,
0: ये
1: क्या
0: आपने
1: कहेंगे आप।
0: बहुत अच्छी चीज पूछी है। मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी दुर्घटना में कुछ चीजें जो नहीं करनी है,
1: जी
0: सबसे पहली चीज मरीज को बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं, जो अक्सर हम लोग करते हैं उठा के पूरा झकझोर देते हैं। किसी दुर्घटना में मरीज को हिलाना डुलाना नहीं है, कुछ खाने को या पानी को देने नहीं है,
1: जी
0: कोई भी चीज जैसे मैं अभी बात कर रहा था कोई शीशा या कुछ घुस गया तो उसको निकालना नहीं है,
1: जी
0: ये कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। तो खाना या पानी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,
1: जी जी खाना या पानी बिल्कुल नहीं
0: नहीं
1: देना है
0: देना
1: मरीज
0: चाहिए,
1: को, अगर देना है तो फिर मेडिकल केयर देनी है,
0: मेडिकल केयर देनी
1: चिकित्सा सुविधा
0: मेडिकल
1: उसे
0: केयर
1: उपलब्ध
0: करनी
1: करानी
0: है।
1: है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो इलाज की बात है, तो इलाज में आपने बता ही दिया है कि 7 दिन तक फ्री इलाज की व्यवस्था है, सरकार ने व्यवस्था की है, और क्या खास बात हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे आप।
0: अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपका हेड इंजरी जिसको बोलते हैं सर में जो चोट है
1: जी
0: वो काफी हद तक बचाव कर सकते हैं हम उस चीज का।
1: जी
0: बेसिक सी चीजें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं।
1: जी
0: दूसरी चीज है कभी जो अक्सर आजकल के नौजवान करते हैं ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं उस
1: वो
0: चीज
1: ना
0: से
1: करें।
0: अवॉइड करें।
1: जी
0: रेसिंग करने लगते हैं आपस में, रेस मतलब बहुत ज़्यादा तेज गाड़ियों को चला रहे हैं, उस चीज़ को अवॉइड करें। इससे हम

0: ऑलमोस्ट 90% तक ट्रॉमा बचा सकते हैं, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बचा
1: जी
0: सकते
1: एक एक
0: हैं।
1: काम और है डॉक्टर साहब, लोग आजकल मोबाइल का इतना इस्तेमाल करते हैं, कई बार तो सीधे मोबाइल कान पे लगा के
0: लगा के
1: हेलमेट में
0: बात कर
1: फंसा के
0: रहे
1: तब
0: हैं,
1: चलते हैं, और
0: ये
1: स्पीड भी अच्छी खासी
0: अच्छी
1: होती है, तो कई बार जो है हेडफोन लगा लेते हैं और कहते हैं कि हम कंसंट्रेट तो सामने रोड पर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: अब तो कुछ कुछ ऐसे हेडफोन्स आते हैं जिसको नॉइस कैंसलेशन बोलते हैं, उसमें तो पीछे बगल से कोई आ रहा है।

0: उसमें तो पीछे बगल से कोई आ रहा है उनको पता ही नहीं लग रहा है,
1: जी
0: जो कि भी रिस्क है। अगर पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, कुछ गाड़ी की जो हमें आवाज महसूस होती है, तो उसमें वो भी नहीं महसूस होती है। तो इसलिए इन सब चीजों को ड्राइविंग करते समय मतलब बचना चाहिए, इन सब चीजों से।
1: जी
0: मोबाइल को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े रिस्क मतलब कारण है एक एक्सीडेंट होने के।
1: जी चार पहिया वाहन में डॉक्टर साहब सीट बेल्ट लगाने की बात आप कर रहे हैं, और चार पहिया वाहन आजकल तो इतने एडवांस हैं, उनमें बहुत कुछ सुविधाएं होती हैं। क्या सुझाव है चार पहिया वाहन चालकों के लिए और जो सवारियां उसमें बैठती हैं उनके लिए, ताकि वो भी सुरक्षित रहें और जो लोग रोड पर चल रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें?
0: चार पहिया वाहन के लिए मैं ही बोलना चाहूंगा, सीट बेल्ट जो जैसे कि हम कई बार बोल चुके हैं वो लगानी है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के लिए भी सपोर्ट सीट बेल्ट आती है, उसका लगाना है।
1: जी
0: तीसरी चीज एक स्पीड लिमिट होती है हमारे सरकार की तरफ से, हर रोड की अलग अलग, तो
1: जी
0: फॉलो करना है स्पीड लिमिट। अननेसेसरी बहुत नहीं तेज चलानी है, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो करना ही नहीं, जैसे हम कई बार बोल चुके। तो बेसिक चीज, छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके द्वारा हम सारी चीजों से बच सकते हैं।
1: जी
0: ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, इंडिकेटर्स का प्रॉपर यूज करें जो होते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें छोटी छोटी जिनसे काफी हद तक एक्सीडेंट होते हैं, इनसे बच सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए हमें कि गाड़ी चूज करते समय सबसे पहले सेफ्टी फीचर चेक करें,
1: जी
0: जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एक उसके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखते हैं लोग। इन कोशिश करना चाहिए जितने मैक्सिमम स्टार रेटिंग जो होती है, सेफ्टी स्टार रेटिंग होती है, वो लेनी चाहिए। कितने एयर बैग्स हैं, ये बेसिक चीजें भी गाड़ी लेने से पहले हमें देखना चाहिए।
1: जी एयरबैग किस तरह मदद करता है, किस तरह की चोटों से बचाता है दुर्घटना में जो चार पहिया वाहन उनमें?
0: एयरबैग से होता है कि हमारा जो अक्सर एक्सीडेंट होता है, गाड़ी स्पीड में होती तो एकदम हम जो होते हैं, जब गाड़ी टकराती है तो सीधे एकदम सामने की तरफ जाते हैं, एकदम से स्टॉप होता है, तो इतना एनर्जी में चेंज आता है कि आगे जाके विंडशील्ड पे लट जाते हैं, स्टेयरिंग जाके सर टकरा जाता है, तो उससे हेड इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
1: जी
0: एयरबैग क्या करता है कि हमें तुरंत ही उस चीज को कंट्रोल करता है। वो आगे से हमारे जनरली फ्रंट से होते हैं जो
1: जी
0: कि कंट्रोल कर लेते हैं, आगे ना हम जाके विंडशील्ड पे ना लड़े, जिसको शीशे पे ना लगे या
1: जी
0: फिर स्टीयरिंग पे ना लगे, जिससे हम काफी हद तक बचते हैं। साइड वाले एयरबैग्स होते हैं, जब गाड़ी रोल ओवर मतलब पलट के घूम जाती है,
1: जी
0: तो साइड से हमें काफी सपोर्ट करती है। तो
1: जी
0: इसलिए एयरबैग्स काफी हद तक चारों तरफ से हमें प्रिवेंट कर मतलब चोट से बचाते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। दुर्घटना में घायल मरीज के इलाज की बात तो पहले है, सुरक्षा की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सुरक्षा के लिए बहुत सारे टिप्स आपने दिए हैं। मसलन हेलमेट पहनने की जो बाध्यता है वो सिर्फ बाध्यता नहीं, अपनी सुरक्षा
0: अपनी
1: है।
0: सुरक्षा
1: हमें पुलिस से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए हेलमेट नहीं
0: है।
1: पहनना है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना है। इसी तरह सीट बेल्ट और जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनमें कंप्रोमाइज करने की
0: नहीं
1: आवश्यकता
0: करना
1: नहीं है। अगर दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाती है तो पीएम राहत योजना एक ऐसी योजना है सरकार की, जिसके माध्यम से कैशलेस यानी फ्री इलाज की व्यवस्था सरकार ने की है। 7 दिन तक किसी भी मरीज का फ्री इलाज होगा। एम्बुलेंस की जहां तक बात है तो 112 नंबर वो नंबर है जो फ्री एम्बुलेंस की सुविधा चंद मिनटों में ही उपलब्ध कराता है। सरकार के लिए इन सब सुविधाओं को धन्यवाद। साथ ही एक बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, ये हम आकाशवाणी के अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं से कहेंगे। हेलमेट जरूर पहने, सीट बेल्ट जरूर जरूर जरूर लगाएं, क्योंकि इन सब से न सिर्फ आप अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं बल्कि पूरे समाज की, अपने परिवार की और अपने बच्चों के लिए भी उज्जवल भविष्य दे पा रहे हैं। आपका क्या संदेश है डॉक्टर साहब?
0: अब मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि हमें जितने भी प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, जैसे कि हेलमेट हो गया, सीट बेल्ट होगी, इनका बहुत यूज करना है। जो मोबाइल नहीं यूज करना है,
1: जी
0: ड्रिंक दारू या मद्यपान नहीं करके गाड़ी चलानी है।
1: जी
0: बेसिक चीजों से हमें बचना है, और हम अपने आप भी सुखी रहेंगे, सामने वाला भी सुखी रहेगा, और फैमिली भी सुखी रहेगी।
1: जी तो दुर्घटना में घायल मरीज और उनके इलाज की बात डॉक्टर विकास गुप्ता जी ने बताई है। श्रोताओं आप सभी को हमें विश्वास है आप स्वयं सुरक्षित रहने का प्रयास करेंगे और बाकी पूरे समाज को एक संदेश देंगे, एक उदाहरण पेश करेंगे लोगों की मदद करके और खुद की सुरक्षा करके। डॉक्टर विकास गुप्ता जी आप हमारे स्टूडियो में आए और रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई है, और ये किस तरह के नुकसान होते हैं दुर्घटना में वो भी बताया, कैसे इलाज होता है वो भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
2: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
3: बरेली शहर का सबसे किफायती ICU अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन ICU
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
3: 9837000048।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो।

0: हेल्पलाइन, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 8 बज रहे हैं और श्रोताओं, अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: साफ कर सकता है क्योंकि गिद्ध हमेशा झुंड में ही पाए जाते हैं। गिद्ध का समूह 1 किलोमीटर की ऊंचाई से भी मरे हुए जानवर की गंध सूंघ लेता है और उसे देख लेता है। सबसे ऊंची उड़ान भी यही पक्षी भरता है। गिद्ध 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और एक बार में 100 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। भारत में गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। गिद्ध भारत की पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। गिद्ध का वर्णन भारत के पौराणिक महाकाव्य रामायण में भी किया गया है, जहां रावण की चंगुल से सीता माता को बचाने के दौरान गिद्धों के राजा जटायु ने अपनी जान गवा दी थी। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में गिद्धों का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें स्वच्छता और मृत्यु के बाद जीवन का प्रतीक माना गया है। खासकर पारसी समुदाय में मृतकों के शवों को डाकमा यानी टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ दिया जाता है ताकि गिद्ध उन्हें खा सकें और आत्मा को मुक्त कर सकें। गिद्धों की लगभग 23 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं, परंतु भारत में इनमें से मुख्यतः 9 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। भारतीय गिद्ध, जिसको कि जिप्स इंडिकस बोलते हैं, यह 90 के दशक से इसमें 90% जनसंख्या में गिरावट आई है। यह प्रजाति अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त माने कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। दूसरा सफेद पीठ वाला गिद्ध, जिसको कि जिप्स बेंगालेंसिस कहा जाता है, सफेद पीठ वाला गिद्ध भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में आ गया है। लंबी चोंच वाला गिद्ध, यह प्रजाति भी संकटग्रस्त है और इसके संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता हो गई है। गिद्धों के विलुप्ति के कारण में सबसे अधिक डाइक्लो फेनाक दर्द निवारक दवा जो पशु चिकित्सा देते हैं अपने मवेशियों को, उसकी वजह से है। यह दवा गिद्धों के लिए अत्यधिक घातक है। जब गिद्ध उन जानवरों के शवों को खाते हैं जिनका इलाज इस दवा के लिए किया गया है, तो इन जानवरों की किडनी और लीवर फेल होने की वजह से ये मर जाते हैं। इस दवा का उपयोग 1990 के दशक में अत्यधिक रूप से बढ़ा और परिणाम स्वरूप गिद्धों की जनसंख्या भी 1990 के दशक से अत्यधिक रूप से गिरने लगी। भारत में गिद्धों के लिए कीटनाशक प्रदूषण भी एक खतरे का कारण है। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि DDT का प्रयोग कीटनाशक के तौर पर सबसे अधिक किया जाता था, हालांकि इस समय ये बंद है, इसका उपयोग करना प्रतिबंधित है, यह गिद्धों के शरीर में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अभी भी प्रवेश करता है, जहां यह एस्ट्रोजन हार्मोन की गतिविधि को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप उनका एग शेल कमजोर हो जाता है, जिसमें कि अंडों की असामयिक मृत्यु हो जाती है और भ्रूण मर जाता है। दूसरा, खाद्य स्रोतों की कमी। प्रारंभिक रूप से गिद्धों को भोजन के लिए खुले में छोड़े गए पशुओं के शव मिलते थे, लेकिन अब शवों का निपटान वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है, यानी कि उनको दफना दिया जाता है, जिससे कि गिद्धों को प्राकृतिक रूप से मिलने वाला भोजन अब नहीं मिलता। तीसरा मुख्य कारण है पर्यावरणीय परिवर्तन। वृक्षों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण गिद्धों का प्राकृतिक आवास अब नष्ट हो गया है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण तो गिद्धों के रहने और भोजन की अत्यधिक समस्या हो गई है। अभी कुछ समय पहले मैं करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गया था, जहां पर कि कुछ गिद्धों को मैंने पीपल के पेड़ पर देखा था। हालांकि इससे पहले 20 या 25 वर्ष पहले मैं या आपने भी गिद्धों को आसमान में बहुत संख्या में उड़ते हुए देखा होगा। चौथा एक कारण गिद्धों के कमी का है कि शिकार में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी अवैध तस्करी की जाती है, जिससे कि इनकी संख्या के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होता है। इनकी हड्डियां और चोंच को तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है। अगर गिद्ध खत्म हो जाएंगे तो किस प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा? गिद्धों की कमी से मृत जानवरों के शवों का निपटान सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जिससे कि रोगाणुओं का प्रसार

0: जाएगा। यह स्थिति मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। दूसरा, गिद्ध पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इनकी संख्या में कमी से पर्यावरणीय असंतुलन हो सकता है, जो विभिन्न प्रकार की इकोसिस्टम की समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा गिद्धों की कमी से शवों का निपटान महंगा हो जाएगा, जिससे कि पशुपालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। गिद्धों के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाया जाना प्रमुख है। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की आबादी में बड़ी गिरावट को देखते हुए भारत सरकार ने सन 2006 में डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगा दिया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सिफारिश पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग को बंद कर दिया था। फिलहाल केवल दो दवाओं मेलोक्सिकैम और टोलीफेनामिक एसिड के मूल्यांकन में उन्हें गिद्धों के इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित पाया गया है। इसके अलावा अनेक स्थानों पर देश भर में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां गिद्धों की देखभाल की जाती है और उनकी संख्या के बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। साथ साथ में गिद्धों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ कुछ केंद्रों में गिद्धों के प्रजनन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। इसके साथ साथ गिद्धों के स्वास्थ्य स्थिति और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए जा रहे हैं। गिद्ध मृत जानवरों के शवों को खाकर प्राकृतिक सफाई कर्मियों के रूप में कार्य करते हैं। इससे न केवल पर्यावरण स्वच्छ रहता है, बल्कि गिद्धों द्वारा खाए गए शवों से निकलने वाले रोगाणुओं का प्रसार भी रुकता है और इकोसिस्टम भी संतुलित रहता है। ये खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इनके बिना अन्य मांसाहारी जीवों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे कि इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है। गिद्धों के संरक्षण के लिए कई प्रमुख संगठन हैं जो कि कार्यरत हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से मैं चर्चा करना चाहूंगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अर्थात BNHS की, जो कि गिद्ध संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये गिद्धों की प्रजातियों की निगरानी, उनके संरक्षण की योजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन और जन जागरूकता अभियान में शामिल हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF भी गिद्ध संरक्षण के लिए विभिन्न परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वे स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं और गिद्धों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने की दिशा में काम करते हैं। गिद्धों के संरक्षण में कुछ चुनौतियां हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से दवाओं का उपयोग यानी कि डाइक्लोफेनाक, जो कि अब प्रतिबंधित है लेकिन अभी भी इसको चोरी छिपे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गिद्धों के लिए अत्यंत घातक है। इस दवा के विकल्प के रूप में मेलाक्सिकम का बढ़ाया जाना एक चुनौती है। जागरूकता की भी कमी है। गिद्धों के महत्व को और उनकी घटती संख्या के बारे में लोगों को अत्यधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गिद्ध संरक्षण के महत्व को समझाने की आवश्यकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे जसवंत सिंह की वार्ता विलुप्त होते गिद्ध। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने देशगान।

0: अभी आप समोस्वरों में विमल राजस्थानी की देशभक्तिपूर्ण रचना सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनवाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी है, अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं?

लाखों श्रद्धालु और भक्तजन। कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के

शस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन और द्वार के समीप था। लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आंकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने

0: सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पुरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
3: 870-001-4242।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और रश्मि विराग की युगल आवाजों में, फिल्म सिटी।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं पायल देव और जुबिन नौटियाल की युगल आवाजों में फिल्म मरजावां से ये खूबसूरत सनम।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना कर

0: करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा

0: आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
2: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
3: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
4: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी डीजे और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी

0: के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय

0: मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए युगल गीत से। वो लिखे हैं गुलजार ने, संगीत तैयार किया है खयाम ने, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

तुम्हारी कसम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में। संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म का नाम महबूबा।

बदलते रिश्ते। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए सुनिए आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की, फिल्म का नाम बेमिसाल।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में सुना। संगीत तैयार किया था आडू बर्मन ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना?

0: तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाल दी।

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आई। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

साल 2012 में कैटरीना कैफ ने फिल्म अग्निपथ में काम किया और इस फिल्म में ये गाना उस साल खूब खूब चला।

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

0: अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।
1: घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो, दे चुकी है दर्शन।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: ਬੈਠੇ ਆ
1: ये था आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: रंग तरंग।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छायागीत का
2: बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में फिल्म स्वयंवर से ये खूबसूरत सा नगमा।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सावन की घटा से। SH बिहारी के लिखे इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।
1: जुल्फों

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा है खूबसूरत सा नगमा, जिसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है जवां मोहब्बत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। आवाज है मोहम्मद रफी की, गीत के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है आखिरी ख़त और गीत के बोल लिखे हैं कैफ़ी आज़मी ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुषमा वाजपेयी का ख्याल गायन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे राग गोरख कल्याण।

0: अभी आप सुन रहे थे सुषमा वाजपेयी का गाया ख्याल गायन, जिसके अंतर्गत आपने सुना राग गोरख कल्याण। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक

0: ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
3: India's hydrogen train features a 10-coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple